सुप्रभात, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संबत 1948 की ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के मई महीने की 24 तारीख। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 50 सेकेंड हुए हैं। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों में हम आपका स्वागत करते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती किसानी, जानकारी लेते हैं केचुआ खाद की उपयोगिता के बारे में। वाचन है अनीता तिर्की का।
1: केचुआ खाद बनाने पर इसलिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि दिन प्रतिदिन जानवरों की जनसंख्या कम होती जा रही है। जो हमारे किसान भाई पहले अपने खेतों में ज्यादा मात्रा में कंपोस्ट या गोबर डालते थे और एक या दो फसल अपने खेतों से लेते थे, लेकिन आज के दिन में खेतों में गोबर खाद कम डाली जा रही है, लेकिन खेती बहुफसली की ओर अग्रसारित हो रही है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो रहा है, जिसको कम करने के लिए किसान भाइयों को सुझाव दिया जा रहा है कि केचुआ खाद बनाकर खेतों में डालेंगे तो उतने ही गोबर से लगभग 3 गुना मुख्य पोषक तत्व खेतों में पहुंच जाएगा। केचुआ के द्वारा जैविक पदार्थों के खाने के बाद उसके पाचन तंत्र से गुजरने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे बर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद कहते हैं। केचुआ खाद काला दानेदार और देखने में चायपत्ती के जैसा होता है। यह फसलों के लिए काफी लाभकारी होता है। इस खाद में मुख्य पोषक तत्व के अतिरिक्त दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व और कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक होते हैं। मिट्टी में केचुआ के रहने के स्थान के अनुसार केचुआ को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है और इनका विश्व के विभिन्न भागों में करीब 4,500 प्रजातियां बताई गई हैं। केचुआ खाद उत्पादन हेतु एपीजेक की दो प्रजातियां सबसे उपयोगी पाई गई है। एक है आइसिनिया फोटिडा जो लाल केचुआ के नाम से जानी जाती है और दूसरा है यूड्रिलस यूजिनी यानी भूरा गुलाबी केचुआ। लाल केचुआ और भूरा गुलाबी केचुआ जो है वो केचुआ खाद के लिए ज़्यादा उपयोगी पाया गया है। केचुआ खाद बनाने के लिए पहले वैसे स्थान का चुनाव करना है जहाँ धूप नहीं आती हो और ना ही वर्षा के दिनों में पानी लगने की संभावना रहती हो, लेकिन वो स्थान हवादार हो। केचुआ धूप सहन नहीं कर सकता है, अतः चुनाव किए गए स्थान पर छाया की व्यवस्था कर ले जिसकी ऊंचाई 7 फीट से ज्यादा ना हो। चुने गए स्थान पर जो आप बेड बनाएंगी उसका निर्माण करेंगे तो 3.5 फीट वो चौड़ा होना चाहिए, 10 फीट लंबा और 1 से 1.5 फीट ऊंचाई का होना चाहिए, जिसमें कंपोस्ट बनाते समय पदार्थ जो है इधर से उधर बेकार ना जाएं। कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर, कूड़ा करकट, पौधे के अवशेष, घास फूस, हरी पत्ती इत्यादि से पहले यदि कोई उसमें ना सड़ने वाली पदार्थ हो तो उन्हें चुनकर अलग कर ले। उसके बाद पौध अवशेष और घास फूस के भाग को छोटे छोटे गोल टुकड़े में विभाजित कर लें। उसके बाद गोबर के साथ मिलाकर 10 से 15 दिन तक अलग अलग जगहों पर आंशिक विघटन के लिए छोड़ दें। इसके बाद ही वर्मी कंपोस्ट यूनिट में इसका प्रयोग करें। सबसे पहले कंपोस्टिंग जगह में नीचे 6 इंच की एक परत जिसमें आधा सड़ा हुआ गोबर और आंशिक विघटित पदार्थ डालें, जिसमें प्रारंभिक अवस्था में केचुओं को भोजन मिल सके। इसके बाद 35 से 40 केचुआ प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से डालें। केचुआ डालने के बाद केचुओं के ऊपर यदि हो तो हरी सब्जियों के अवशेष का एक परत 5 से 6 इंच का दे, उसके ऊपर 10 से 15 दिन के सड़े गोबर के साथ घास फूस के मिले हुए पदार्थ को बेड में ऊपर तक भर देते हैं। बेड में भरते समय परत दर परत पानी का छिड़काव करते जाते हैं, जिससे कि भरे हुए पदार्थ में 60% तक नमी बनी रहे। उसके बाद बेड में ऊपर से जूट या सुतली को बोरा से ढक देते हैं, जिससे केचुए आसानी से ऊपर से नीचे घूम सके। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो बेड में नमी बनी रहेगी और दूसरा केचुए जो है अंधेरे में ऊपर से नीचे तक आराम से घूमकर सारे पदार्थों को खाकर वर्मी कंपोस्ट में बदल देंगे। केचुआ खाद तैयार होने में करीब 45 से 60 दिन लगते हैं। जब पूर्ण रूप से केचुआ खाद तैयार हो जाता है तो देखने में वो चाय पत्ती जैसा लगता है। इस समय लगभग एक सप्ताह के लिए पानी देना बंद कर देते हैं जिससे खाद सूख जाए और केचुआ नीचे की ओर भाग जाए। इसके बाद हम कंपोस्ट को चलनी से चाल लेते हैं। यही अंतिम उत्पाद होता है जो कि केचुआ खाद है।
0: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे केंचुआ खाद की उपयोगिता के बारे में। वाचन था अनीता तिर्की का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन।

यदि हमारे भीतर सीखने की ललक हो तो हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यदि यह ललक समाप्त हो जाए तो हमारे भीतर उदासीनता छा जाती है। हम कुछ भी नया सीखना या समझना नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम स्वयं को इतना बुद्धिमान समझ बैठते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नया सीखने को शेष नहीं बचा। ये अहंकार ही हमारी सीखने की प्रवृत्ति को समाप्त कर देता है, जबकि जीवन का प्रत्येक पड़ाव हमें बहुत सिखाता है। पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी और कीट पतंगे आदि किसी से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। देखा जाए तो ये दुनिया एक पाठशाला है जो हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाने को आतुर है। हम घर के बाहर हों या घर के भीतर, सुबह का समय हो या शाम का, या फिर अर्धरात्रि ही क्यों ना हो, प्रकृति के हर पहर से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बस हमारे ज्ञान चक्षु खुले हों, हमारी ललक बनी हुई हो। स्वामी राम तीर्थ पढ़ने में अत्यंत कुशाग्र थे। उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। अधिकांश समय उनके हाथों में किताबें रहा करती थीं। वो घर से निकलते तो भी इनके हाथों में और झोले में किताबें रहती। उनकी इस आदत की कुछ लोग प्रशंसा किया करते तो कुछ उपहास भी उड़ाते थे। कुछ लोगों को महज दिखावा लगता था। एक दिन वो सड़क पर पुस्तक पढ़ते हुए चले जा रहे थे, तभी उन्हें एक आदमी ने टोकते हुए कहा, महाशय, ये पाठशाला नहीं है, कम से कम राह चलते हुए तो किताबों को सही ठिकाने पर रखा करो। स्वामी राम तीर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सारा संसार ही मेरे लिए पाठशाला है। वह व्यक्ति सर झुकाकर वहां से चला गया। वास्तव में हमारे सीखने की प्रवृत्ति

0: व्यक्ति स्वयं ही अपना मार्ग खोज लेती है। हम किसी भी परिस्थिति में सीखते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। इसलिए हमें हर अवस्था में सीखने की प्रवृत्ति को, अपनी ललक को जीवंत बनाए रखना चाहिए।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन था दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं आराधना। सबसे पहले देशभक्ति गीत अनूप जलोटा का गाया हुआ।

वतन पे जो फिदा होगा उसी का नाम जहां होगा, जो मिट गया तिरंगे पर वही सच्चा जवां होगा। सीने में आग मातृभूमि की, आंखों में हिंदुस्तान होगा, मरकर भी जो जिंदा रहे वो भारत का अभिमान होगा। अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत अनूप जलोटा का गाया हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। सुनते हैं मां शेरोवाली को समर्पित ये भजन लता मंगेशकर का गाया हुआ।

हर सांस में बसता तेरा ही धाम, कभी दुर्गा कभी काली कभी जगदम्बा कहलाती हो, भक्तों के हर दुख में माँ तुम ही ढाल बन जाती हो। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के ही स्वर में एक और भजन माँ दुर्गे को समर्पित। शब्द रचना पंडित नरेंद्र शर्मा की, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

तेरे दर पर जो भी आया खाली कभी न लौटा है। तेरी कृपा से ही हर दीपक जगमग होता है। संकट में जो तेरा नाम पुकारे सच्चे मन से, उसके जीवन में खुशियों का सवेरा होता है।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर का गाया हुआ कुछ भक्ति गीत। शब्द रचना थी पंडित नरेंद्र शर्मा की, संगीत था हृदयनाथ मंगेशकर का। इसके साथ ही संपन्न हुआ आज का भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गईं। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग और आपका स्वास्थ्य विषय पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगी डॉक्टर सरोज कुमारी, भेंटकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल। समय याद रखें 7:05 पर। सुबह सुरीली आप सुनेंगे हर दिन की तरह 7:15 पर। खुला आकाश का वक्त होगा 7:45 पर। आप सुनेंगे अणिमा प्रभा की वार्ता, आधुनिक युग में हिंदी का विकास, समाचार प्रभात 8:00 से। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर प्रादेशिक समाचार। संवेद गान शिक्षा आप सुनेंगे 8:45 पर, जो कि केंद्रित होगा असमिया भाषा में। रसरंजन 9:05 पर।

9:30 पर शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे अभिराम पाठक द्वारा राग देसी में आलाप और धमार गायन। पखावज पर संगत करेंगे रामवचन पाठक और हारमोनियम पर संचाली नाग। बाल सभा आप सुनेंगे 10 बजे से। सूत्रधार होंगे अवधेश कुमार और रानी शुक्ला। प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की। 10:30 पर आप सुनेंगे जोहार रांची।

90 वर्ष पूरे होने पर आप सुनेंगे झारखंड के प्रसिद्ध लोकगीत कलाकार श्री मधु मंसूरी हंसमुख से मनोज कुमार की बातचीत नागपुरी भाषा में। महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे गृहलक्ष्मी 12 बजे से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा भारतीय सामाजिक व्यवस्था की धुरी महिलाएं, कम उम्र में सौंदर्य प्रसाधनों का बढ़ता इस्तेमाल कितना सही कितना गलत, इस विषय पर भी आपको जानकारी मिलेगी। प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की। भारत भारती में आज आप सुनेंगे मघी लोकगीत जनार्दन प्रसाद सिन्हा और साथियों के स्वर में। खड़िया लोकगीत आप सुनेंगे 12:45 पर। कलाकार होंगे आशावंती एक्का और साथी। अभी आप जानकारी ले रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढ़यितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणाम एकेन प्रतिनिधिमंडलेन सह कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयल व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते आईसीएफ इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 1:30 वादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्र

0: कुर्वन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तरप्रदेशाय, पूर्वीयमध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तरपश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि सप्तदिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सप्तभिः क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे सार्धत्रिवादने मुम्बई इण्डियन्स् दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते, ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा के तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े पांचवें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, सुनते हैं भेंट वार्ता, योग और आपका स्वास्थ्य। भेंट वार्ताकार हैं सरोज कुमारी, भेंटकर्ता संजीव कुमार लाल।
4: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, आजकल की बदलती जीवन शैली में योग का बड़ा ही महत्व है और प्रायः हम ये कहते हैं कि आज हमारे पास समय नहीं है और बहुत तनाव है, बहुत सारा काम हमें आज निपटाने हैं। तो इस भागम भाग जिंदगी में काम के बोझ के तले हम दबे जा रहे हैं और प्रायः यही सुनने को मिलता है कि आज तो समय नहीं है हमें योग करने का। दोस्तों, योग में एक बहुत बड़ी शक्ति है। कहा भी जाता है कि योग एक साधना है और योग में एक चमत्कार है। यदि हम अपने व्यस्त समय से कुछ समय यूं कहें कि चुरा लेते हैं और 10 मिनट भी यदि हम योग कर लेते हैं तो सारा दिन हमारा तरोताजा बीतता है और हम तनाव से दूरियां बना बैठते हैं। तो योग कम समय में कौन कौन सी योग क्रियाएं करें, योग का कितना महत्व है आज के बदलती लाइफस्टाइल में, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं योग प्रशिक्षक सरोज कुमारी। सरोज जी स्वागत है। सरोज जी, आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में बहुत तेजी से लाइफस्टाइल हमारा बदल रहा है, इसमें योग का कितना महत्व है? लोग प्रायः यही कहते हैं कि तनाव से हम घिरे हुए हैं और तनाव तो हर जगह है, कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र तनाव व्याप्त है। तो योग कितना कारगर है आज के संदर्भ में?
5: योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखें तो योग मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक व्यायाम, ये नहीं बोल सकते हैं। योग मतलब होता है कि हमारे शरीर, मन और श्वास, ये तीनों को जोड़ता है। ये हमारा ये एक लयबद्ध में आ जाए तो हमारा जीवन बहुत ही स्मूथ चलेगा। जैसे हमें हमारा जीवन कैसा भी तनाव है, क्रोध हो जाता है और हमें चिंता बहुत होती है, तो ये जो योग करते हैं तो हमारी ये सब चिंताएं दूर होती है। इससे
4: योग से चिंताएं दूर होती है, योग से तनाव में कमी आती है।
5: यस
4: सरोज जी, अपने व्यस्त समय से ऐसे कौन सा समय हम निकालें, 10 मिनट भी यदि हम निकाल लेते हैं तो ऐसे कौन से योग क्रियाएं हम करें? और कार्यस्थल पर लगातार हम काम करते हैं, लैपटॉप के सहारे डेस्कटॉप पर हम लगातार काम करते हैं, हमारी आंखें थक जाती हैं और फिर बहुत सारी तकलीफें नज़र आने लगती हैं, तो कम समय में कौन कौन सी योग क्रियाएं किया जाए?
5: बहुत सारी है क्रियाएं जो हम लोग बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग लैपटॉप में वर्क करते हैं, हमारी आंखें थक जाती है, तो हम आंखों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग गर्दन सीधा रखें और आंखों को ऊपर की ओर ले जाएं, फिर नीचे देखें, फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, एटलीस्ट 3-4 बार करेंगे। फिर सर्कल बनाएं, आंखों की जो रेटिना होती है उसे सर्कल बनाएंगे, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट नीचे लेफ्ट से। तो इस तरह से सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज।

0: इस तरह से हम लोग सर्कल बनाते हैं। तो एक आंखों की एक्सरसाइज हो गई उस, और फिर आंखों को बंद करें, टाइट से बंद करना है फिर खोलना है, फिर टाइट से बंद करना है खोलना है, तो आंखों में जो जलन होती है वो नहीं होती है। उसके बाद एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं जो गर्दन के लिए होती है, अपने गर्दन से जैसे ऊपर की ओर ले जाएं गर्दन को, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर ले जाना है, फिर नीचे की ओर, फिर अपने बाएं साइड, दाहिने साइड, फिर बाएं साइड, फिर दाहिने साइड, फिर इसी तरह सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज, नीचे से फिर पीछे बाएं दाहिने साइड, फिर पीछे, फिर नीचे, इस तरह से सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज करके बनाना है, तो आपके गर्दन में जो भी पेन हो आपका चला जाता है। तो ये एक एक्सरसाइज वो कर सकते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग कमर का एक्सरसाइज कर सकते हैं। कमर के एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे ही हम लोग पैरों को, दोनों पैरों को खींचना है फिर छोड़ना है, पैरों को खींचना है आगे की ओर फिर छोड़ना है, तो इसे पैर से, कमर से लेकर आपके पैर तक का जो पेन होगा वो आपको दूर होगा। फिर सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे हमें बैठे बैठे भी हम लोग काम भी करते रहे और वो एक्सरसाइज भी हो सकता है
1: जी। और ये कितने कितने अंतराल पर किया जाए, क्योंकि लगातार हम काम करते हैं और आजकल हमारे युवा साथी पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या फिर अन्य कोई भी गतिविधियाँ हो करते हैं, तो बैठे बैठे कितने अंतरालों पर हम थोड़ा सा ब्रेक दे दें।
0: आपको लगता है एक घंटा दो घंटा के बाद हमें लग रहा है कि एक दो घंटा में हमें थकान फील हो रही है, तो आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए इस तरह से बैठे बैठे
1: जी।
0: या फिर थोड़ा हाथों को सेक करें, हाथों को इस तरह झटके ऊपर ले जाए, नीचे लाए, ऊपर लाना है नीचे लाना है, और इस तरह से पूरा इस तरह से इतना सेक सेक करना है, झटकना है हाथों को कि आपकी अंगुली भी छूट जाए, इस तरह से करें
1: जी।
0: ठीक है, तो आपको देखना आपके बॉडी में काफ़ी एनर्जी फील होगा
1: जी। ये कार्य स्थल पर हम बैठे बैठे भी ये कार्य
0: कर सकते हैं हम लोग
1: जी। हाँ, हमें आराम मिलेगा,
0: आराम मिलेगा, और ये हर एक एक दो दो घंटा में भी आप कर सकते हैं, जिस तरह जैसे आपको थकान फील होता है आप वापस ये चालू कर सकते हैं
1: जी। हम जब प्रातः काल उठते हैं, शयन कक्ष से हम जागते हैं, तो हमें काम का ही टेंशन नजर आता है और फिर ये लगता है कि ये काम हमारा संपन्न हो जाए, तो इस दरमियान हम यदि कुछ योग क्रियाएं कर लेते हैं, थोड़े से समय निकाल सकते हैं, तो कितना समय कम से कम हम निकाल लें, कम समय में भी हम कौन कौन से ऐसी योगा कर लें प्रातःकाल, ताकि बाकी जो दिन है वो बढ़िया बीते, खुशनुमा बीते।
0: हमारे पास, हम लोग बोलते हैं कि समय नहीं है, बट जब लोग सुबह उठते हैं ना तो मोबाइल देखते हैं सर, और मोबाइल जब देखते हैं तो हमारा घंटों निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता है,
1: यदि फिर कहते हैं समय नहीं है।
0: तो हमें क्या करना चाहिए, उस एक घंटा को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। सुबह उठते हैं अपना भगवान को याद करते ही हैं, सबको याद करना भी चाहिए, याद करके आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, जो वॉशरूम जाना है वो नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि अभी सुबह में ये कार्य कर लेते हैं तो उठने से पहले उठ लिए, पानी वानी पिए, गर्म पानी पीना चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, सुबह में चाय के जगह में आप गर्म पानी पिए, फिर आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, जैसे ताड़ासन, वो आपको पेट साफ करने बहुत सहयोगी है, सहयोग करता है ताड़ासन, तो वो आप करते हैं तो आपका देखिए अभी का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तीन जगह अब जैसे आप कैसे बताऊँ मैं एक बार, कि आप हाथों को लॉक कर ले, अपने दोनों पांचों अंगुलियों से लॉक कर ले और हाथों को ऊपर ले जाए और अपने एड़ी को भी ऊपर उठा ले,
1: दोनों पैरों की एड़ियों को
0: ऊपर उठा ले, फिर नीचे लाएं हाथों को, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं, इस तरह से आप करें, इस तरह से आप करते हैं और आप जाइए वो टॉयलेट जाइए, आपके लिए ये बहुत रामबाण योगा है, ये आपका तुरंत आपका पेट क्लियर होगा इससे सर। दूसरा उसके बाद आप थोड़ा प्राणायाम कर ले, थोड़ा ध्यान कर ले, एक्सरसाइज में जैसे सूर्य नमस्कार सब बेस्ट एक्सरसाइज होता है, सूर्य नमस्कार में सारी एक्सरसाइज आ जाते हैं, वो करने के बाद थोड़ा प्राणायाम, जैसे प्राणायाम में आपका भस्त्रिका प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम हुआ, वो कर लेते हैं, अभी सबको पता है ये सब, मुझे लगता है इसके दिन लोगों को, तो ये आप करने के बाद आप थोड़ा ध्यान करिए, 10 मिनट का, सिर्फ 10 मिनट का ध्यान करिए, तो आपको इतना बेनिफिट होगा, आप फुल डे एनर्जेटिक फील करेंगे। ये जिससे हमें थकान फील होती है तो वो आप अच्छा फील करेंगे, वो थकान फील नहीं करेंगे, आप सुबह से शाम बहुत अच्छे से एनर्जेटिक रहेंगे। तो ये ज़रूरी है हमारे लाइफ में, एक्सरसाइज तो ज़रूरी है ही, उसके साथ में प्राणायाम और ध्यान जोड़ते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसमें टाइम सिर्फ आधा घंटा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो सिर्फ आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है सर।
1: जो समय आप प्रातःकाल मोबाइल देखने में आप खराब कर देते हैं, उस समय का सदुपयोग आप योगा में कर सकते हैं। और आधे घंटे आप सिर्फ योगा में दें, कम से कम आधा घंटा आप देते हैं, ताड़ासन करते हैं और भी जो आप अन्य क्रियाएं बता रहे हैं वो करते हैं, तो पूरे समय आप ऊर्जावान रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, मन खुश रहेगा और आपको काम में भी दिलचस्पी आएगी। आजकल की भागम भाग वाली जिंदगी में खासकर हमारे युवा साथी को क्या कहेंगे कि सिर्फ काम पर ही फोकस ना करें, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, समय निकालिए, समय के बहाना मत बनाइए, समय निकालने से निकल जाता है, तो योगा कीजिए और खुश रहिए, क्या कहेंगे?
0: योगा करने से हमें क्या होता है वो एक बेनिफिट बताती हूँ। सिर्फ काम काम से हमारा मन पूरा थक जाता है, योग से हमारा क्या होता है, हमारे वर्तमान क्षण में जीने का कला सिखाती है योगा। दूसरा है हमारे मन और श्वास का एक गहरा संबंध होता है। जैसे हमारा हमेशा क्या होता है, हमारा मन पास्ट और फ्यूचर में फंसा हुआ रहता है, या तो हमारा मन कभी पास्ट के बारे में चिंता करती रहती है, सोचती रहती है, और दूसरा है फ्यूचर के बारे में चिंता करते रहती, क्या होगा क्या होगा। यदि आप योग करते हो तो आपको हमेशा ये प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहोगे योग करने से। और दूसरा है कि हमारा श्वास और मन एक गहरा संबंध है, ये करने से तनाव से दूर होते हैं, क्रोध और चिंता कम होती है। इससे कि योग एक व्यायाम नहीं है, ये हमारा मन और श्वास और शारीरिक तीनों को जोड़ता है, और इससे हमारा मन की चिंता जो होती है वो दूर होती है और हमारा मन शांत होता है, तो हम उस मन शांत मन से हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं।
1: दोस्तों, यदि योग को आप एक संस्कार के रूप में अपनाते हैं तो फिर आप चुस्त और दुरुस्त रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे और पूरा दिन आपका बढ़िया बीतेगा। और दोस्तों, यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे और तभी हमारा देश तरक्की का नया सोपान तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद योग प्रशिक्षिका सरोज कुमारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और कम समय में योग किस प्रकार करें, कौन कौन सी योग क्रियाएं अपने कार्यस्थल पर करें, इस पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो, कल फिर एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।
2: योग और आपका स्वास्थ्य, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। भेंट वार्ताकार थी सरोज कुमारी, भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह सुरीली के लिए बस थोड़ा इंतजार।

आप सुन रहे थे मुकेश का गाया हुआ फिल्म मधुमती का गीत। शब्द रचना थी शैलेंद्र की, संगीत था सलील चौधरी का। और आइए सुनते हैं फिल्म गुड्डी का ये गीत। वाणी जयराम के स्वर में, गुलजार के बोल हैं, संगीत है वसंत देसाई का।

किशोर कुमार के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अंदाज का गीत। शब्द रचना थी हसरत जयपुरी की, संगीत था शंकर जयकिशन का। और आइए अब सुनते हैं फिल्म घर का ये गीत, गुलजार का लिखा हुआ, संगीत है राहुल देव बर्मन का, स्वर लता मंगेशकर का।

और आइए सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये गीत, किशोर कुमार का गाया हुआ, शब्द रचना है साहिर लुधियानवी की, संगीत खयाम का।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: और आइए अब सुनते हैं फिल्म गोलमाल का ये गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने, स्वर किशोर कुमार का।

0: किशोर कुमार के गाए फिल्म गोलमाल के इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ सुबह सुरीली। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं खुला आकाश, सुनते हैं वार्ता, आधुनिक युग में हिंदी का विकास। वार्ताकार हैं अणिमा प्रभा।
1: किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं, साहित्यिक और कामकाज की भाषा। कामकाज की भाषा में साहित्यिक भाषा के शब्दों के इस्तेमाल से उस भाषा विशेष की ओर आम आदमी का रुझान कम हो जाता है और उसके प्रति मानसिक अवरोध बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आज की लोकप्रिय भाषा अंग्रेजी ने भी अपने स्वरूप को बदलते समय के साथ खूब ढाला है। आज की युवा पीढ़ी अंग्रेजी के विख्यात साहित्यकारों की शैली वाली अंग्रेजी नहीं लिखती है, बल्कि इसके कामकाजी स्वरूप में रोजमर्रा के शब्दों ने अपने लिए बखूबी जगह बना ली है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी जब हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया, तब उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 351 में यह स्पष्ट रूप से लिखा कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, जिससे वह भारत की संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन सके। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि हिंदी के विकास के लिए हिंदी में हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में दी गई भारत के अन्य भाषाओं के रूप, शैली व पदों को अपनाया जाए। बदलते माहौल में कामकाजी हिंदी के रूप को सरल और आसानी से समझ में आने वाला बनाना होगा। राजभाषा में कठिन और कम सुने जाने वाले शब्दों के इस्तेमाल से राजभाषा को अपनाने में हिचकिचाहट बढ़ती है। शालीनता और मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए इस भाषा को सुबोध और सुगम बनाना आज के समय की मांग है। जब सरकारी कामकाज में हिंदी में मूल कार्य न करके उसे अनुवाद की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, तो हिंदी का स्वरूप जटिल और कठिन हो जाता है। सरकारी हिंदी में यह काफी नहीं है कि लिखने वाला अपनी बात खुद समझ सके कि उसने क्या लिखा है, बल्कि जरूरी यह है कि पढ़ने वाले को भी समझ में आ जाए कि लिखने वाला क्या कहना चाहता है। दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों के प्रयोग में हिचक नहीं होनी चाहिए। यदि हिंदी में लिखा तकनीकी शब्द कठिन लगे तो ब्रैकेट में अंग्रेजी का पर्याय देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की शैली को बदलने की सख्त आवश्यकता है। एक अच्छे अनुवाद में भाव को समझकर वाक्य की संरचना करना जरूरी होता है, न कि प्रत्येक शब्द का अनुवाद करते हुए वाक्य का निर्माण करने की। बोल चाल की भाषा में अनुवाद करने का अर्थ यह है कि उसमें अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, अंग्रेजी और अन्य भारतीय प्रांतीय भाषाओं के लोकप्रिय शब्द भी प्रयोग में लाए जाएं। विदेशी शब्द जो हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे

टिकट, सिग्नल, लिफ्ट, स्टेशन, रेल, पेंशन, पुलिस, ब्यूरो, मेट्रो, एयरपोर्ट, स्कूल, बटन, फीस, बिल, कमिटी, अपील, ऑफिस, कंपनी, बोर्ड, गजट तथा अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द जैसे अदालत, कानून, कागज, दफ्तर, जमानत, तनख्वाह, मोहर आदि को इस रूप में ही अपनाने से भाषा में प्रवाह बना रहेगा। भाषा का विशुद्ध रूप साहित्य जगत के लिए है, लेकिन भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए और कामकाज की भाषा बनाने के लिए उसका मिश्रित रूप आवश्यक है। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। हिंदी का प्रचार और प्रसार तभी संभव है जब यह सरल, सहज और प्रासंगिक बनी रहे। हिंदी को सरल बनाकर हम इसे प्रभावी और जनप्रिय बना सकते हैं। हिंदी की वर्तमान स्थिति और इसकी चुनौतियों पर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि हिंदी आज एक प्रमुख भाषा के रूप में उभर चुकी है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे प्रशासनिक और कानूनी हिंदी का क्लिष्ट होना। जब किसी आम नागरिक को कोई सरकारी दस्तावेज या आदेश पढ़ने की आवश्यकता होती है तो उसे अक्सर कठिन शब्दों और जटिल वाक्यों की वजह से समझने में दिक्कत होती है। शिक्षा में देखें तो कई बार स्कूली किताबों में भी कठिन शब्दावली के कारण विद्यार्थियों को हिंदी विषय में रुचि कम हो जाती है। भाषा का उद्देश्य यह है कि विचारों और भावनाओं का संप्रेषण, उसकी अभिव्यक्ति आसानी से हो, क्योंकि जब भाषा सरल होगी तभी उसका प्रभाव अधिक गहरा होगा। सरल और सहज हिंदी के कई लाभ हैं। यदि हम अपने संवाद और लेखन को सरल बनाएंगे तो यह अधिक लोगों तक पहुंचेगा। उदाहरण के लिए, जब सोशल मीडिया पर छोटे और सरल हिंदी वाक्यों में पोस्ट लिखी जाती है तो वह तुरंत लोगों को प्रभावित करती है। जैसे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, यह नारा अपनी सरलता के कारण हर व्यक्ति की जुबान पर चढ़ गया। हिंदी की सरलता इसे देश के विभिन्न हिस्सों में समझने के योग्य बनाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई उत्तर भारत में बैठा व्यक्ति दक्षिण भारत के किसी व्यक्ति से सरल हिंदी में बात करता है तो संवाद अधिक प्रभावी और सुलभ हो जाता है। सरल हिंदी में शिक्षा देने से विद्यार्थी न केवल विषय को बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि वे हिंदी भाषा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए, जल का चक्र विषय को समझाते समय यदि कठिन शब्दों के बजाय चित्रों और सरल वाक्यों का प्रयोग किया जाए तो यह विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावशाली होगा। हिंदी साहित्य में कई ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अपने सरल भाषा के माध्यम से जनमानस को गहराई से प्रभावित किया, जैसे मुंशी प्रेमचंद। उनकी कहानियां जैसे ईदगाह, गोदान और नमक का दारोगा सरल हिंदी में लिखी गई हैं, जिससे हर वर्ग के पाठक उनसे जुड़ पाए। उनकी रचनाओं में गांव, किसान और समाज की वास्तविकता को सरल भाषा में व्यक्त किया गया है। हरिवंश राय बच्चन, उनकी प्रसिद्ध रचना मधुशाला ने अपनी सरल और प्रवाहमयी भाषा के कारण ही हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। महात्मा गांधी ने अपने लेखों और भाषणों में हमेशा सरल और जन सामान्य की हिंदी का प्रयोग किया है। उनके द्वारा दिया गया नारा करो या मरो अपनी सहजता के कारण ही स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया। आधुनिक डिजिटल युग में हिंदी को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉगिंग और मोबाइल ऐप्स ने हिंदी को व्यापक मंच प्रदान किया है। सोशल मीडिया पर सरल हिंदी के प्रयोग का कुछ उदाहरण देखिए। सोच बदलिए, देश बदलेगा, जो बोओगे वही पाओगे, इस प्रकार के छोटे और सरल वाक्यों से लोगों में प्रेरणा का संचार होता है
और लोग तेजी से प्रेरित होते हैं।

0: सरकारी योजनाओं में सरल हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरल हिंदी के कारण ही लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हुआ और व्यापक स्तर पर अपनाया गया है। हिंदी के विकास के लिए हम कई आवश्यक कदम उठा सकते हैं और कई प्रयास कर सकते हैं, जैसे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ऐसी हिंदी पढ़ाई जाए जो विद्यार्थियों के लिए सरल और प्रासंगिक हो। सरकारी दस्तावेजों और नियमों की सरल व्याख्या हो और उन्हें सरल हिंदी में तैयार किए जाने चाहिए। समाचार पत्र और टीवी चैनलों को क्लिष्ट हिंदी की बजाय आम बोलचाल की हिंदी का अधिक प्रयोग करना चाहिए। तकनीकी साधनों में हिंदी का प्रचार सरल भाषा में हो, जैसे मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग तो हो, लेकिन वो हिंदी सरल हो। आज हिंदी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। इसे और अधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें इसकी सरलता और सहजता को अपनाना होगा। सरल हिंदी न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ सकती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी की पहुंच को बढ़ा सकती है। भाषा का विकास तब होगा जब यह हर व्यक्ति की भाषा बनेगी, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी हो। हिंदी का विकास सरलता और सहजता में ही निहित है। आइए हम सब मिलकर हिंदी को सरल और प्रभावशाली बनाएं और इसके विकास में अपना योगदान दें।
1: आधुनिक युग में हिंदी का विकास। खुला आकाश कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अणिमा प्रभा की वार्ता। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आपको बता दें, श्रमिक लोक कार्यक्रम में आज आप शाम 5:30 पर सुनेंगे कॉमनवेल्थ सहयोग शांति और समृद्धि का मंच। असंगठित श्रमिक नई संहिता से सामाजिक सुरक्षा के नए आयाम, हुनर को सम्मान, कारीगर को पहचान। जय श्रीवास्तव और आशीष कश्यप होंगे इस कार्यक्रम के सूत्रधार। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव के। खेतीबाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:02 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जीवामृत और केचुआ खाद। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। हमारी दुनिया कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:32 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारियां। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे खोरठा वार्ता, ग्रामीण विकास हेतु सरकारी योजनाएं। वार्ताकार होंगे निरंजन कुमार। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल के।

0: सुनेंगे शाम 7:15 पर, प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां रात्रि 8:15 पर। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
5: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
3: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
4: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
3: सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
6: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
9: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
3: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरतनाज।
10: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्य में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
3: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी। होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर टू होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इन न्यू दिल्ली टुडे। आयुष्मान भारत स्कीम टू बी रोल्ड आउट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम जुलाई। Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against four accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a four-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
12: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
11: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared US perspective on various regional and global issues including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio called India a vital partner to the United States. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President, Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing Company, Jeff Shockey, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation in aviation and aerospace manufacturing. He added that the meeting also followed discussions focused on developing maintenance, repair and overhaul opportunities, skilling, supply chains, innovation and growing India's role as a trusted global manufacturing and engineering hub. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister JP Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme Swasthya Sathi will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendras in West Bengal from the existing 117 to 469. The Chief Minister also said that proposals for new medical colleges in

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित जनजाति सांस्कृतिक समागम को करेंगे संबोधित। झारखंड समेत देश भर से 1.5 लाख से अधिक आदिवासी लोग हिस्सा लेंगे। वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़े नियुक्ति के आंकड़ों में अंतर पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। राज्य सरकार ने 36 IAS अधिकारियों का किया तबादला, 3 जिलों के DC बदले। राज्य प्रशासनिक सेवा के दर्जनों पदाधिकारियों का भी हुआ स्थानांतरण। झारखंड के कई जिले हीट वेव की चपेट में, रांची में आज से तापमान में और वृद्धि के संकेत। अगले 4 से 5 दिन राहत मिलने की उम्मीद। राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता के दूसरे दिन फाइनल में गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी कर बनाया नेशनल रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह लाल किला मैदान में आज आयोजित होने वाले जनजाति सांस्कृतिक समागम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसमें कार्यक्रम में देश भर से 1,50,000 से अधिक आदिवासी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। चंपई सोरेन ने रवाना होने से पहले रांची एयरपोर्ट में कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा जिसमें देश भर के लाखों आदिवासी शामिल होंगे।
1: एक जनजाति सांस्कृतिक समागम होगा। इस आयोजन से कुछ राजनीतिक दल का MLA MP लोग नाखुश, क्या उन लोग का तकलीफ हो रहा है? आज जो आदिवासी भी जिस जगह तक वो लाके खड़ा कर दिया है, ये तो कांग्रेस पार्टी का देन है। देश आजाद होने के बाद एक आदिवासी का अलग कॉलम था, 1961 में कांग्रेस पार्टी ने रद्द कर दिया था उसको समाप्त, लेकिन आज देख रहे हैं कांग्रेस अकबर में भी आया हो, आदिवासी का इस परंपरा को मिटाना चाहता है।
0: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़े नियुक्ति विवाद की सुनवाई के दौरान वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने आंकड़ों में अंतर पाए जाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने सरकार से स्पष्ट जवाब देने को कहा कि नियुक्त अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर अलग अलग शपथ पत्रों में भिन्नता क्यों है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कल धनबाद में आयोजित रोजगार मेले में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश की महिलाएं अवसर और सुरक्षित माहौल मिलने से निरंतर आगे बढ़ रही हैं।
2: केंद्र में महिलाएं हैं और महिला को आगे बढ़ाने के लिए चाहे PM मुद्रा की हम बात करें, चाहे स्टार्टअप की बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, और उसके साथ साथ महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके ताकि वो वर्क प्लेस पर ज्यादा सुरक्षित महसूस करके काम कर सके, आज उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ये सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं।
0: राज्य सरकार ने 36 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। पशुपति नाथ मिश्र को गढ़वा का उपायुक्त बनाया गया है, जबकि सौरभ कुमार भुवनिया को देवघर का DC और जावेद हुसैन को खूंटी का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। सरकार ने पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे 12 IAS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। छवि रंजन को खेलकूद विभाग का निदेशक बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के दर्जनों अधिकारियों का भी तबादला किया है। वहीं राज्य पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों को भी स्थानांतरित किया गया है। खान सुरक्षा महानिदेशालय में देश भर में उप महानिदेशक, निदेशक और उप निदेशक स्तर के 55 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। DDG रविंद्र तुलसीदास मंदेकर को सेंट्रल जोन धनबाद का नया DDG नियुक्त किया गया है। निदेशक श्याम मिश्रा को कोडरमा भेजा गया, जबकि नागेश्वर राव हैदराबाद से धनबाद आएंगे। वहीं उप निदेशक स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर

0: उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में बढ़ोतरी को अंतर्राष्ट्रीय जगत में उत्पन्न संकट को लेकर उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के तनावपूर्ण हालात का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अन्य देशों की तुलना में कम हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, एक एक लीटर दो दो लीटर पेट्रोल अगर हम सेव करते हैं तो लाखों डॉलर हम पेट्रोल सेव करते हैं। सबका होना चाहिए कि हम देश को देश हित में देश के विकास के चश्मे से देखें, पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखें। अब जब तक ये मिडिल ईस्ट का जो गतिरोध है नहीं समाप्त होता है तब तक तो है, लेकिन उसके बाद भी पूरे देश से गैस आराम से मिल रही है, डीजल पेट्रोल कोई कमी नहीं।
0: झारखंड में JTET भाषा विवाद गहराता जा रहा है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव JTET नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली को शामिल करने की वकालत कर रहे हैं, तो झामुमो इसके पक्ष में नहीं है।
2: वो भाषा बहुत बड़ी जनसंख्या के द्वारा न बोली जाती है, न उन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, न कोई लिपि है, न कोई डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, तो बहुत छोटे भूभाग में बहुत कम लोगों के द्वारा भाषा बोली जाती होगी और अलग से भाषा नहीं है। बिरहोर जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्र की भाषा बोलते हैं।
0: झारखंड के कई जिले हीट वेव की चपेट में हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और वृद्धि होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले 4-5 दिन बाद तापमान में कमी आने की उम्मीद है। इधर आज राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य में तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ छिटपुट बारिश का भी अनुमान है। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में कल खेले गए फाइनल में गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। पेश है खेल रिपोर्ट।
3: इस प्रतियोगिता में इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण पुरुषों की 100 मीटर रेस रही है। फाइनल में रिलायंस के खिलाड़ी गोरिंदरवीर सिंह ने ओडिशा के धावक अनिमेश कुजूर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10.09 सेकंड का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं पुरुषों के 400 मीटर में तमिलनाडु के विशाल टीके ने 44.98 सेकंड का भी नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। महिलाओं के डिस्कस थ्रो में अनुभवी एथलीट सीमा ने 57.29 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों की डीकैथलॉन स्पर्धा के फाइनल में भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्वी शंकर ने पहला स्थान हासिल किया है।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने देश भर में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी में CM हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश से जुड़ी खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का दिया न्योता। दैनिक भास्कर की खबर है ट्रेजरी घोटाले की 4 एजेंसी कर रही है जांच, अब तक किसी ने नहीं दी रिपोर्ट। दैनिक जागरण ने राज्य में IAS अधिकारियों के तबादले की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित जनजाति सांस्कृतिक समागम को करेंगे संबोधित। झारखंड समेत देश भर से 1.5 लाख से अधिक आदिवासी लोग हिस्सा लेंगे। वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से जुड़े नियुक्ति के आंकड़ों में अंतर पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। राज्य सरकार ने 36 IAS अधिकारियों का किया तबादला, 3 जिलों के DC बदले, राज्य प्रशासनिक सेवा के दर्जनों पदाधिकारियों का भी हुआ स्थानांतरण। झारखंड के कई जिले हीट वेव की चपेट में, रांची में आज से तापमान में और वृद्धि के संकेत, अगले 4-5 दिन बाद राहत मिलने की उम्मीद। राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता के दूसरे दिन फाइनल में गुरिंदर वीर सिंह ने 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी कर बनाया नेशनल रिकॉर्ड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे,
0: ए माती रे, मोरो मोते,
1: मोरो मोते,
0: माती के,
1: माती के,
0: सुमिलो,
1: सुमिलो,
0: माती के सुमिलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते,
1: ए माती ते,
0: ए माती ते, जीवन,
1: जीवन,

0: ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना, ये ए मातीते जीबॉन सोबी, जीबॉन सोबी, जी कैसे ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीबॉन सोबी आकी आकी, दो बार आकी आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद, दूर आकाहार, ये जो ना आकाश श को बोलते हैं वहां ख की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में, आका खार भी नहीं आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो, दूर आका हार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर ख नहीं बोलना ख, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे, इसके आ गया है आहा आहा, फिर मातिर बुकुत, हाँ मातिर बुकुत, मौनोर मालोती, बूटोलो
1: बूटोलो,
0: मौनोर मालोती बूटोलो, इसके बाद फिर वही आ जाएगा एई माती रे मोरो मोते, फिर दूसरा अंतर है मौनोर कोरोनी रे,
1: कोरोनी रे,
0: हुरोर हुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे,
0: पापोरी रे आजी
1: आजी,
0: इतना हो गया ना
1: जी।
0: आगे हुकुमार थापो,
1: थापो
0: नाहुजुवा, हुकुमार थापो नाहुजुवा, आगे लिखा है ना
1: जी।
0: हुंदोर
1: हुंदोर
0: खुदीनोर, खुदीनोर नहीं ख नहीं ख, खुदीनोर
1: खुदीनोर,
0: नौतून
1: नौतून,
0: दृष्टि
1: दृष्टि,
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि
1: दृष्टि
0: दृष्टि
1: दृष्टि,
0: शनि सही बोलना दृष्टि
1: दृष्टि,
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ, आगे ना
1: जी हाँ।
0: अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं, स्वर दीजिए जरा।

ऐसे कोनो ना हुआ खून ऐसे बोलना एक बार और दूसरे ना हुआ दूसरे में ऐसे लंबा कर लेना खून दौर से लो एक दो तीन चार

असमिया भाषा में आप सुन रहे थे संवित गान शिक्षा। गीतकार थे सतीश दास। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

आप सुन रहे थे फिल्म अंदाज का गीत, आशा भोसले मोहम्मद रफी और साथियों का गाया हुआ। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत था शंकर जयकिशन का। और आइए अब सुनते हैं फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। एसएस बिहारी के बोल हैं, संगीत है ओपी नैयर का।

0: कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: और आइए अब सुनते हैं फिल्म राजकुमार का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने, शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के गाए फिल्म राजकुमार के इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ आज का रसरंजन।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। सुनते हैं अभिराम पाठक द्वारा राग देसी में आलाप और धमार गायन। पखावज पर संगत कर रहे हैं रामवचन पाठक और हारमोनियम पर संचारी नाग।

0: आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, अभी राम पाठक से आप सुन रहे थे राग देसी में आलाप और धमार गायन, संगत कर रहे थे पखावज पर रामवचन पाठक और हारमोनियम पर संजाली नाग।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे बाल सभा।
1: माने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और खूब मस्ती भी कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि आपकी गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई है, क्यों?
1: और बिल्कुल, और आजकल तो सुबह सुबह चिड़ियों की मीठी आवाज सुनकर मन कितना खुश हो जाता है ना। कभी गौरैया, कभी मैना, कभी तोता, तो कभी कोयल की आवाज। ऐसा लगता है जैसे पक्षी भी हमें सुप्रभात कह रहे हों।
0: बिल्कुल, और सच में इन नन्हे मेहमानों से हमारी दुनिया कितनी प्यारी लगती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन ये पक्षी ही ना रहे तो हमारी सुबह कैसी होगी, हमारी दुनिया कैसी लगेगी, ये सोच कर ही मन उदास हो गया ना।
1: हाँ, लेकिन बच्चों क्या आपने ध्यान दिया है, पहले जितनी चिड़ियाँ दिखती थी अब उतनी ही कम दिखाई देती हैं। और क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है?
0: क्योंकि पेड़ कम हो रहे हैं, पेड़ों के कटने के कारण पक्षियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। बच्चों, पेड़ पौधे सिर्फ हमें छाया और ताजी हवा नहीं देते, बल्कि पक्षियों का घर भी होते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा दीदी, और वे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, वहीं आराम करते हैं। और अगर पेड़ कम होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों कि पक्षियों के रहने में परेशानी होगी।
0: बिल्कुल, और ऐसा तो हम होने ही नहीं देंगे, है ना? और इसके लिए हम सब मिलकर उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे? बस एक छोटा सा पौधा लगाकर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात कही है आपने। बच्चों सोचिए, आज लगाया गया एक नन्हा सा पौधा कल किसी पक्षी का प्यारा सा घर बन जाएगा, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा भैया आपने। तो बच्चों, आप भी अपने घर, आंगन, स्कूल के आसपास की किसी खाली जगह में एक पौधा जरूर लगाइए। और हाँ, उसे रोज पानी देना ना भूले,
1: क्योंकि पौधा लगाना जितना जरूरी है बच्चों, उसकी देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। और बच्चों, अगर हम सब मिलकर एक एक पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें, तो हमारे आसपास हरियाली भी बढ़ेगी और पक्षी भी सुरक्षित रहेंगे।
0: हाँ बच्चों, पक्षी सिर्फ सुंदर ही नहीं लगते, बल्कि वे पर्यावरण को संतुलित रखने में भी मदद करते हैं। वे बीज फैलाते हैं जिससे हरियाली बढ़ती है, और कई हानिकारक कीड़ों को भी खाते हैं।
1: इसलिए बच्चों, आप सब मोबाइल और गेम्स से बाहर निकलकर थोड़ा समय प्रकृति को भी दें। कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसमें पानी भी दें, उसकी देखभाल करें। और जब वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा ना बच्चों, तो उस पर चिड़ियां बैठेगी, तो आपको भी बहुत खुशी होगी, है ना? एक पौधा लगाइए और पक्षियों को बसाइए।
0: बिल्कुल, याद रखिए बच्चों, एक पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, किसी पक्षी का घर भी होता है। और हरा भरा वातावरण ही खुशहाल जीवन की पहचान है। इसलिए आप भी प्रकृति से मित्रता करें, दोस्त बनाएं, क्योंकि खुशहाल जीवन के लिए मित्रता भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, खुशहाल जीवन के लिए तो अच्छे दोस्त बहुत जरूरी होते हैं। जैसे पेड़ पौधे और पक्षी हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं, ठीक वैसे ही अच्छे दोस्त हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं।
0: हाँ, और आप जानते हैं बच्चों कि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमेशा हमारे पास रहते हैं। जब हम अकेले हों, उदास हों या कुछ नया जानना चाहे, तब वे चुपचाप हमारी मदद करते हैं।
1: बिल्कुल, और ऐसा कोई दोस्त जो हमें हंसाए भी, नई बातें सिखाए भी और कभी बोर न होने दे, और जब मन करे तब हमारे साथ समय बिताए, तो ये कितना मजेदार होगा।
0: हाँ, और ऐसा दोस्त तो हर किसी को चाहिए, लेकिन ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं बच्चों? आप भी जरा सोचिए, ऐसे दोस्त तो आपके घर में, स्कूल में, लाइब्रेरी में, यहाँ तक कि आपके बस्ते में भी मिल जाते हैं।
1: बच्चों, क्या आप पहचान पाए कौन है ये दोस्त? ये खास दोस्त है। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये है किताबें। सच में बच्चों, किताबें सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती, ये तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है, क्योंकि ये बहुत ही खास होती है।
0: हाँ बिल्कुल, अगर आपको रोमांच पसंद है तो रोमांचक कहानियों की किताबें हैं, हंसना पसंद है तो मजेदार कॉमिक्स हैं, जानवर, अंतरिक्ष या विज्ञान में रुचि है तो ज्ञान बढ़ाने वाली किताबें भी हैं।
1: और हाँ, कविता और कहानियों की किताबें तो कल्पना की दुनिया में घुमा लाती हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, अकबर बीरबल की कहानी, तेनालीराम की मजेदार कहानियाँ और बहुत सारे ढेर सारे कॉमिक्स। जानवरों की कहानियाँ भी हैं दीदी, खोज और विज्ञान की किताबें हैं, कितनी सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं बच्चों।
0: और सबसे अच्छी और मजेदार बात तो ये है बच्चों कि हर किताब हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, कभी अच्छाई, कभी समझदारी, कभी हिम्मत और कभी नई सोच।
1: वे हमें नई दुनिया में ले जाती हैं, कभी जंगल की सैर, कभी अंतरिक्ष की यात्रा, तो कभी बहादुर लोगों की प्रेरणादायक कहानियाँ। आप सबको भी तो ये किताबें बहुत पसंद होंगी बच्चों, क्योंकि ये मजेदार भी होती हैं और इनसे सीख भी मिलती है।
0: और बच्चों, किताबें कभी शिकायत भी नहीं करती, कभी नाराज भी नहीं होती। जब मन करे उन्हें खोलो और कुछ नया सीख लो। और इसी कारण कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी मित्र होती हैं।
1: अगर आप रोज थोड़ा समय किताबों के लिए निकालें तो आपको कितनी नई बातें सीखने को मिलेंगी।
0: हाँ, क्योंकि जिनके दोस्त किताबें होती है उनकी हर बात सबसे निराली होती है बच्चों।
1: इसलिए बच्चों, थोड़ा सा समय किताबों के साथ बिताइए और ये दोस्त आपको हंसाएंगे भी, नई बातें सिखाएंगे भी और आपके सपनों को और बड़ा बनाएंगी और आपको आत्मविश्वासी भी बनाएंगी। तो क्यों ना इसकी शुरुआत आज से ही की जाए। तो चलिए, जानकारी की बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन अब बच्चों का कुछ मनोरंजन

0: करवाना चाहिए दीदी।
1: तो चलिए बच्चों सुनते हैं ये बाल गीत।
2: सुन मेरे नन्नी, सुन मेरे मुन्नी, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
3: क्या माँ?

0: इतने जादू गर्मी। पलक के जादूगर मुनी ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
2: फिर राजा कैसे कहता,

0: देख के राजा को आते रानी फूली न समाई, राजमहल के द्वार पे झटपट दौड़ी दौड़ी आई। राजा आया बोला राजकुमार, अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार।
1: तो बच्चों कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? और अब दीदी अब बच्चों की बारी है।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ जो कुछ सुनाना चाहते हैं अपने दोस्तों को,
1: तो चलिए बच्चों से भी सुनते हैं।
3: नमस्कार, मेरा नाम शिवान शिखर है, मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इस दुनिया में सबसे न्यारी धरा हमारी, हमको है प्राणों से प्यारी धरा हमारी। सारे जग को अपने पन का यह देती संदेश, इसलिए तो मान युगोस्त इसका सदा विशेष। पाते सब का आदर भारी धरा हमारी, जाति धर्म भाषाएं बोली अलग है अलग है भाई। इंद्रधनुष निखर रही है अपनी धरती माई, मेल जोल की है फुलवारी धरा हमारी। हंसते हंसते तन मन धन सब धरती माँ पर वारे, जिसने केवल देना सीखा उसका रूप संवारे। अतुलनीय अनुपम उपकारी धरा हमारी।
1: बाह बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता।
4: कोई कार कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है समय। सूरज सदा समय से आता और समय से जाता, चंदा सदा समय से आता और समय से जाता, तारे सदा समय से आते और समय से जाते, सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते है पाबंद समय की, पल भर देर नहीं करते, ठीक समय से सोते हैं ये ठीक समय से जगते। अगर समय की पाबंदी हम इनसे सीख कही जाए, तो फिर हम भी सूरज चार सितारे जैसे बन जाए। धन्यवाद।
1: आपका नाम क्या है, क्या सुनाएंगे?
5: नमस्कार, मेरा नाम श्रेया आद्य है, मैं क्लास 1B में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। यह धरती हम सबका घर है, इसकी चिंता किसे मगर है। बाग बगीचे उपवन कानन गिरी वन घाटी नदियाँ पावन, एक एक कर सभी उछाड़े, मौसम के सुरताल बिगाड़े। हालत अब बच्चे बदतर है, इसकी चिंता किसे मगर है। अन्न जल हवा सुहानी बन जाए न कथा पुरानी, रूक जाए अब यह नादानी, रहे धरा आंचल धानी। पर सहमी सी डगर डगर है, इसकी चिंता किसे मगर है। पर्वत सागर सभी सताए, जुल्म बहुत पेड़ों पर दाए, ताल तलैया पाट दिए हैं, कितने उल्टे कृत किए हैं मन में, लेकिन जरा ना डर है, इसकी चिंता किसे मगर है।
1: इसकी चिंता मगर किसे है। क्या नाम है आपका?
6: शुभ प्रभात, मैं स्तुति आर्य शुक्ला आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पेड़ों का महत्व। पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को तुम पाल रहे हो। पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को तुम पाल रहे हो। इस जीवन को हे मानव तुम संकट में क्यों डाल रहे हो। इस जीवन को हे मानव तुम संकट में क्यों डाल रहे हो। जो पेड़ हमें जीवन देते तुम उन्हीं का जीवन लेते हो। जो पेड़ हमें जीवन देते तुम उन्हीं का जीवन लेते हो। पेड़ों को तुम काट काट संकट को बुलावा देते हो। पेड़ों को तुम काट काट संकट को बुलावा देते हो। यूं ही पेड़ों को काटोगे तो स्वच्छ पवन को तरसोगे। धरती बंजर बन जाएगी तुम अन्न नीर को तड़पोगे। धरती बंजर बन जाएगी तुम अन्न नीर को तड़पोगे। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से तुम कैसे फिर बच पाओगे। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से तुम कैसे फिर बच पाओगे। हर जगह प्रदूषण पाओगे, बीमारी से मर जाओगे। अब भी मौका है सुन मानव, पेड़ों को काटना बंद करो। सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण का संकल्प करो। सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण का संकल्प करो। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। वाह बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई दीदी।
2: बच्चों कहते हैं अच्छी आदतें छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे पेड़ पौधे लगाने की आदत, पानी बचाने की आदत या कूड़ा सही जगह डालने की आदत। और ये छोटी छोटी बातें हमारी धरती को कितना सुंदर बना सकती हैं, कभी सोचा है?
1: धरती केवल मिट्टी, पेड़ और नदियों का नाम नहीं है बच्चों, बल्कि ये हमारा घर है। एक ऐसा घर जो हमें शुद्ध हवा, मीठा पानी और जीवन का हर रंग देता है। लेकिन सोचिए, यदि यही धरती प्रदूषण, गंदगी

0: और हमारी लापरवाही से अस्वच्छ हो जाए तो क्या होगा बच्चों? हमारा आने वाला कल कैसा होगा?
1: बच्चों, पृथ्वी बोल तो नहीं सकती, लेकिन उसके बदलते मौसम, सूखती नदियाँ और कम होते पेड़ बहुत कुछ कह जाते हैं। प्रकृति हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, करती भी है, लेकिन हमारी लापरवाही सहन नहीं कर सकती।
0: हाँ बच्चों, अगर हम आज ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में साफ पानी, शुद्ध हवा, हरियाली, ये सब कम हो सकते हैं। हमारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है।
1: और धरती को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ बड़ों की नहीं, आप सब बच्चों की भी है, क्योंकि छोटे हाथ जब अच्छे काम करते हैं तो बड़ा बदलाव आता है बच्चों। और इसकी शुरुआत आप छोटे छोटे काम करके कर सकते हैं, जैसे
0: कूड़ा कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना, पानी की बर्बादी रोकना, प्लास्टिक का इस्तेमाल न करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनकी देखभाल भी करना।
1: बच्चों, हम अक्सर सोचते हैं कि एक कागज या टॉफी का रैपर फेंक देने से क्या होगा, लेकिन ये छोटी छोटी लापरवाही ही बड़ी समस्या बनती है। और स्वच्छता केवल सफाई का नाम नहीं है बच्चों, बल्कि अच्छी सोच और जिम्मेदारी की पहचान है।
0: जब हम अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं तो हम बीमारियों को दूर रखते हैं बच्चों, और प्रकृति का सम्मान भी करते हैं। याद रखिए बच्चों, आज हम पृथ्वी का जैसा ध्यान रखेंगे, कल पृथ्वी वैसा ही हमें भविष्य देगी।
1: अगर हमें सुंदर भविष्य चाहिए तो पृथ्वी को स्वच्छ रखना होगा, क्योंकि स्वच्छ पृथ्वी ही सुंदर भविष्य की पहली सीढ़ी है।
0: और हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और भविष्य को सुंदर बना सकती है बच्चों।
1: बच्चों, अभी हमने बातें की अपनी धरती को साफ और सुंदर रखने की, लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारी ये धरती सिर्फ साफ ही नहीं बल्कि बहुत रंग बिरंगी और जीवंत भी है।
0: हाँ बिल्कुल, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं उड़ते हुए रंग बिरंगी तितलियाँ, कहीं पानी में तैरती मछलियाँ और हम इंसान भी। ऐसा लगता है ना बच्चों, जैसे धरती एक खूबसूरत चित्र हो, रंग बिरंगी दुनिया हो।
1: और धरती की रंग बिरंगी दुनिया का राज है जैव विविधता। हाँ बच्चों, जैव विविधता यानी धरती पर पाए जाने वाले अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े मकौड़े और सूक्ष्म जीवों का संसार।
0: और हर जीव इस धरती पर इस दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है बच्चों। जरा सोचिए, अगर मधुमक्खी न हो तो फूलों का क्या होगा? अगर पेड़ न हो तो हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? और अगर पक्षी न हो तो सुबह में चहचहाहट किसकी सुनेंगे?
1: इसलिए तो कहा जाता है कि हर जीव प्रकृति की एक कड़ी है और सभी मिलकर ही जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। हर जीव किसी न किसी तरह हमारे जीवन से जुड़ा है, और अगर इनमें से कोई भी कड़ी टूट गई यानी कोई भी जीव विलुप्त हो गया तो पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा। और आज प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और हमारी लापरवाही से कई जीवों का जीवन खतरे में है।
0: और अगर जैव विविधता कम हो गई बच्चों तो इसका असर सिर्फ जानवरों पर नहीं बल्कि हम इंसानों के जीवन पर भी पड़ेगा। इसलिए हम सबको मिलकर प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है।
1: कैसे? अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, जानवरों और पक्षियों को नुकसान ना पहुंचाकर, पानी बचाकर, जंगलों की रक्षा करके और अपने आसपास स्वच्छता रखकर।
0: तो याद रखिए बच्चों, धरती की असली सुंदरता उसकी जैव विविधता में छिपी है। प्रकृति में कोई भी जीव बेकार नहीं होता, हर जीव का अपना महत्व होता है।
1: और स्वच्छ पृथ्वी तभी सच में सुंदर बनेगी बच्चों, जब उसकी रंग बिरंगी दुनिया भी सुरक्षित रहेगी।
0: तो चलिए बच्चों, आप कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, तो हम आपको सुनाते हैं एक कहानी, मूर्ख बातूनी कछुआ।
1: किसी तालाब में कम्बू ग्रीवर नामक एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले संकट और विकट नामक हंस से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घरों को चल देते। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वो तालाब भी सूखने लगा।
0: अब हंसों को कछुए की चिंता होने लगी। जब उन्होंने अपनी चिंता कछुए से कही तो कछुए ने उन्हें चिंता न करने को कहा। उसने हंसों को एक युक्ति बताई। उसने उनसे कहा कि सबसे पहले किसी पानी से लबालब तालाब की खोज करें, फिर एक लकड़ी के टुकड़े से लटकाकर उसे उस तालाब में ले चलें।
1: उसकी बात सुनकर हंसों ने कहा कि वो तो ठीक है, पर उड़ान के दौरान उसे अपना मुंह बंद रखना होगा, कछुए ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलेगा। कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को अपने

0: है ना बच्चों? तो चलिए अब कुछ और जानकारी की बातें होनी चाहिए। तो हर हफ्ते हम आपको किसी एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज के प्रेरक व्यक्तित्व कौन है दीदी?
1: आज के प्रेरक व्यक्तित्व है स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर, जिनकी जयंती है 28 मई को।
0: बच्चों, भारत की आजादी के लिए अनेक वीरों ने अपना जीवन समर्पित किया। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नाम है विनायक दामोदर सावरकर का। लोग उन्हें प्यार और सम्मान से वीर सावरकर भी कहते हैं। वे बहुत साहसी, बुद्धिमान, देशभक्त और मेहनती व्यक्ति थे। उनका जीवन बच्चों युवाओं के लिए प्रेरणा से भरा हुआ है। 28 मई को, जैसा कि दीदी ने कहा, कि उनकी जयंती मनाई जाती है और इस दिन हमें उनके जीवन और विचारों को याद करना चाहिए।
1: बच्चों, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। बचपन से ही वे बहुत होशियार और निडर थे। उन्हें पढ़ाई करना, कविताएं लिखना और देशभक्ति की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था।
0: जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया बच्चों, और उनकी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कठिनाई आने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके बड़े भाई ने उनका पालन पोषण किया और बचपन से ही उनके मन में देश के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा थी।
1: उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ये देखकर सावरकर जी के मन में देश को आजाद कराने की भावना पैदा हुई। स्कूल के दिनों में ही वे अपने दोस्तों के साथ देशभक्ति के गीत गाते थे और सबको एकजुट रहने के लिए प्रेरित करते थे।
0: बच्चों, उन्होंने युवाओं का एक समूह बनाया जिसका नाम था मित्र मेला। बाद में यही संगठन अभिनव भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस संगठन का उद्देश्य युवाओं में देश प्रेम और साहस की भावना को जगाना था।
1: सावरकर जी पढ़ाई में बहुत तेज थे बच्चों। उन्होंने पुणे के कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन वहाँ भी उनका मन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। वे भारत की स्वतंत्रता के बारे में सोचते रहते थे।
0: इंग्लैंड में उन्होंने भारतीय छात्रों को संगठित किया बच्चों और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक भी लिखी और इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि 1857 केवल सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अंग्रेज सरकार इस पुस्तक से डर गई और उस पर प्रतिबंध लगा दिया।
1: विनायक दामोदर सावरकर बहुत साहसी थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें जहाज से भारत लाया जा रहा था तब उन्होंने समुद्र में छलांग लगाकर भागने का प्रयास किया। ये घटना उनके अद्भुत साहस को दर्शाती है।
0: हालांकि बाद में उन्हें फिर से पकड़ लिया गया बच्चों और अंग्रेज सरकार ने उन्हें दो दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अंडमान की सेकुलर जेल भेज दिया। उस जेल को काला पानी भी कहा जाता था।
1: काला पानी की जेल बहुत कठोर थी बच्चों। वहाँ कैदियों को भारी मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें कोल्हू चलाना पड़ता था और बहुत कम खाना दिया जाता था। कैदियों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता था।
0: लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों में भी सावरकर जी का मनोबल नहीं टूटा बच्चों। वो हमेशा मजबूत बने रहे। उन्होंने जेल की दीवारों पर किलों और पत्थरों से कविताएं लिखी।
1: सावरकर जी केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे बच्चों, बल्कि एक महान लेखक और कवि भी थे। उन्होंने देशभक्ति से भरी कई कविताएं और पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाएं लोगों के मन में देश प्रेम और साहस की भावना जगाती थी।
0: बच्चों, वो मानते थे कि शिक्षा और ज्ञान से ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए वे युवाओं को पढ़ने, सीखने और अनुशासन में रहने की प्रेरणा देते थे।
1: सावरकर जी समाज में फैली छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। उन्होंने समाज में समानता और एकता का संदेश दिया।
0: वे मानते थे बच्चों कि एक मजबूत और शिक्षित समाज ही देश को आगे बढ़ा सकता है, इसलिए उन्होंने लोगों को आपसी भेदभाव छोड़ने और एक दूसरे का सम्मान करने की सीख दी।
1: विनायक दामोदर सावरकर का जीवन बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। उनके जीवन से हमें कई अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं।
0: हाँ बच्चों, हमें कभी नहीं डरना चाहिए। कठिन परिस्थितियों का सामना हिम्मत से करना चाहिए।
1: हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और देश की प्रगति के लिए अच्छे कार्य भी करने चाहिए।
0: पढ़ाई और ज्ञान हमें मजबूत बनाते हैं, इसलिए हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए।
1: और जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।

0: अनुशासन और मेहनत से ही सफलता मिलती है।
1: हर साल 28 मई को वीर सावरकर की जयंती मनाई जाती है। ये तो हमने आपको पहले ही बताया है। ये दिन हमें देशभक्ति, साहस और त्याग की भावना सिखाता है।
0: तो बच्चों, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर ईमानदार, मेहनती और अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो दीदी, ये थी जानकारी वीर सावरकर के बारे में। और बच्चों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है। तो चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो नूतन प्रसाद की थी। तो अगले हफ्ते बच्चों फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ जानकारियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ, कुछ कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
1: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बाल सभा कार्यक्रम। सूत्रधार थे अवधेश कुमार और रानी शुक्ला। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 और 8 सेकंड होने को है और हम उपस्थित हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची को लेकर। जोहार रांची के आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुनीता
1: और मैं विनोद।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार जोहार। विनोद जी कैसे हैं?
1: कम बढ़िया। और मौसम की बात करें तो मौसम थोड़ा सा अगर यही देखा जाए तो ये कभी कभी विचलित जरूर कर रहा है, लेकिन
0: कोई बात नहीं है,
1: मौसम ही है, वो तो बदलता रहेगा।
0: मौसम की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां भी देनी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, जिंदगी में सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा होता है अपनों के अलावा?
1: बिल्कुल, ये देखने को है और समझने को है, सभी का अपना अपना नजरिया होता है। आप पहले अपना नजरिया बताइए कि आप क्या सोच रही हैं।
0: मैं ज्यादा कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस ये सोच रही हूँ ना कि जीवन में अगर आपके पास एक सच्चा और अच्छा दोस्त हो तो आपका जीवन बहुत ही आसान आपको लगने लगेगा। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में जब हम गिर जाते हैं ना, उस वक्त जो हमारा सच्चा दोस्त होगा, जो हमारा अच्छा चाहने वाला दोस्त होगा ना, वो हमें सही राह दिखाएगा।
1: और बिल्कुल, कहते भी हैं कि अगर विपरीत परिस्थितियों में जो साथ देता है वो देवतुल्य हो जाता है। और कई ऐसे मौके आए, कई ऐसी फिल्में भी बनी कि जिन पर दोस्तों ने अगर देखा जाए तो कहां से कहां। और दोस्ती की जब बात होती है तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती हम कैसे भूल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो दोस्ती में कहीं कोई इस तरह की दीवार नहीं होती है, कहीं कोई दूरियां नहीं होती है। आप कितना अपनापन है और कैसे, मतलब कि किस तरह से आप उसे ट्रीट करती हैं, ये बहुत मायने रखता है।
0: और दोस्ती ऐसा रिश्ता है ना जिसे हम खुद बनाते हैं। बाकी रिश्ते तो हमें खानदानी तौर पे, पारंपरिक तौर पे मिलते हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, सब कुछ। लेकिन जो ये रिश्ता है ना, ये हम खुद बनाते हैं। और जीवन में जब हमारे एक अच्छा दोस्त आता है जो हमारी गलतियों पर हमें टोकता है, रोकता है, डांटता है, ऐसा नहीं कि कोई डांट रहा है तो हमारी गलत सुधारने के लिए ही डांटता है कोई, तो इसलिए दोस्ती की जो जगह है ना वो हमारे जीवन में बहुत खास हो जाती है। और हमारे श्रोताओं से जो मित्रता है, दोस्ती है, वो भी बहुत खास है, है ना। तो बात दोस्ती की हो रही हो तो एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत हम अपने श्रोताओं से सुन देते हैं साथ में, और फिर बहुत सारी बातें और भी हैं करने के लिए।

0: पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है। और विनोद जी, आप शुरू में बात कर रहे थे मौसम की, तो मौसम का जो मिजाज है ना, अभी एकदम बिल्कुल हाइपर हुआ हुआ है।
4: बिल्कुल बिल्कुल बदला सा है। अगर 4-5 दिन पहले की बात करें तो तपिश के बाद थोड़ी राहत भी मिलती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल,
3: अभी तो लगातार ही गर्मी हो रही है। और गर्मी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा हो रही है राजधानी में इस समय। दिन में धूप और गर्मी से बेहाली है, लेकिन अब पहले शाम को थोड़ा अच्छा लगता था, अब तो शाम में भी वही हाल है और रात का तापमान भी असामान्य रूप से बढ़ रहा है।
4: बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो मौसम विज्ञान विभाग की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व की नम हवा आने से रात में उमस बढ़ गई है, और अगर देखा जाए तो बेचैनी वाली गर्मी हम कह सकते हैं इसे,
3: है ना।
4: और नींद पूरी नहीं होने से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, और खासकर अस्पताल की हम बात करें तो अस्पतालों ने इसके लिए खास तैयारी भी कर रखी है। और सरकार की बात करें तो सरकार ने भी कल परसों ही एक इसके लिए अलग से SOP जारी किया है कि किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाए और क्या क्या इसके उपाय किए जाए।
3: और जो अभी तापमान है ना, रात में तापमान करीब 5 डिग्री ज्यादा चल रहा है सामान्य से, और ये स्थिति मई महीने में मतलब ऐसी तो नहीं होती थी। और जो जैसा कि आपने बताया ना कि जो हवा चल रही है दक्षिण पूर्व की नम हवा आने से इस तरह से हो रही है, तो मौसम विभाग की बात कर ले तो आने वाले समय में मौसम ऐसा ही रहेगा, 26 से 29 डिग्री तक तापमान शाम का रह सकता है। और अब उमस भरी गर्मी मिलेगी आपको, और कल 25 मई है, 25 मई से 2 जून तक नौ तप अभी शुरू हो रहा है, तो ऐसे में गर्मी और ज़्यादा भीषण होगी। और पता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने कभी सोचा है इसकी वजह क्या है?
4: बताइए हमें भी और
3: नहीं, आपको भी पता है कि इसकी वजह है जो ना पर्यावरण बिल्कुल असंतुलित हो गया। पेड़ पौधे नहीं के बराबर रह गए हैं, जंगल कटते चले जा रहे हैं, कंक्रीट की दीवारें, सड़कें, सब चीज होती चली जा रही है। विकास के साथ हम विनाश की ओर भी बढ़ रहे हैं।
4: और अगर देखा जाए तो हम लोग खुद गवाह हैं, और खासकर मतलब कि राजधानी रांची, जो कि कभी अगर देखा जाए जब अविभाजित बिहार था तो उस समय लोग कहते थे और सच्चाई भी थी कि कुछ दिनों के लिए यहाँ जो हमारी जो राजधानी पहले जो पटना में हुआ करती थी, राजभवन जो बिल्कुल जब पटना था, तो कभी कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी
3: के कारण
4: यहाँ यहाँ यहाँ कहा जाता था, और एक तरह से मतलब कि वहाँ का राजभवन जो है वहाँ रांची शिफ्ट हो जाया करता था। और ये भी सही है कि हम लोगों ने भी महसूस किया कि कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन इधर पिछले कुछ वर्षों से लगातार इसमें जो तापमान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है,
3: और ये सारा कुछ है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। देर तो हो ही गई है, लेकिन अभी भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसको संभाल कर रखें, बचा कर रखें। पर्यावरण जहाँ में उतार चढ़ाव है वहाँ जल की भी दिक्कत है, जल का भी संकट हमें देखने को मिलता है, तो अगर यही स्थिति रही तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा।
4: सही बात है। अगर रांची की बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पूरी तरह से ड्राई जोन हो चुके हैं, और ऐसी मजबूरी आ गई कि लोगों को अपना फ्लैट खाली कर 1-2 महीने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो ये बहुत विकट स्थिति है।
3: और इसके जिम्मेवार हम भी हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है, कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली, अभी दुर्घटना घटे इससे पहले कि हम अपनी तैयारी कर ले और पेड़ पौधों को जहाँ तक हो संरक्षित करने की कोशिश करें, अपने आसपास को हरा भरा बनाने की कोशिश करें, साथ ही दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। सरकार अपने प्रयास करती है, लेकिन थोड़ा प्रयास हम सभी को भी एक सजग नागरिक होने के कारण करना पड़ता है।
4: समेकित प्रयास से ही सारे कुछ संभव है, अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती।
3: तो कोशिश ये करिए कि पेड़ जब भी मौका मिले, जन्मदिन पर या बच्चों के जन्मदिन पर या सालगिरह पर एक पौधा लगाने की कोशिश करें, जो बड़ा होकर आने वाले समय में बड़ा वृक्ष हो और जो मौसम को चुस्त तंदुरुस्त रखे, ताकि हम भी अच्छे से रह पाए। लेकिन बात कर रहे हैं मौसम की, और गर्मी के मौसम में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? आप कुछ सोच रहे हो?
4: मैं समझ रहा हूँ कि, और

0: ईश्वर ने भी ऐसा किया है ना कि हर सीजन के लिए उन्होंने इस तरह का कुछ व्यवस्था करके रखी है, जैसे मान लो कि अभी तरबूज का समय है और भी बहुत सारे फल अभी आ रहे हैं, इसके अलावा भी और भी जो कृत्रिम भी बहुत सारा चीज़ है कि जो भी ठंडा जो शीतल पेय है ये कर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और खासकर
1: तो बिल्कुल लेकिन एक सबसे अच्छी चीज है
0: गर्मी से बचने का जो
1: नहीं आपको गर्मी में जो सबसे अच्छी चीज लगेगी ना, आप बहुत पसीने से लथपथ है और कहीं से ठंडी हवा का झोंका अगर आपको मिलता है लगता है तो वो एक बहुत ही सुकून भरा होता है। तो चलिए एक सुकून भरा गीत,
0: मैं समझ रहा हूँ कि यह गाना भी कुछ उस तरह ही होगा।
1: हाँ बिल्कुल, जो हमारे श्रोताओं को ना गर्मी में थोड़ी राहत तो जरूर देगा।

0: मीनू जी, बातें हम कर रहे हैं जौहरा जी में बहुत सारी, और जौहरा जी का एक मुख्य सेगमेंट होता है आज के इतिहास के बारे में जानने की, क्योंकि इतिहास से अच्छी बुरी घटनाएं जुड़ी होती हैं जो हमारे लिए सबक का काम करती है। तो आज के इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं।
1: बिल्कुल, अगर 2003 की बात करें तो इसराइल के प्रधानमंत्री एरियल शैरोन ने पश्चिम एशिया शांति योजना को स्वीकार किया था,
0: और 2005 की बात करें आज के दिन की तो एनबी इंकबेयर मंगोलिया के राष्ट्रपति चुने गए थे।
1: 2007 में एमा निकोलसन रिपोर्ट यूरोपीय संघ की संसद में पारित हुआ था,
0: और 2008 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाने का फैसला किया था। और नजर डाल लेते हैं उन महान हस्तियों पर जिनका आज निधन हुआ था। आज ही के दिन 2023 में टी रिनपोचे भारतीय राज्य लद्दाख के प्रसिद्ध आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थे, उनका भी निधन हुआ था।
1: और अगर हम बात करें तो गुरु हनुमान जो कि भारत के महान कुश्ती कोच और पहलवान रहे हैं, 1999 में उनका निधन हुआ था।
0: भारत के प्रमुख राजनेता एसके पाटिल का निधन 1981 में आज ही के दिन हुआ था।
1: और निकोलस कॉपरनिकस जो कि प्रसिद्ध यूरोपीय खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 1543 ईस्वी में हुआ था।
0: और नजर डाल लेते हैं
1: और आज के दिन अगर देखा जाए तो मशहूर फिल्म हस्ती 2000 में इनका मजरू सुल्तानपुरी की हम बात कर रहे हैं, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और शायर, उनका भी निधन आज के दिन हुआ था।
0: तो इन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज बात कर लेते हैं आज जन्म लिए व्यक्तियों के बारे में जिनका आज जन्म हुआ। 1969 में सुधीर कुमार वालिया भारतीय थल सेना के जाबाजों में से एक थे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आज ही के दिन 1952 में रंजन मथाई भारत के पूर्व भारतीय विदेश सचिव थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 1954 में बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी।
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट रह गया था, हम अपने आवाज की दुनिया को दोस्तों को बताना चाह रहे थे कि और खासकर उनकी उनकी संबद्धता हमारे झारखंड के ही जमशेदपुर से रहा है ना। और इस चीज को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और अगर हम बात करें तो
0: एक
1: भारतीय जनता पार्टी के जो एक राजनीतिज्ञ की, जैसा कि हम लोग अभी कह रहे थे कि थौना ओजम जो चौबा सिंह है, उनका भी आज के ही दिन जन्म हुआ था। और जन कृष्णमूर्ति जो कि 2001 से 2002 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनका भी जन्म आज के ही दिन हुआ था।
0: और आज के दिन एक और प्रमुख हस्ती थे हैं फिल्मी दुनिया के, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार राजेश रोशन, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1955 में हुआ था। और इनके गीतों की बात करें तो बहुत सारे रोमांटिक हर तरह के गाने इन्होंने बनाए हैं, और इनकी संगीत की पहचान ही अलग है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका अहम योगदान है। तो आइए उन्हीं की फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: बात कर रहे हैं हम आज के दिन की, तो आज एक बहुत ही खास दिन है। आज कॉमनवेल्थ डे है, यानी राष्ट्रमंडल दिवस है। और इसका जो इस बार का थीम है 2026 का, वो है समृद्ध राष्ट्रमंडल के लिए मिलकर अवसरों को खोलना।
1: और बिल्कुल, जो सदस्य देशों में देशों के बीच अस्थाई समृद्धि और सहयोग को बढ़ावा देने पर यह जो थीम है केंद्रित है।
0: हाँ, और बात कर ले तो 56 स्वतंत्र राष्ट्र वैश्विक उत्सव होता है या इस अवसर पर लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में विशेष प्रेयर होती है और समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 2.7 अरब नागरिकों के साझा मूल्यों, लोकतंत्र और विविधता का जश्न मनाया जाता है।
1: और बिल्कुल, भारत में राष्ट्रमंडल दिवस भारत और कुछ अन्य देशों में ऐतिहासिक कारणों से एक अलग राष्ट्रकुल और साम्राज्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, जो कि 24 मई को आज ही के दिन इसलिए मनाया जाता है, जो महारानी विक्टोरिया की जयंती का प्रतीक भी है।
0: हाँ बिल्कुल।

0: श्रोताओं, आज एक विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए आज जोहार रांची का समय बस यहीं तक। कल जोहार रांची आप फिर सुन पाएंगे हमारे इसी बैंड इसी चैनल पर, लेकिन आज के इस कार्यक्रम से आपकी दोस्त सुनीता
1: और विनोद
0: लेते हैं आपसे विदा, कहते हैं नमस्कार जोहार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है स्वर यात्रा के 90 वर्ष यह कार्यक्रम, जिसमें आज आपकी मुलाकात होगी झारखंड के प्रसिद्ध लोकगीत कलाकार श्री मधु मंसूरी हसमुख जी से। उनसे बातें कर रहे हैं मनोज कुमार।

90 साल से जोड़े हर दिल का तार, गांव शहर में गूंजी तेरी पुकार, खबरों से लेकर लोकगीतों तक आकाशवाणी तू है भारत की झंकार। जोहार नमस्कार, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर मूल मंत्र कर लेके आकाशवाणी कर गौरवशाली 90 वर्ष कर सफर चलत है। तो यह उपलक्ष्य में आकाशवाणी रांची दने से एगो विशेष कार्यक्रम चलत है स्वर यात्रा के 90 वर्ष। तो यह सफर में आई जरोरमन के माई माटी से जुड़ल मुद कलाकार से भेंट मुलाकात करवाब, जे कि अपन भाषा संस्कृति लोकगीत मन के बचाए और गोटा देश दुनिया में पसराए के लिए अपन संपूर्ण जिंदगी के लगाए दे हैं। और इनका गीत संगीत अखाड़ा से लेके आकाशवाणी में कई बरस से गूंजते आवत है। तो इनकर बारे में तनी सन हम बता दे चाहिला। आपने कर जन्म 1948 में सिमलिया रांची में हो रहे हैं। छवा बेरा से गायन अभिनय कर क्षेत्र से जुड़ल ही मेकन में 33 वर्ष कर सेवा देली। और आपने के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा 2011 में झारखंड सरकार द्वारा झारखंड रत्न से सम्मानित करल गेले। और भारत सरकार देने से तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कला लोक संगीत कर क्षेत्र में सन 2020 में पद्मश्री से सम्मानित करल गेले। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित करल गेले। आपने करीबन 9000 से बगरा गीतमन संगीतमन कर माध्यम से मंच साझा करले और संगे संग करीबन 1000 गीत के लिख के गाय के और देश दुनिया में पसरा ली। तो संगी साथी मन, हम के लागत है कि रोरमन जरूर बुझ जा हुई कि हम आज कौन कलाकार से भेंट मुलाकात करवाए वाला ही। तो पहले एक छोटा सा गीत सुनू।

0: रौरेमन साहिब ओजली ई हैं माय माटी से जुड़ल बेहतरीन लोकगीत कलाकार पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख। इनकर ले थोड़ा सा दुसद हम कहे चाहब, मांदर के थाप बांसुरी के तान मधु मंसूरी दा की आवाज में बसता झारखंड महान, जंगल झरना पहाड़ नदी का गान दिल से गाया दिलों में बस गया इंसान। तो मधु दा आपने के हमारे स्वर यात्रा कर 90 वर्ष कर सफर में स्वागत है, अभिनंदन है, जोहार है। तो भाई देखो हमरे कर आकाशवाणी कर 90 साल कर गौरवशाली सफर चलत है, तो कहिया से सफर में जुड़ ली रोरे?
1: ऐसे हम अपन जीवन कर प्रथम कार्यक्रम 21 जून 1955 ईस्वी के कई रही और उम्रदार आदमी मन हमके करवाए हैं और उस दिन रथ मेला रहे 21 जून 1955 के रथ मेला रहे और तब हमार उम्र 7 साल 7 महीना 16 दिन रहे और उस समय से आज तक हम रो सामने ही।
0: तो भाई देखो आकाशवाणी में जब पहली बार ढुकली यहाँ से जुड़ ली तो पहले धाव कौन सा गीत के गुनगुनाए रही?
1: 27 जुलाई 1957 ईस्वी के हम यहाँ एक लोक गीत या किसका केकर लिखल है तो हमको उतना याद नहीं रहे और हम वो गीत के गाय रही हिया लानल जाय रही। 3 आदमी हम इन प्रोग्राम कर रही, एक पांडे वीरेंद्र नाथ राय वकील साहेब, एक कोई मुकुल जी थे और एक हम। और वो गीत जो हम गाय रही वो गीत हम रोरिन के थोड़ा सा सुना दे, एक चाहिला अपने मन के।

খালায় দূর দেশে, হরে কো ছান লাগত না বেশে, ছোড়ি রাখাল দূর দেশে।

0: तो भाई एक गीत के पहले शुरुआत कर ली है आकाशवाणी में, है कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: तो कैसा अनुभव रहा लक्ष्य बेरा कर?
1: देखो, एक तो हम बचपना रहे, बहुत छोटा लड़का रही, लेकिन जीवन में ऐसा मौका इतना सभ्य जन कर बीच में गावे कर मौका नहीं लाग रहे। हम ककरों से कोई बगड़ा बात बोलत नहीं रहे, जे कहत रहे वही हम करत रही, और ताम झाम के भर आश्चर्य से देखत रही।
0: सही बात है। देखो, से बेरा से एखन तक जो आकाशवाणी के रोर का सफर है, बीच में बहुत सारा उतार चढ़ाव रोरे देख ली
1: जी।
0: तो पहले कर आकाशवाणी और एखन कर आकाशवाणी में का अंतर बुझाते हैं, किसन कुछ अंतर है?
1: बिल्कुल, ये बात तो मन के छुए नियर है। वो जब ये आकाशवाणी कर जब स्थापना हो रहे, और ये बात यहाँ कर रेडियो से शाम कर टाइम में जो पूरा दुनिया में, पूरा राज्य में, पूरा झारखंड में, पूरा बिहार में ये बात बोलल जात रहे, और जोन जोन खास आदमी मन रहे बोले में, सुगिया बहन यानि रोजिन लकड़ा, शिबू भाई यानि दुर्गानाथ पांडे, संतू भाई यानि प्रमोद कुमार राय, ये सब कर बात ये सांझ के रेडियो में सुनने के लिए जेकर घर रेडियो रहे सब आदमी चल जात रहे सुनत रहे, और शिबू भाई कर और सुगिया बहन कर जे बातचीत होत रहे बहुत चटकदार, बहुत मने दिल के छुई लेवत रहे। अब वो चीज़ नहीं है।
0: तो है अंतर।

0: तनी मनी बुझाते हैं कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल, कमी तो है,
0: कोई बात नहीं भाई, देखो कमी बेसी तो होते रहला और हमारे सबके लेके चले
1: सब एक बरन तो नहीं हो सके ना।
0: सही बात है। देखो भाई, रोरे अखड़ा में नाचीला गावीला और डेगीला और आकाशवाणी में गीत मन गुनगुनाला, तो दुए में का समानता देखेला कि कौन अंतर देखेला कैसा देखेला?
1: देखिए, रीझ तो यहाँ भी है, रीझ तो हुआ भी है, हाँ, अखड़ा में भी है और शिष्ट मंच में भी है। लेकिन अखड़ा में एक यूँ विशेषता है, आम जन विशेष जन सारा आदमी अखड़ा, और अखड़ा तो उद्गम स्थल रही है।
0: सही बात,
1: सांस्कृतिक कार्यक्रम कर विकास कर उद्गम स्थल रही है। एक स्वतः ऑटोमेटिक आदमी के ऐसा भावना बन जाए नहीं, जे ही आकर परंपरागत चीज हृदय में आए के खेले लागी, उछले लागी, तरंग लेवे लागी, अखड़ा कर वो महत्व है, स्वतः हुआ भावना बदल जाए ला।
0: सही बात है। देखो अखड़ा में नाचक ढेगे कर बात कुछ और हियाँ कर जो प्रेरणा और हियाँ कर हमारे
1: बिल्कुल
0: एकदम अलग है कि नहीं? देखो आकाशवाणी से जुड़ल तो बहुत पहले से जुड़ है रोरे, तो रोर कर जिंदगी में का परिवर्तन अलग आकाशवाणी से जुड़ कर पाछे?
1: सबसे बड़ा काम आकाशवाणी कर माध्यम से जो हमके मिल है वो है प्रेरणा। हम कितना खुश नसीब आदमी है अपने के हम महसूस करीला, और सहृदय आदमी मन जे इस बात के बोलीला, जीवन में किसी आदमी को 10 बार, कोई आदमी के 5 बार, कोई आदमी के 15 बार ये अवसर मिललक। और आकाशवाणी रांची हमके 27 जुलाई 1957 से आज तक में 190 बार कार्यक्रम का अवसर दे है। ये लोक संगीत का ऑल ओवर इंडिया में बुझाया ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसको इतना लंबा अवसर लोक आकाशवाणी रांची से या औरों जगह मिल हुई, ये हम महसूस करिए अपना।
0: तो एक सरोवर का जिंदगी में काफी परिवर्तन हलक और काफी फायदा हमें लग है कि नहीं?
1: दिल के छुए लगे, इतना दिन हमको ये रेडियो स्टेशन आकाशवाणी हम की अवसर दे है, मजाक बात नहीं है
0: भाई। तो देखो आकाशवाणी से अपने मन जोड़ लिए, तो यहाँ कौन कौन गीत मन के गुनगुना लिए, कौन कौन सब्जेक्ट विषय मन रहे यहाँ पर, वो नो याद है? तो
1: बहुत सारा बात याद है, तरह तरह कर गीत हम यहाँ गाए ही, और अभी तो डायरी हम नहीं ले लान ली, लेकिन पुराना डायरी मन के फिर भी हम एक दो गीत छोटा छोटा सुनाए दे। परिवार नियोजन कर वास्ते जब हम के यहाँ लानल जाए रहे कि आज अपने के परिवार नियोजन संबंध में गीत गाना है, तो हम बोले आली, और वो गीत का चर्चा आज भी प्रमोद कुमार राय का है ना कि ऐसा भी गीत कोई लिख सकता है मधु भाई, प्रमोद कुमार यहाँ तो का आदमी था। शिक्षा सिंगार जहाँ दुख दर्द उधार नहीं, सुनो संगी भाई सब सुनो संगी भाई, शिक्षा सिंगार जहाँ दुख दर्द नी उधार तहाँ, सुनो संगी भाई हाय रे सुनो संगी भाई।

0: कुमार, जीत कर मतलब है शिक्षा और जनसंख्या जिस घर में परिवार कम है वो खुशी का परिवार है। शेरनी कर दुई गो बच्चा, एक साल में जन्म दिलक और एक साल में एक सियारिन 16 गो बच्चा जन्म दिलक, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी भी वो दुई गो छुआ कर सामने वो 16 गो छुआ बेकार है। सेले हमार विनती है कि परिवार को बारे शिक्षा और जनसंख्या कर बारे सोचे। ये गीत हम इस आकाशवाणी में गाए
1: भाई, बेस बात है। रोरो तो यहाँ बरंग बरंग कर गीत गाही और यहाँ बहुत पसंद करे ना, सबको सुने ना तो कहे ना कि भाई मधु भाई कर गीत है, ये गीत हमारे मन के गुनगुनाए चाहिए और हमारे बेरा बेरा से उखे बजाते रही ला है कि नहीं। आकाशवाणी से गाते गाते गुनगुनाते गुनगुनाते रोरे कहाँ कहाँ तक गली?
0: झारखंड राज्य में तो तमाम हम के अवसर मिले है, तमाम उड़ीसा और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का मैंने प्रॉपर ये बॉम्बे एरिया है, पुणे है, सतारा जिला है और ये जो महाराष्ट्र में नागपुर है, बड़ा नागपुर, वहाँ जो एक जसवंत

0: सिंह चौहान स्टेडियम है, वहाँ तीन बार हमके अवसर मिललक बिहार में। बंगाल में तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर कलकत्ता शहर में हमके बहुत अवसर मिले है, और वो सब देन है आकाशवाणी कर। ऐसे हमार जीवन में एक जगह से बहुत खबर आवेला, हमार जो खबर करे ना, लेकिन हम सक्षम उतना अकेले नहीं रही ले, वो है अंडामन। वहाँ हम अंडामन जा नहीं पा रहे हैं, हमारा आदमी हुआ है लेकिन हम वहाँ नहीं जाए ही, बहुत आदमी खबर करे ना। ऑल ओवर इंडिया, जम्मू कश्मीर नहीं जाए ही हम, नहीं तो संपूर्ण भारत में करीब करीब
1: जाए।
0: हाँ, ताइवान, भूटान, ये सब, पूरा बंगाल, आसाम, तमाम ये आकाशवाणी रांची से प्रेरित हो के हमार खोज होलक।
1: जब अपने सात समुद्र पार गेली, हुआ पर हिया कर माय मट्टी और भाषा संस्कृति के वहाँ गुनगुना लिए, तो कैसन हुआ कर अनुभव रहलक?
0: हुआ कर आदमी बातचीत के बुझे तो नहीं पारत रहे, लेकिन ये स्वर शैली रिदम उमंग से बहुत प्रभावित होत रहे। पुरखा मन कई हैं, विद्वत जन कई हैं, एगो संस्था आदिकाल में गुरुकुल कांगड़ी आश्रम, वो सब में कला संस्कृति ये आशीर्वाद आदमी के मिल है। और वही बात पर प्रेरणा कर माध्यम है जे आकाशवाणी होलक, जे शिष्ट समाज होलक, जे अखड़ा होलक, सब जगह मिल है। और हम तो अपन जे हमार पहचान है उसके आज तक हम नहीं छोड़ ले।
1: सही बात है। आपने के झारखंड सरकार द्वारा 2011 में झारखंड रत्न भेटालक, तो इनकर कोई अनुभव इस तरह की कुछ बात होलक?
0: एक बात ये पुरस्कार संबंधी बात, बहुत सारा बात के आदमी मन के जानकारी नहीं है। जीवन में हमके प्रथम बार 1973 ईस्वी में छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल कर कमिश्नर रहे इसके घोष, तो सूचना जनसंपर्क कर बैनर तले हमके गोल्ड मेडल से सम्मानित कर रहे हैं।
1: चलो, तो
0: ये बात दुनिया नहीं जाने ला। 1991 ईस्वी में सेंट जेवियर कॉलेज कलकत्ता, जो पार्क स्ट्रीट कलकत्ता में है, उसका चीफ गेस्ट रहे डॉक्टर रामदयाल मुंडा। वहाँ पूर्वी भारत के लोक संगीत का वीआईपी कलाकार के रूप में हमके सम्मानित कर गया। उसके बाद में 2022 में, मार्च 2022 में प्रयागराज यूनिवर्सिटी कर एक इकाई कॉलेज बगले में है, यूनिवर्सिटी के बगल में, वहाँ हमके आमंत्रित करके सम्मानित कर गया। और लिखला है कि पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख इज द फादर ऑफ मॉडर्न नागपुरी सॉन्ग, ये सम्मान प्रशस्ति पत्र हमके दिलाए। और हमार जीवन में करीब करीब 300 छोटा बड़ा सम्मान मिल है और 70 गो प्रशस्ति पत्र मिल है। ये हम आभारी ही आकाशवाणी कर और झारखंडी समाज कर और भारतीय समाज कर भी।
1: सही बात है। देखो, झारखंड के बारे में कहल जाला है कि हियाँ कर माटी, हियाँ कर पानी, इकर महिमा है बड़ी पुरान, मांदर कर थाप पर बांसुरी कर तान, ए हमार झारखंड कर असली पहचान। तो भाई देखो, सबसे बड़ सम्मान के रूप में तरह अपने के भेटालक पद्म श्री से, जे कि 2020 में तत्कालीन जे राष्ट्रपति रहे उनकर से भेटालक, तो कैसा अनुभव रहा?
0: जब इकर जानकारी हमके वहाँ से फोन में अलग, तो मन तो बहुत प्रभावित होलक और एक भावुक भी हो गई कि हमको देश का इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। हम अपन चाल चलन, तौर तरीका, व्यवहार के और बनाए के रखे चाहिए। सबसे पहला ये बात हम सोच ली कि हमर हाथ से कोई दुनिया में ऐसा कोई गलत ना हो, हम ये बात महसूस कर ली। उकर बाद हम वहाँ गेली, खबर कर लें कि आप वहाँ का जो सेक्रेटरी था, आप प्लेन से आइए, ट्रेन से आइए, जिससे इच्छा होगी आपको भाड़ा भुता सब मिलेगा। और हम प्लेन से गेली, अपन हमर जे भागीदारी, हमर जे मददगार सहयोगी रहे, हमर अर्धांगिनी कहू, हमर घरनी, उके लेके भी हम गेली दुयोजन, और अशोका होटल में ठहरली। उकर बाद वहाँ से तीसरा दिन या दूसरा दिन राष्ट्रपति भवन लेगल गेलक, वहाँ मोबाइल वगैरह के बाहर ही राख ले लें। तब हमर एक बार तो वहाँ सबका रिहर्सल होलक, लेकिन फाइनल टाइम ने रामनाथ कोविंद जी रहे राष्ट्रपति, जब हमारा नाम उच्चारण होलक, आवाज होलक देवल गलक, तो हमको रामनाथ कोविंद जी कहलें कि हजारों आए थे, लाखों आए थे, परंतु मधु मंसूरी हसमुख नहीं आए थे। इतना प्यारा नाम किसी का देश में है कि नहीं, ऐसा रामनाथ कोविंद जी बोले। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी मेरे पास आए, बोले महाशय आप किधर से आए हैं? तो हम बोले रांची झारखंड से सर। तो बोले रियली आपका नाम बहुत सुंदर है, क्या नाम है? हम बोले मधु मंसूरी हसमुख। बोला बहुत अच्छा, ऐसा तो आनंद लगा।
1: और नाम कर पाछे हसमुख है, तो हसमुख अपने से ऊपर नाम जोड़ ली कि कोई देल है?
0: एक रोर कमिश्नरी विभाग में एक आदमी रहे कुलदीप सहाय, वो जब रांची में मने जरिया ठाकुर महेंद्र नाथ सहदेव कर छुआ मन के ट्यूशन पढ़ाते रहे, तो खुशी हो के ठाकुर महेंद्र नाथ सहदेव कुलदीप सहाय के हमार गाँव सिमलिया में धान केत पुरस्कार में दे है।
1: अच्छा।
0: वो जमीन मन आज भी है, आ उनका नाती पोता मन अब हुआ घर बना थे। तो हमार बाप हुआ जाए रहे काम करे रोपा, तो हम रातू एलपी स्कूल में चौथा या पांचवा क्लास में पढ़त रही हो, तो जाए रही तो स्कूल से बाप जब गेली चाभी घर कर चाभी मांगे और बोली कि भात है कि नहीं? छुआ जब खोल के स्कूल से आवेला तो है बाबू, तो वह टाइम कही जा ही हमार हाथ उठ के देखलक वो कुलदीप सहाय है। बूढ़ा वो टाइम उम्रदार रहे, अब कहलक हमार बाप का नाम लेके अब्दुल के हको, तो ये हमार छोट बेटा है कही मास्टर बहुत मुश्किल से पोई सी यही छवे बेरा माए मुर जाए रहे, तो हाथ उठ को देखा बोला का नाम राखीस? मधु मंसूरी। अच्छा सुन, आज से नहीं ये लड़का के हम एक और नाम देतियो, इकर नाम मधु मंसूरी हसमुख राख देवे। तब छठा क्लास में जब हमार नाम लिखाए हमार बाप गेलक, वो टाइम हमार बाप हेडमास्टर लक्ष्मण नाथ मिश्रा रहे नाम लिख दिलक मधु मंसूरी हसमुख।
1: तो सही बात है भाई, देखो और एखन अपने कर 80 बरस हो जाते, और एखन तक कहब तो पहले जो गीत मन गावत रहे गुनगुनाते रही और एखन तो गुनगुनाते कोई अंतर नहीं बुझाते, तो राज कर का बात है के?
0: हम सोची ले पहला लक्ष्य है छोड़ बढ़कर आशीर्वाद और प्रेरणा। लोग जब खुश हुए ननी और जो आशीर्वाद दो है ना, हंसे न प्रेम से धन्यवाद करे ना, वो एक बहुत बड़ा शक्ति है। ऊपर वाले का आशीर्वाद देना और आदमी के अभ्यास करते रहना, तो हमार हैबिट है। रास्ता चल रहे तो भी गुनगुना रहे, घर में आज भी हम गावी ले, घर में गावत रही ल, छुआ पुता कोई कर बाधक नहीं है। अरे अब कितना दिन जीवन भर गा रहा है तो गाने, तो ये सब आदत अभ्यास, कोई भी चीज के हम रिफाइन करत रही ला अभ्यास, बस यही बात।
1: देखो पहले कर गायन और एखन वर्तमान समय कर गायन में का के अंतर मन देखी ला, किसन बुझाले के पहले के गावत रही और एखन गावत ही, तो आजकल जिसन युग मन से सब गावे ना, तो कुछ तो हमको लगा कि भाषा संस्कृति से सब दूर होते जाते हैं, किसन बुझाला?
0: बहुत कुछ ऐसा बात है ये आजकल युवा समाज युवा आदमी मने ये बात के स्वीकार करे तैयार नख है, उकर बीच में एक दीवार है और वह दीवार से आदमी के प्रेरणा लेवे चाहिए, लेकिन उस दीवार से आदमी कुंठित होत हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आदमी के कुछ बात जे खास करके ये जीवन का पहला अंग है, ये बात दूरदर्शन में या आकाशवाणी में या महफिल में नहीं बोलल जाए ले, लेकिन नहीं बोलना एक गलती है। ऐसा ईश्वर ने समाज ने बुद्धिजीवी ने आश्रम में दे है, ये बात रोरिन भी बात के स्वीकार करो, सुनने वाला भी स्वीकार करो। मनुष्य में या पशु पक्षी में तमाम प्राणी जो ईश्वर दे है खुदा दे है, शिकर में तरह तरह की बात है, एक शक्ति है सेक्स, सेक्स की ऊर्जा जब रूपांतरित होती है तो प्रेम की अभिव्यक्ति बनती है। ऐसे बड़े साधु संत महापुरुष ऋषि मुनि कई जाए हैं, और जब भी सब ऊर्जा प्रेरणा प्रकृति कर समाज कर नियम धर्म पर्व त्योहार नेक दस्तूर के देख के आदमी के प्रभावित होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए, लेकिन अपना एगो भाव बना लिया है और हमारे पूर्वज पुरखा मन कर दिल के मिटा ले जाते हैं, लेकिन ये सब समाप्त हो जाएगा। इधर से सुनता है इधर उड़ जाता है, जो गीत गाता है दुर्भाग्य है।
1: हाल फिलहाल में अपने का एक गीत रहे सातों रंग सजल हमर झारखंड, इकर बारे में तनिक गुनगुनाए के कुछ बताओ।
0: एक लड़का है विवेक नायक, वो हमार घर गेला के बोलक कि गुरुजी एक चीज कर, श्री गणेश अपने के कर दो एक है तले जे जानब से हम इन करब, लेकिन रोरे राज कर बड़ा कलाकार मानल जाए ले गुरुजी हम इन कर किस ले एक पंक्ति रोड के गुनगुनाए देवे खे फिर हम इनके आगे करब। और मनम के गाड़ी से

0: कहल जाए एक बात जाने चाहिए, 10 दिसंबर 1960 ईस्वी के जयपाल सिंह मुंडा जी कर बुलावा में हमके लाल रन विजय नार सहदेव खूटी लेक रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक, और हम अपन जीवन कर पहला गीत नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक में झारखंड आंदोलन कर गीत गाय रही। तब हमार उम्र 12 साल 3 महीना रहे और गीत तो रहे, पहले रहली हम गोरा के धांगरवा धन धर्म डगमगा, आबे ही साहेबक पानी भरवा धन धर्म डगमगा। ये गीत हमार बाया हाथ के पकड़ के जयपाल सिंह मुंडा जी कह रहे, ये लड़का एक दिन बड़ हो के झारखंड राज्य के दिशा देवी ऐसा कह रहे।
1: आपने के तो सबको पसंद करे ना
0: जी,
1: और आपने के पसंद करे ला प्रेरणा स्रोत बहन है अखन तक में प्रेरित केकर से होली?
0: अगर हम किसी चीज से प्रेरित हुए है तो प्रकृति सबसे बड़ा गुरु है एक, और दूसरा गुरु मेरा माँ बाप है दो, और तीसरा गुरु वह औरत है, वो औरत जे के आदमी अछूत कहे ना। जब हमार माए हमके जन्म देत रहे, रोर माए रोड के जन्म देत रहे, हर समाज में ही बात होते आए है, जन्म देते वक्त माए प्रसूत कर पीड़ा से बहुत दर्द में व्याकुल रहे, लेकिन वो औरत वो कुशरायन औरत उस समय जे माए का रंग के सहलाए ला, उस गुरु को कोई याद नहीं करे ना, ये समाज का बहुत दुर्भाग्य है। वो भी एक बड़ा गुरु है, ये सब चीज पर्व त्योहार नेक दस्तूर ये सब प्रेरणा स्रोत है, प्रकृति प्रेरणा स्रोत है, चांद सूरज धरती आकाश हवा बतास ये सब प्रेरणा स्रोत है। हर चीज को अगर देखने की नजरिया है तरीका से देखब तो उकर से कुछ पावब, अगर साहित्य किताब के पढ़ब और उकर जे वास्तविकता है सिक्के रोरे कुछ ग्रहण कर स्वीकार करब तो प्रेरणा स्रोत है, और अगर इससे मजाक जैसा पढ़ब कुछ नहीं।
1: आपने तो स्टेज में करीबन हमको लगा थे कि 9000 से ऊपर मंच मन के साझा कर ली है कि नहीं, तो कहाँ सबसे बढ़िया लगा लगा, कौन से मंच में लगा लग कि भाई ये मंच हमके काफ़ी कुछ दे लगकर यहाँ से मंच से सीख ली?
0: सांस्कृतिक मंच में हम 9832 मंच में साझा कर ली आज तक। हम सोची ले कहीं हम शर्मिंदा हो के अपन घर लौट नहीं आली, कोई ऐसा मंच नहीं है जहां हमके पब्लिक श्रोता गांव भैया शर्मिंदा कर लें। हम उमन कर बहुत आभारी है कि हमको कहीं शर्मिंदा नहीं किया,
1: और सम्मानित सभी जगह भेटा लिखे
0: बिल्कुल।
1: कौन कौन भाषा में गीत मन गुनगुना ली नागपुरी के अलावा?
0: ऐसे हम अक्सर नागपुरी गीत, कभी कभी फिल्मी गीत मने गावत रही, या राष्ट्रीय गीत ये सब भी हम गावत रही, लेकिन हमके प्रफुल्ल कुमार राय कहलक 1960 में, अरे बाबू ये सब बात के भूल के तो ये अपन माय माटी कर सेवा कर तो के एक दिन भगवान बहुत ऊंच जगह में पहुंचाई, ये प्रफुल्ल कुमार राय का देन है। उस दिन से बाकी सब छोड़ के हम अपन नागपुरी गीत खोल
1: बेस बात भाई हमरे कर माय माटी कर भाषा के छोड़ के नखे हुए गीत के आगे पसंद
0: नहीं छोड़
1: बढ़ा के। देखो एखन नवा पीढ़ी कर सब कुछ छो मन आवत है गावत है गीत गुनगुनाते हैं, वो मन के का सुझाव देख चाहिए?
0: सबसे पहला सुझाव हम ही देख चाहिए नी, ये रांची में झारखंड में रांची गुमला लोहरदगा सिमडेगा विभिन्न संथाल परगना, तो संथाल क्षेत्र में संथाली भाषा कर जे बड़े गीतकार लोग है वो मन के एक महीना में एक कॉलेज में बुलाए चाहिए, उस कॉलेज में उस कॉलेज में उस कॉलेज में एक मुंडारी क्षेत्र में मुंडा कर जे बड़े कलाकार विद्वान कलाकार हैं और अच्छे कलाकार जानकर राग रागनी उनके कॉलेज में उस क्षेत्र में बुलाए चाहिए, कॉलेज मन के प्रिंसिपल बन के ये सब। उसी तरह से नागपुरी खोरठा कुरमाली जे भी क्षेत्र में कॉलेज है उस क्षेत्र में बुलाएक चाहिए और संदेश राग रागनी कर देवेक चाहिए, ये बात अगर जब तक नहीं हुई छोड़ा मन लड़का मन बगड़बे कर बै, ये बात तो होना चाहिए।
1: सही बात है, और हम भी कहे चाहब नवा पीढ़ी मन के कि अपन माटी अपन बोली अपन संस्कृति अपन गौरव है के जे युवा अपन जड़ से जुड़ रहे ला वह आसमान छुए ला
0: जी।
1: सही बात है के तो भाई देखो और हमारे कार्यक्रम आ लिया बहुत बढ़िया से गीत गुनगुना ली और ढेर सारा जानकारी दे ली, और हमको लगा था कि यहाँ कर बहुत सारा आदमी मन अपने कर बात के सुन के प्रेरित हो बैं आगे बढ़े कर कोशिश कर बैं। अंत में हमरे कर देखो आकाशवाणी कर 90 साल कर सफर चलत है तो कुछ कहे चाह बंद
0: शुभकामना है कि जितना बढ़िया से आकाशवाणी के और मीडिया माध्यम के

0: चलाए हैं आदमी मन कर करता धरता मन, हम चाहिए किसी तरह से चलते आवे चाहिए, चलाते रह चाहिए। और यही बात के अंत करते करते हम दो पंक्ति अपन भाषा जन्म माय भाषा जे जन्म भाषा है से संबंध में एक सस्वर एक मिनट का एक आधा मिनट का एक गीत हम अपने मन के दे जाते हैं। ये बात कर याद रखे चाहिए। हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा, एहे मने साध हमारे एहे अभिलाषा। हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा, एहे मने साध हमारे एहे अभिलाषा।
1: संगी साथी मन, आकाशवाणी कर गौरवशाली 90 वर्ष कर सफर में विशेष कार्यक्रम स्वर यात्रा कर 90 वर्ष कर सफर में आई जे हमर संग जुड़ल पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख। तो मधुदा हमरे कर आकाशवाणी कर सफर में हम सफर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।
2: स्वर यात्रा के 90 वर्ष झारखंड के प्रसिद्ध लोक गीत कलाकार श्री मधु मंसूरी हसमुख जी से मनोज कुमार की बातचीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगला कार्यक्रम हम लेकर आएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम आपकी पसंद का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके पसंद किए हुए कुछ प्यारे से खूबसूरत से गीत। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ सुनीता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म गाइड के इस गीत के साथ। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है स्टीवन मन ने और गाया है लता मंगेशकर ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं गांधी चौक रोपर पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतक बीरक, मीका बीरक। साथ ही आप हैं बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी केशरी। लीजिए अपनी पसंद का सुनिए फिल्म गाइड का ये खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में।
1: भाई और बहनों, इतने गाने कितने का और आज आ गई हैं

अगला गीत हमने लिया है फिल्म नया दौर से। इस गीत को गाए हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। गीत के बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई है ओपी नैयर ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, गौरी शंकर केशरी, शंभू केशरी। गोलाघाट बक्सर से आप हैं विजय केशरी, पंकज केशरी, रोहन केशरी। साथ ही गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, प्रमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। लीजिए अपनी पसंद का सुनिए फिल्म नया दौर का ये खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। अगले गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, साथ ही आप हैं सासाराम से ममता कुमारी, माधव, यशराज, सुप्रिया तिवारी, रेणु मलिक और परिवार के सभी सदस्य। ये सब सुनना चाहते हैं फिल्म मनमौजी का ये खूबसूरत सा गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

पाखियों के झरोकों से इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे हेमला तौल शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा दंतरंगी से हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मणिपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म कभी कभी से। इस गीत को लिखा है साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई है खय्याम ने और गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वली उल्लाह नूरजहां, राजनंदगांव से आप हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से आप हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, साथ ही छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। लीजिए अपनी पसंद का सुनिए फिल्म कभी कभी का ये खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त हो चला है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। आज चर्चा होगी भारतीय सामाजिक व्यवस्था की धुरी महिलाएं। साथ ही भेंटवार्ता आप सुनेंगे, कम उम्र में सौंदर्य प्रसाधनों का बढ़ता इस्तेमाल कितना सही कितना गलत, जानकारी मिलेगी, ऊर्जा की बचत, देश के संसाधनों की बचत। कार्यक्रम की प्रस्तुति है नूतन प्रसाद की और कार्यक्रम में आपके साथ हैं आज आपकी दो सखियां शिल्पी और लता।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को शिल्पी और
1: लता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और जैसा कि आज आपके साथ है हम दो सखिया, मैं लता
0: और मैं शिल्पी। बहनों, छोटा सा शब्द होता है घर। घर की बात हमने इसलिए की कि हम जानते हैं कि आप अपने परिवार के साथ, परिवार रूपी बगिया के साथ प्रसन्न होंगी। लेकिन छोटा सा जो शब्द होता है घर, लता, लेकिन हर महिलाओं की जान बसती है इसमें। उस घर में सुबह से लेकर रात होने तक वो सभी की जिम्मेदारियां उठाती हैं और वो भी बड़े ही प्यार से, यानी कि हंसते हंसते।
1: हाँ शिल्पी, ये तो तुमने सही कहा। इसलिए तो महिलाओं को परिवार की धुरी कहा गया है। परिवार में बच्चों, बुजुर्गों और यहाँ तक की सामाजिक व्यवस्था को भी महिलाएं ही देखती हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ रिश्तों की बड़ी अहमियत होती है लता। हम एक एक सदस्यों को परिवार की कड़ी में जोड़ते जाते हैं, जैसे कि रंग बिरंगे फूलों से सजा गुलदस्ता हमारा होता है ना।
1: हाँ, और इसीलिए कहा जाता है कि घर ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि प्यार, त्याग और संस्कारों से बनता है। और इन सब की सबसे मजबूत नींव होती है, वो है महिलाएं।
0: बिल्कुल, कभी कभी बेटी बनकर घर में खुशियां लाती हैं, तो बहन बनकर भाई से लाड लगाती हैं, तो पत्नी बनकर जीवन को भी संवारती हैं, फिर माँ बनकर पूरे परिवार को अपने स्नेह के आंचल में बांध लेती हैं।
1: हाँ, देखा ना बहनों, कितने रूप है नारी के। इन सभी रिश्तों को निभाने के लिए बहुत त्याग भी करने पड़ते हैं ताकि परिवार एक सूत्र में बंधा रहे।
0: हमारे यहाँ आदिकाल से महिलाओं की भूमिका रही है कि बच्चों को पालन पोषण करना, उनमें संस्कार डालना और सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते भी निभाना।

0: जैसे कि शादी ब्याह हो या कोई भी मांगलिक कार्य, बिना हमारे कार्य तो संपन्न ही नहीं होता। तो लता, सच में कहीं ना कहीं हमारी इतनी बड़ी भागीदारी है भाई, जब हम बात करते हैं तो बहुत खुशी होती है ना?
1: हाँ, आज हमारे समाज में कामकाजी महिलाओं की कहीं कमी नहीं है। वे हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, चाहे शिक्षा हो या विज्ञान, खेल का मैदान हो या सेना, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी है और सफलता के साथ वह अपना परचम लहरा रही हैं।
0: लेकिन इन जिम्मेदारियों के बाद भी वे परिवार की भूमिकाओं और रिश्तों को बखूबी निभाती हैं बहनों।
1: हाँ, महिलाएं परिवार की धड़कन है, विश्वास है, प्रेरणा है। आज जरूरत है कि परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग की भावना हो, एक दूसरे के दुख तकलीफ चाहे कोई भी परेशानी हो सब मिलजुल कर बांटे तो समस्या चुटकी में खत्म हो जाएगी।
0: बिल्कुल हो जाएगी, इसलिए समय है महिलाओं के योगदान, उनकी तपस्या को सभी समझें, उनका सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। साथ ही बहनों, परिवार में बेटियों को खूब पढ़ाइए, उनकी भी रुचि को पूछिए कि वो क्या पढ़ना चाहती हैं और आगे क्या बनना चाहती हैं।
1: हाँ, क्योंकि जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी परिवार मजबूत होगा और आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी।
0: बहुत सही लता, तो आइए अब जैसे परिवार समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी की बात हमने की कि हमारी हमारे कंधों पे है, महिलाओं की जिम्मेदारी है, तो वैसे ही हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि कार्यक्रम में बहनों को एक खूबसूरत सा हम गीत सुनवाते हैं।
1: हाँ हाँ,

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: तो मैंने एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां हमें लेकर जाएंगी शिल्पी।
7: हाँ बहनों, और बहनों जानती हैं कि हमेशा हर दिन हम बहनों को भेंटवार्ता सुनाते हैं, तो भेंटवार्ता में आज क्या है ये बताएंगी आपको हमारी रेडियो सखी लता।
6: हाँ बिल्कुल शिल्पी, बहनों कम उम्र में सौंदर्य प्रसाधनों का बढ़ता इस्तेमाल, कितना सही कितना गलत, इसी विषय पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भेंटवार्ता। और आज की हमारी खास मेहमान है डॉक्टर रजनी, जो एक त्वचा रोग विशेषज्ञ है, सदर अस्पताल में अपनी सेवा दे रही है और इनसे कर रहे हैं हमारी रेडियो सखी शिल्पी।
8: बचपन यानी खिलखिलाहट, मासूमियत और सपनों की दुनिया, लेकिन आज का बचपन धीरे धीरे बदलता दिखाई दे रहा है। जहां कभी बच्चे मिट्टी के से खेलकर खुश हो जाते थे, वहीं आज के बच्चे आईने के सामने खुद को परफेक्ट दिखाने की चिंता में लगे रहते हैं। छोटी ही उम्र में मेकअप किट, ब्यूटी क्रीम, नेल पॉलिश, हेयर स्टाइल और सोशल मीडिया की चमक बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सजना सवरना गलत नहीं है, लेकिन जब कम उम्र में ही सौंदर्य प्रसाधनों के प्रति जरूरत से ज्यादा लगाव बढ़ने लगे, तब यह केवल शौक नहीं बल्कि चिंता का विषय बन जाता है। त्वचा नाजुक रसायनों पर असर, आत्मविश्वास की कमी, दूसरों जैसे देखने की होड़ और बाहरी सुंदरता को ही सच मान लेना, ये सब बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर गहरा असर डाल रहा है। तो आइए आज इसी संदर्भ में बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं एक खास मेहमान। आप हैं डॉक्टर रजनी, त्वचा विशेषज्ञ, सदर अस्पताल रांची में कार्यरत हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। नमस्कार
9: जी। नमस्कार
8: मैम। सबसे पहला सवाल है और ये जानना चाहूंगी कि आजकल छोटी किशोरियां बच्चियां भी मेकअप करने लगी हैं, इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है उनकी त्वचा पर, ये बताएं।
9: आजकल बच्चे जो है वो दूसरों को देखकर उनके जैसा दिखने का ये रहता है उन लोगों में कि मैं दूसरे से सुंदर दिखूं या मैं परफेक्ट दिखूं, इसकी वजह से वो तरह तरह के क्रीम्स लगाते हैं अपने चेहरे पे, जिसकी वजह से उनके जो स्किन का जो फेस का रोम छिद्र होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है, उसके कारण उन्हें कभी कभी चेहरे पे जलन भी होने

0: लग जाती है, खुजली होने लगता है, चेहरा सूज जाता है और कभी कभी तो पानी। इसीलिए बच्चों को ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए।
1: जी मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैम, स्वस्थ त्वचा के लिए खान पान और पानी का कितना महत्व है, इसके बारे में जानना चाहूंगी।
0: देखिए, हमारा शरीर जो है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा खाना और पानी, दोनों का ही महत्व है। सबसे
1: जी
0: पहली बात तो ये है कि अगर हम पानी अच्छे से नहीं लेते हैं तो हमारी त्वचा जो है वो सूखी दिखती है, डिहाइड्रेटेड दिखती है, लगता है उसमें कोई चमक नहीं है। आप अगर बीमार होते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन भी मुरझाई हुई दिखती है।
1: बिल्कुल
0: इसीलिए अगर अच्छे से तीनों समय का खाना नहीं लेते हैं, टाइमली अगर आप मील प्रॉपर नहीं लेते हैं, आप पानी का सेवन सही से नहीं करते हैं, तो आपकी स्किन का मतलब बीमार दिखना या उसका ग्लो चला जाना, या आप कितना भी उसमें मेकअप डाल लेंगे तो उसमें वो चमक नहीं आती है जो एक प्रॉपर खाना पीना और सही स्वस्थ रहने पे आती है। इसलिए अगर आप देखेंगे जो बीमार लोग होते हैं उन लोगों का स्किन ऐसे भी खराब दिखता है, वो लोग तरह तरह के स्किन के बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। किसी भी बीमारी से अगर वो परेशान है तो उसमें स्किन का कुछ ना कुछ दिखता ही है आपको कि उनको स्किन में परेशानी शुरू हो गई है।
1: बिल्कुल
0: इसलिए
1: मैम
0: जरूरी है कि आप अपने खान पान पे जरूर से जरूर ध्यान दें और पानी का अत्यधिक सेवन करें, खास करके गर्मी के सीजन में।
1: बिल्कुल मैम मैम त्वचा पर एलर्जी, पिंपल्स का होना आम बात है, ऐसी में आम समस्या इन दिनों देखी जाती है, तो आखिर ये होता क्यों है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, हमारी स्किन जो है ना तरह तरह की होती है। किन्हीं का स्किन ऑयली होता है, किन्हीं का ड्राई, और किन्हीं का नॉर्मल स्किन होता है जो कि मिक्स स्किन कहा जाता है।
1: जी
0: तो अगर किन्हीं का स्किन ऑयली है, जिनमें मतलब तेल, जो तेल की ग्रंथि है उससे तेल अगर अत्यधिक मात्रा में निकल रही हो, तो वहां पे कीटाणु के पनपने की समस्या ज्यादा हो सकती है।
1: जी
0: ऐसे लोग क्या करते हैं कि गलती से तेल युक्त क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं, ऑयली फेस वॉश का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी स्किन और ज्यादा ऑयली हो जाती है, वहां पे कीटाणु पनपने लग जाते हैं और उन्हें जो है वहां पे दाने आने लग जाते हैं, चेहरा लाल हो जाता है और चेहरे पे खुजली होने लग जाती है, जलन होने लग जाता है। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी स्किन किस प्रकार की है। आप जिस तरह की आपकी स्किन है उसी प्रकार के क्रीम्स और उसी तरह के फेस वॉश अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन लोग गलती से यही करते हैं कि वो बिना जाने समझे किसी भी तरह का फेस वॉश मार्केट में उपलब्ध सारी चीजों को यूज करना शुरू कर देते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात मैम आपने कही। मैम, इन दिनों कम उम्र में जो बच्चियां होती हैं वो अक्सर हम देखते हैं कि हेयर कलर करा लेती हैं,
0: जी
1: स्किन वाइटनिंग क्रीम का उपयोग करती हैं, तो ये
0: जी
1: कितना सही है, क्योंकि इन दिनों जो आप हम जैसा कि हमने कहा कि प्रायः ऐसे युवाओं का ही फैशन हो गया है, तो क्या ये सही है आपकी नज़र में।
0: नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि देखिए आपकी एक तो उम्र कम है, दूसरा आप फैशन के चक्कर में आप अपने बालों को कलर करने लग जाते हैं, आप अपने तरह फेस पे तरह तरह के क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो भी बाल को कलर करने के लिए जो कलर्स यूज किए जाते हैं उसमें ब्लीचिंग एजेंट होता है,
1: जी
0: तो वो क्या करता है आपके जो स्किन का नेचुरल, ये जो सॉरी आपके बाल का जो नेचुरल कलर है वो उसको ब्लीच कर देता है, तो आपके बाल के सफेद होने की संभावना बहुत कम उम्र में बढ़ जाती है। दूसरा चीज है, स्किन पे तरह तरह के वाइटनिंग क्रीम जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं आपके स्किन को बहुत तरह से हार्म पहुंचाते हैं, वो स्किन में एलर्जी करा सकते हैं। आप जब उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें स्टीरॉयड भी होता है बहुत सारी क्रीम्स में, जो जब आप छोड़ना चाहेंगे तो वो आपको वो छोड़ने नहीं देगा, उससे क्या होगा उसमें आपको खुजली होने लगेगी, आपकी त्वचा पतली हो जाएगी, आपकी त्वचा पे पतली पतली धारियां नसें दिखने लग जाएंगी, आपको जरा भी आप धूप में जाएंगे तो आपकी त्वचा लाल हो जाएगी, आपको खुजली महसूस होने लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए दिखावे में आकर कभी भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपकी स्किन, आपके बाल खराब हो जाए।
1: जी मैम, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि
0: जी
1: माता पिता अपने बच्चों को सौंदर्य प्रसाधनों के सही उपयोग के लिए कैसे उन्हें जागरूक करें।
0: देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये सारे क्रीम जो हम बड़े लोग यूज करते हैं वो बच्चों को ना दें,
1: जी
0: उनके रीच से दूर रखें, उन्हें ये चीजें ना, इसके लिए प्रेरित कभी नहीं करना चाहिए कि तुम्हें ये लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए, कभी नहीं। बच्चों के लिए अलग से क्रीम्स अवेलेबल हैं, बच्चों के लिए अलग से बॉडी के लिए मॉइस्चराइजर्स आते हैं, बाल में यूज करने के लिए शैम्पू भी हमारे लिए आपको मार्केट में मिलते हैं, तो तो आप वो इस्तेमाल कीजिए जो कम्प्लीटली हर्बल हो या जिससे आपके स्किन को आपके बाल को डैमेज ना पहुंचे। बच्चों को कभी भी इन चीजों के लिए कभी भी हमें इंकरेज नहीं करना चाहिए, हमेशा उनको ये समझाना चाहिए कि देखो बेटा ये तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब चीजों को करने के लिए, इससे तुम्हारी त्वचा पे ये नुकसान हो सकता है। जब वो

0: जानेंगे कि उनकी त्वचा को या फिर उनके बाल उससे खराब हो सकते हैं, तो खुद ही वो डर के मारे उन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए हमें उन्हें जागरूक कराना होगा कि तरह तरह के जो मार्केट में क्रीम्स हैं उनको देख के उससे आकर्षित ना हो, ये समझे कि उनके स्किन को क्या सूट करेगा और क्या नहीं सूट करेगा, उसी प्रकार से वो चीजें यूज करें।
1: जी मैम, बहुत अच्छी आपने बात कही। और वैसे भी बच्चों के जीवन पर माता पिता जो होते हैं उनका बहुत
0: जी
1: गहरा असर होता है। तो भाई, अगर सही समय पे अगर माँ उन्हें सिखाएंगी तो उम्मीद है कि बच्चे जरूर इस बात पे सोचेंगे। मैम,
0: जी
1: यदि किसी बच्चे को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाए तो सबसे
0: जी
1: पहले यानी कि तुरंत क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो उन लोगों को अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अगर घर में हैं और अगर आप तुरंत से चिकित्सक के पास नहीं जा सकते तो आपको अपने फेस को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। कोई अच्छा अगर माइल्ड कोई सोप या फेस वॉश है तो उससे आप अपने चेहरे को साफ कर लें। उसके बाद जो कोई भी क्रीम, जो एंटीसेप्टिक क्रीम आपके घर में उपलब्ध है, उसको तुरंत से उस बच्चे के चेहरे पर लगाए ताकि उसे जलन महसूस ना हो, और तुरंत से अपने चिकित्सक के पास ले जाए और उनसे परामर्श लेके और उसका उचित उपचार कराए।
1: जी बहुत खूब। मैम, सभी श्रोता सखियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जिनके बच्चे अभी बढ़ती उम्र की ओर हैं? अभिभावक क्या करें और कॉस्मेटिक्स का सही उपयोग करने का मैम उम्र क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आप बताएं।
0: देखिए, मैं अपनी सही सभी सखियों को ये बताना चाहूंगी कि आपके बच्चे जो भी अभी किशोरावस्था में हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं, उनको हमेशा सही जानकारी देनी चाहिए कि उनकी त्वचा के लिए क्या सही है क्या नहीं है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए, कौन से क्रीम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानकारी तो उन्हें अवश्य दें। साथ साथ उन्हें ये भी बताना चाहिए कि 15-16 साल से कम के उम्र में कभी भी कोई भी मार्केट में जो तरह तरह के क्रीम्स आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता रहता है जिसका, उसके प्रति आकर्षित ना हो। आप अपने चिकित्सक से पूछें, उनसे सलाह लें और तभी किसी क्रीम का या किसी फेस वॉश का यूज करें। तो सखियो, सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं, आपको भी ये जानना जरूरी है कि आपकी भी त्वचा उतना ही केयर मांगती है जितना आपके बच्चे। इसलिए आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छा खान पान ले, पौष्टिक तत्व ले, खास करके पानी अच्छा से पिए, क्योंकि गर्मी का सीजन है तो पानी की कमी किसी को भी हो सकती है। इसलिए अच्छा अगर खाएंगे अच्छा पिएंगे तो इससे क्या होगा, आपके चेहरी अब चेहरा अपने आप से चमकेगा, आपका बाल, आपकी नाखून सब कुछ अच्छे रहेंगे। इसलिए अपने बच्चों का भी ध्यान दें और खुद का भी ध्यान रखें।
1: जी बहुत अच्छी मैम, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बड़े ही अच्छे और सरल शब्दों में जानकारी दी हमारे सखियों को। सच, अब जरूरत है कि बच्चों को यह समझाया जाए कि असली सुंदरता चेहरे से नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, खान पान, आत्मविश्वास और अच्छे विचारों से होती है। मैम,
0: जी
1: आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे कार्यक्रम को दिया और सखियों से आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
0: जी धन्यवाद।
2: तो बहनों, अभी आपने सुना कम उम्र में सौंदर्य प्रसाधनों का बढ़ता इस्तेमाल कितना सही कितना गलत। और आज के इस विषय के लिए आज मौजूद थी हमारी आज की खास मेहमान डॉक्टर रजनी, जो त्वचा रोग विशेषज्ञ थी और सदर अस्पताल में लंबे समय से अपना योगदान दे रही हैं, और इनसे बातें की थी हमारी रेडियो सखी शिल्पी ने। तो शिल्पी, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसे बहनों को इंतजार रहता है हर जानकारी के बाद खूबसूरत सा गीत का, तो चलो बहनों के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: तो मैं ना आशा करती हूँ कि ये गीत आपके दिल को बिल्कुल छू गया होगा, क्यों शिल्पी?
1: बिल्कुल।
0: और अब कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बहनों, हर दिन जैसा हम आपके लिए लेकर आते हैं जानकारियों का खजाना, तो आज हम बात करेंगे ऊर्जा की बचत, देश के संसाधनों की बचत। क्यों?
1: जी हाँ बहनों, बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल और गैस ये केवल सुविधाएं नहीं बल्कि ये देश की अनमोल संपत्ति भी है। पर बढ़ती जनसंख्या और आधुनिक जीवन शैली के कारण ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ती जा रही है।
0: हाँ, और जरूरत से ज्यादा बिजली जलाना बेहद, पानी का जो उपयोग हम कम करें ये हमें ख्याल रखना चाहिए, बर्बादी करना या बिना जरूरत वाहन चलाना, छोटी छोटी लापरवाहियां धीरे धीरे जो देश के संसाधनों

0: पर एक भारी बोझ बनती जा रही है।
1: हाँ लता, और जब हम एक बेकार जलता हुआ बल्ब को बंद करते हैं तो केवल बिजली की हम बचत नहीं करते हैं बल्कि देश के ऊर्जा संसाधनों को भी हम सुरक्षित करते हैं। जब हम पानी की एक एक बूंद बचाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जीवन भी बचाते हैं।
0: और ऊर्जा की बचत केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बहनों, बल्कि हर एक नागरिक का कर्तव्य भी है। यदि हम एक एलईडी बल्बों का प्रयोग कर ले, अनावश्यक बिजली उपकरण बंद कर रखे, सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझ कर उपयोग करें, तो हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे।
1: बहुत अच्छी बात। इसलिए बहनों याद रखिए कि ऊर्जा बचाएंगे तो भविष्य को हम संवारेंगे।
0: हाँ, और जैसा कि शिल्पी ने कहा कि भविष्य के लिए हम सबको अभी से ही खड़े रहना होगा।
1: बिल्कुल लता, और अब धीरे धीरे कार्यक्रम हमारे जो है वो हम इस पड़ाव पे आ गए हैं कि बहनों से हमको विदा लेनी होगी।
0: हाँ, लेकिन बहनों को बता दे चलते चलते यह कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी। तो बहनों अब लता और
1: शिल्पी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे शिल्पी और लता के साथ महिलाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। और श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम भारत भारती का, जिसमें आज आप सुनेंगे मगही भाषा में लोकगीत। कलाकार हैं जनार्दन प्रसाद सिन्हा और साथी

जनार्दन प्रसाद सिन्हा और साथियों के गाए इस मगही लोकगीत के साथ ही आज का भारत भारती कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग, जिसमें आज आप सुनेंगे खड़िया भाषा में लोकगीत, कलाकार हैं आशावंती एक्का और साथी।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आखिरी समाचार के साथ मैं कनक लता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio today held wide-ranging discussions in New Delhi, reaffirming the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlining key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Briefing the media after the meeting at Hyderabad House, Dr. Jaishankar said the talks over lunch focused on the latest developments in the Gulf region, while the Indo-Pacific remains an important priority ahead of the Quad meeting. The External Affairs Minister stressed the importance of concluding a trade agreement between India and the United States at the earliest. He welcomed the recent expansion in energy trade and said diversified energy supplies are central to India's energy security.
2: In terms of the political understanding between India and the United States, we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. And in our meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia.
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio described India as one of the United States' most important strategic partners.
3: A strategic partnership is something very different. It's something much broader than that. And you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world.
1: He said both countries have suffered due to terrorism and added that India and the US are strategically aligned on key issues that will shape the coming century. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has secured a massive lead in the 11th round of counting for the Faulta Assembly repoll. Counting is underway at Diamond Harbour Women's University. Debangshu Panda of the BJP was leading by 44,891 votes when reports last came in. Shambhunath Kurmi of the Communist Party of India Marxists was running in second position. Abdul Razak Molla of the Indian National Congress in third, and Jahangir Khan of All India.

0: and a total of 21 rounds for the Phol Tha constituency. The government has advised all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan until further notice in view of the evolving Ebola outbreak situation. It also directed Indian citizens currently residing in or travelling to these countries to strictly follow public health guidance issued by local authorities and maintain heightened precautions. Ministry of Health and Family Welfare informed that India has not reported any case of Ebola disease. At least 24 people were killed and several injured after a powerful explosion ripped through a railway line in Pakistan's Balochistan province today. The explosion occurred near the Chaman Fatak railway station in capital city Quetta. A train suffered a partial damage in the blast, while 10 vehicles parked in the area were also damaged. Following the incident, an emergency was declared in government hospitals across Quetta. Chinese Ambassador to India Xu Feihong today expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for sending a condolence message following the mining incident in Shanxi province of China. The incident has so far claimed 82 lives, while 9 people are still missing. The Department of Consumer Affairs has expanded the role of government-approved test centres, or GATCs, to strengthen the system for checking weights and measures in the country. For this, the government has amended the Legal Metrology Rules 2013. The sixth day 79 World Health Assembly concluded in Geneva yesterday, during which member states adopted multiple resolutions to advance multilateral cooperation in safeguarding human health. The Assembly adopted more than 20 decisions and 13 resolutions on issues including stroke, tuberculosis, antimicrobial resistance, emergency care, haemophilia, precision medicine and radiation. In IPL cricket, the Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals in Mumbai at 3:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG परीक्षा शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू की। अभ्यर्थियों से पंजीकरण पोर्टल पर 27 मई तक मांगा बैंक डिटेल्स। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड स्वरूप करने को बताया अनुचित। देवघर जिले के 2 शिक्षकों का तबादला, आदेश किया रद्द। स्वास्थ्य विभाग विशेष तंबाकू नियंत्रण और जन जागरूकता अभियान करेगा शुरू। स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से किया जाएगा लागू। और झारखंड में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी। रांची समेत कई जिलों में आज हीट वेव चलने का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने या एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। इबोला वायरस के फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इस रोग का कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। नीट UG 2026 की परीक्षा रद्द होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आवेदन शुल्क वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी नीट UG 2026 के रजिस्ट्रेशन पोर्टल बैंक डिटेल्स भर सकते हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि एक बार बैंक डिटेल्स जमा होने के बाद किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। बैंक डिटेल्स जमा करने की सुविधा 27 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर 27 मई से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक को लेकर पेश है रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास कार्यों को गति देने के लिए कल से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। अलग अलग दिनों में होने वाली बैठकों के लिए अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र जारी किया है।

0: माना जा रहा है कि बैठकों के जरिए सरकार सभी विभागों की जवाबदेही तय करेगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। पहले दिन जल संसाधन और पेयजल विभाग के साथ वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड के तौर पर नहीं किया जा सकता है। कल एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने देवघर जिले के दो शिक्षकों के तबादले के आदेश को निरस्त करते हुए मूल पदस्थापन पर बहाल रहने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि विभाग को शिक्षकों के खिलाफ कोई शिकायत है तो उन पर अलग से कार्रवाई की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग पूरे राज्य में विशेष तंबाकू नियंत्रण और जन जागरूकता अभियान चलाएगा। यह अभियान विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई से लेकर 26 जून तक चलेगा। हमारे रांची संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है।
2: स्वास्थ्य विभाग की ओर से झारखंड के सभी जिलों में लगभग एक माह तक चलाया जाने वाला विशेष तंबाकू नियंत्रण और जन जागरूकता अभियान विशेष होगा। इसके तहत स्कूलों और कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा और तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड भी लगाया जाएगा। रेलवे स्टेशन, न्यायालय और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू निषेध संबंधी सूचना पट लगाए जाएंगे। कोटपा 2003 और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध कानून के तहत जिलों में विशेष छापामारी अभियान भी चलाया जाएगा। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रांची के 36 केंद्रों पर आज यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा शाम 7 बजे से 30 मिनट तक प्रभावी रहेगी। सभी केंद्रों में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश की बेटियां सशक्त और आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र का भविष्य बन रही हैं। उन्होंने शनिवार को लोहरदगा के प्राचीन गुरुकुल शांति आश्रम में आयोजित 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आर्य वीरांगना शिविर के समापन समारोह में यह बातें कही।
3: स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देश के बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पाए तो स्कूल उनके दरवाजे पे आए। आज एकल विद्यालय के रूप में देश में लाखों लाख एकल विद्यालय उनके गांव के झोपड़पट्टी के सामने एकल स्कूल चल रहा है।
1: मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली में 28 जून से 7 जुलाई तक आयोजित प्रशिक्षण शिविर में लोहरदगा की 80 बेटियां भाग लेगी। इन बेटियों को संसद भी दिखाया जाएगा। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में 49वें एकल ऑन व्हील्स के प्रथम बैच का कल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों और सेवा बस्तियों के बच्चों और महिलाओं तक डिजिटल शिक्षा पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अत्याधुनिक बस के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर 3 माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने CSR के तहत आरोग्य मित्रा प्रोजेक्ट के माध्यम से धनबाद सदर अस्पताल को हेल्थ ATM और पोर्टेबल ECG मशीन उपलब्ध कराई है। आरोग्य मित्रा प्रोजेक्ट सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर अमित चौधरी ने बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों तक त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना है।
4: इस मशीन का उद्देश्य बेसिकली 45 प्लस पैरामीटर्स का इंस्टेंट डायग्नोसिस होता है। इसमें जैसे कि अपने बेसिक प्राइमरी लेवल का हेल्थ चेकअप है, हाइट, वेट, BMI पैरामीटर्स, ब्लड शुगर हो गया, हीमोग्लोबिन है, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, ये सारे टेस्ट इसके थ्रू हो जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा इस मशीन का ये है कि तुरंत ही इसके द्वारा रिपोर्ट निकल जाती है।
1: गिरिडीह सेंट्रल जेल में कल देर रात उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के कुमार के नेतृत्व में दो दर्जन से अधिक अधिकारियों ने छापामारी की। छापेमारी में पुलिस को कोई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है या नहीं, इसकी सूचना अब तक नहीं दी गई है। गिरिडीह जेल में बड़े नक्सली और अपराधी बंद है। ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने रामगढ़ जिले में हर घर सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न प्रखंडों में सामाजिक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। बैंक सखियों और सामुदायिक कैडरों ने केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने आज राजधानी रांची में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार आज से अगले दो दिनों तक राजधानी रांची के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG परीक्षा शुल्क वापसी की प्रक्रिया शुरू की। अभ्यर्थियों से पंजीकरण पोर्टल पर 27 मई तक मांगा बैंक डिटेल्स। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड स्वरूप करने को बताया अनुचित। देवघर जिले के 2 शिक्षकों का तबादला आदेश किया रद्द। स्वास्थ्य विभाग विशेष तंबाकू नियंत्रण और जन जागरूकता अभियान करेगा शुरू। स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध की सख्ती से किया जाएगा लागू। और झारखंड में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी। रांची समेत कई जिलों में आज हीट वेव चलने का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। हमारी आज की कलाकारा हैं श्रीमती अनीता सेन, जिनसे हम सबसे पहले सुनेंगे टप्पा। और संगत कलाकार हैं सारंगी पे लियाकत अली खां, बांसुरी पे हैं रोनू मजुमदार, तानपुरे पे साथ दे रही हैं अन्ना जोशी और त्रिंगोन जोशी, और तबले पर साथ दे रहे हैं ओमकार गुलवाड़ी।

श्रीमती अनीता सेन के गाय मिश्र खमाज के साथ ही आज का उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी अब यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। हमारे आज के कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह। आइए सबसे पहले उनसे सुनते हैं ये गजल।

के गाइस गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: In a social media post, Mr. Modi said that the article portrays Kanchenjunga as a protector of the land, memory and consciousness of Sikkim. Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Rajiv Ranjan Singh, will chair the regional review meeting for the Northeast region tomorrow in Aizawl, Mizoram. The meeting will primarily focus on reviewing the progress of various schemes and programs being implemented in the fisheries, animal husbandry and dairying sectors across the Northeastern region. Discussions will also be held on future strategies for sustainable sectoral growth, farmers' welfare and livelihood enhancement. In Pakistan, 24 people were killed and several injured after a powerful explosion ripped through a railway line in Balochistan province today. The explosion occurred near the Chaman Fatak railway station in capital city Quetta. A train suffered partial damage in the blast, while 10 vehicles parked in the area were also damaged. Following the incident, an emergency was declared in government hospitals across Quetta, where doctors and medical staff summoned to handle the situation. Railway authorities said the Peshawar-bound Zafar Express was stopped at Quetta railway station after the blast as a precautionary measure. Babar Yusufzai, the spokesperson to the Home Minister, said that all relevant institutions have been placed on high alert following an explosion in the city. U.S. President Donald Trump has thanked law enforcement authorities and secret service agents for the swift action after a shooting near the White House. In a post on Truth Social, he said the suspect had a violent history and noted the incident occurred shortly after another recent security-related shooting in Washington. The Secret Service said a man opened fire near a White House security checkpoint at the 17th Street and Pennsylvania Avenue, following which officers returned fire. The suspect was hit, taken to hospital and later died. A bystander was also injured, though it is not yet clear whether the person was struck by the suspect's bullets or by gunfire from officers. The suspect has been identified as a 21-year-old man. President Trump was inside the White House at the time of the incident, and this is the third such shooting-related incident reported near the president in recent weeks. The 125th edition of the French Open, commonly known as the Roland Garros, begins today in Paris. Novak Djokovic will launch his bid for a record-extending 25th Grand Slam title. The three-time champion seeded third opens against French big server Giovanni Mpetsi Pericard. Night session on court Philippe Chatrier, second seed and 2024 finalist Alexander Zverev, and seventh seed Taylor Fritz are also among the key men's singles players in action on the opening day. World number one Yannick Sinner will aim for his maiden French Open crown after finishing runner-up to Carlos Alcaraz last year. He will be in action tomorrow. In the women's draw, Coco Gauff will head into the French Open as a defending champion. Meanwhile, world number one Aryna Sabalenka will be aiming to win a first-ever French Open title, having come up second best to Coco Gauff in the final last year. India will also have representation in the men's doubles, with top-ranked Indian player Yuki Bhamri partnering New Zealand's Michael Venus, while N. Sriram Balaji teams up with Brazil's Marcelo de Molina. In IPL cricket, the Super Sunday double header will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals at the Wankhede Stadium in Mumbai at 3:30 p.m. For Rajasthan Royals, it is a must-win game in the pursuit of a playoff berth. For Mumbai Indians, it was one of the most disappointing seasons in the franchise, as they've already been eliminated from IPL 2026. In another clash of the day, Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Last night, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. Prav Simran Singh made 69 runs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Debangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Faulta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
3: These would be the principles with which we would approach that region.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
4: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक

खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्सियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो

0: में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांवरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती।

जय भारती कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कसूर से। इस गीत को गाए हैं अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म खुद गर्ल से। इस गीत को गाया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर और फारूक कैसर ने। धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

आनंद बख्शी की शब्द रचना, राजेश रोशन का संगीत, उदित नारायण सुखविंदर सिंह की आवाजें, फिल्म का नाम न तुम जानो न हम।

जय भारती कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म नौजवान से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई है एस टी बर्मन ने।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही जय भारती कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। माफ कीजिएगा, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। रांची के 36 केंद्रों पर आज यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ये निषेधाज्ञा शाम 7:30 तक प्रभावी रहेगी। सभी केंद्रों में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर 25 मई से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक को लेकर पेश है रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास कार्यों को गति देने के लिए कल से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। अलग अलग दिनों में होने वाली बैठकों के लिए अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र जारी किया है। माना जा रहा है कि बैठकों के जरिए सरकार सभी विभागों की जवाबदेही तय करेगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। पहले दिन जल संसाधन और पेयजल विभाग के साथ वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिमेश रंजन ने आज उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गुमला के पद पर योगदान किया। उन्होंने जिले के संपूर्ण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने उपायुक्त दिलेश्वर महतो से भी मुलाकात की। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की टीम भावना एवं समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिले के विकास को नई गति प्रदान की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण दंड के तौर पर नहीं किया जा सकता। कल एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने देवघर जिले के 2 शिक्षकों के तबादले के आदेश को निरस्त करते हुए मूल पद स्थापन पर बहाल रहने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि विभाग को शिक्षकों के खिलाफ कोई शिकायत है तो उन पर अलग से कार्रवाई की जा सकती है। आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रादेशिक समाचार। ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने रामगढ़ जिले में हर घर सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न प्रखंडों में सामाजिक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। बैंक सखियों और सामुदायिक कैडरों ने केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि देश की बेटियां सशक्त और आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र का भविष्य बन रही हैं। उन्होंने शनिवार को लोहरदगा के प्राचीन गुरुकुल शांति आश्रम में आयोजित 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आर्य वीरांगना शिविर के समापन समारोह में ये बातें कहीं। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने CSR के तहत आरोग्य मित्रा प्रोजेक्ट के माध्यम से धनबाद सदर अस्पताल को हेल्थ ATM और पोर्टेबल ECG मशीन उपलब्ध कराई है। आरोग्य मित्रा प्रोजेक्ट सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर अमित चौधरी ने बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों तक त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाना है। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के कर्माटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है।
2: लगातार अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में नारायणपुर और कर्माटांड जिले में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास जो बरामदगी हुई है वो कुल 15 मोबाइल है, 14 सिम कार्ड है, 4 ATM कार्ड है, 2 लैपटॉप है और लगभग 50,000 रुपए नगद राशि बरामद की गई है जो इनके द्वारा लोगों से ठगी करके अपने पास रखा गया।
0: धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर जंगली हाथियों के झुंड से ग्रामीण परेशान हैं। करीब 35 हाथियों का झुंड पिछली रात जाताखुटी पंचायत के दालूगोड़ा गांव में घुसाया। हाथियों ने स्कूल को क्षतिग्रस्त किया और वहां रखे मध्याह्न भोजन का अनाज खा गए। सूचना मिलने पर मशालची पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को गाँव से बाहर निकाला गया। गिरिडीह सेंट्रल जेल में कल देर रात उपायुक्त राम निवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में दो दर्जन से अधिक अधिकारियों ने छापामारी की। छापेमारी में पुलिस को कोई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है या नहीं, इसकी सूचना अब तक नहीं दी गई है। गिरिडीह जेल में बड़े नक्सली और अपराधी बंद हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत हम सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

लड़के ढाल से बवाल से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना, भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: और श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म दरिया दिल का ये गीत। इस गीत को लिखा है इंदिवर और विट्ठल भाई पटेल ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने, इस गीत को गाया है नितिन मुकेश और विट्ठल भाई पटेल ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पॉडकास्ट सीरीज पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुनीता। आप सभी को

मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज, फिल्म का नाम अकेली मत जइयो।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म चित्रलेखा से। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई है रोशन ने और गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म गजल से। इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने, वो लिखे साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

सरस्वती चंद्र इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे इंदिवर ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही राजी मेलोडीज कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम से सुनीता आपसे लेती है विदा। नमस्कार, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। गिरिडीह जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए SP डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आज जागरूकता रैली निकाली। SP ने बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए लोगों को गुलाब फूल देकर हेलमेट पहनने का आग्रह किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिमेश रंजन ने आज उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गुमला के पद पर योगदान किया। उन्होंने जिले के संपूर्ण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। गोड्डा में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कॉमनवेल्थ डे के 75वें संस्करण और कॉमनवेल्थ गेम्स थीम पर +2 उच्च विद्यालय से शहीद स्तंभ तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में हॉकी खिलाड़ी और खेल प्रेमी शामिल हुए। रांची के 36 केंद्रों पर आज UPSC की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ये निषेधाज्ञा शाम 7:30 तक प्रभावी रहेगी। सभी केंद्रों में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के कर्माटांड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड क्षेत्र में एक बार फिर जंगली हाथियों के झुंड से ग्रामीण परेशान हैं। करीब 35 हाथियों का झुंड पिछली रात जाताखुटी पंचायत के दालूगोड़ा गाँव में घुस आया। हाथियों ने स्कूल को क्षतिग्रस्त किया और वहां रखे मध्याह्न भोजन का अनाज खा गए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 प्रसारित किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल सभा, जिसमें चर्चा होगी एक पौधा लगाओ, पक्षी बचाओ, किताबें हमारे दोस्त, बाल गीत आप सुनेंगे, बच्चों के मुख से भी आप सुनेंगे, जानकारी मिलेगी स्वच्छ पृथ्वी, सुंदर भविष्य, धरती की रंग बिरंगी दुनिया का राज, जैव विविधता, बाल कथा भी आप इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे और प्रेरक व्यक्तित्व में स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की पे भी आपको जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम की प्रस्तुति है नूतन प्रसाद की, सूत्रधार होंगे अवधेश कुमार और रानी शुक्ल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और खूब मस्ती भी कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि आपकी गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई है, क्यों?
1: और बिल्कुल, और आजकल तो सुबह सुबह चिड़ियों की मीठी आवाज सुनकर मन कितना खुश हो जाता है ना। कभी गौरैया, कभी मैना, कभी तोता, तो कभी कोयल की आवाज। ऐसा लगता है जैसे पक्षी भी हमें सुप्रभात कह रहे हों।
0: बिल्कुल, और सच में इन नन्हे मेहमानों से हमारी दुनिया कितनी प्यारी लगती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन ये पक्षी ही ना रहे तो हमारी सुबह कैसी होगी, हमारी दुनिया कैसी लगेगी, ये सोच कर ही मन उदास हो गया ना।
1: हाँ, लेकिन बच्चों क्या आपने ध्यान दिया है, पहले जितनी चिड़िया दिखती थी अब उतनी ही कम दिखाई देती है। और क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है?
0: क्योंकि पेड़ कम हो रहे हैं, पेड़ों के कटने के कारण पक्षियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। बच्चों, पेड़ पौधे सिर्फ हमें छाया और ताजी हवा नहीं देते, बल्कि पक्षियों का घर भी होते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा दीदी। और वे पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, वहीं आराम करते हैं, और अगर पेड़ कम होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों कि पक्षियों के रहने में परेशानी होगी।
0: बिल्कुल, और ऐसा तो हम होने ही नहीं देंगे, है ना? और इसके लिए हम सब मिलकर उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे? बस एक छोटा सा पौधा लगाकर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात कही है आपने। बच्चों सोचिए, आज लगाया गया एक नन्हा सा पौधा कल किसी पक्षी का प्यारा सा घर बन जाएगा, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा भैया आपने। तो बच्चों, आप भी अपने घर, आंगन, स्कूल के आसपास की किसी खाली जगह में एक पौधा जरूर लगाइए। और हाँ, उसे रोज पानी देना ना भूले,
1: क्योंकि पौधा लगाना जितना जरूरी है बच्चों, उसकी देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। और बच्चों, अगर हम सब मिलकर एक एक पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें, तो हमारे आसपास हरियाली भी बढ़ेगी और पक्षी भी सुरक्षित रहेंगे।
0: हाँ बच्चों, पक्षी सिर्फ सुंदर ही नहीं लगते, बल्कि वे पर्यावरण को संतुलित रखने में भी मदद करते हैं। वे बीज फैलाते हैं जिससे हरियाली बढ़ती है, और कई हानिकारक कीड़ों को भी खाते हैं।
1: इसलिए बच्चों, आप सब मोबाइल और गेम्स से बाहर निकलकर थोड़ा समय प्रकृति को भी दें। कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उसमें पानी भी दें, उसकी देखभाल करें। और जब वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा ना बच्चों, तो उस पर चिड़ियां बैठेगी, तो आपको भी बहुत खुशी होगी, है ना? एक पौधा लगाइए और पक्षियों को बसाइए।
0: बिल्कुल, याद रखिए बच्चों, एक पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, किसी पक्षी का घर भी होता है। और हरा भरा वातावरण ही खुशहाल जीवन की पहचान है। इसलिए आप भी प्रकृति से मित्रता करें, दोस्त बनाएं, क्योंकि खुशहाल जीवन के लिए मित्रता भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। खुशहाल जीवन के लिए तो अच्छे दोस्त बहुत जरूरी होते हैं। जैसे पेड़ पौधे और पक्षी हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं, ठीक वैसे ही अच्छे दोस्त हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं।
0: हाँ, और आप जानते हैं बच्चों कि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमेशा हमारे पास रहते हैं। जब हम अकेले हों, उदास हों या कुछ नया जानना चाहे, तब वे चुपचाप हमारी मदद करते हैं।
1: बिल्कुल, और ऐसा कोई दोस्त जो हमें हंसाए भी, नई बातें सिखाए भी, और कभी बोर न होने दे, और जब मन करे तब हमारे साथ समय बिताए, तो ये कितना मजेदार होगा।
0: हाँ, और ऐसा दोस्त तो हर किसी को चाहिए, लेकिन ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं बच्चों? आप भी जरा सोचिए, ऐसे दोस्त तो आपके घर में, स्कूल में, लाइब्रेरी में, यहाँ तक कि आपके बस्ते में भी मिल जाते हैं।
1: बच्चों, क्या आप पहचान पाए कौन है ये दोस्त? ये खास दोस्त है। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये है किताबें। सच में बच्चों, किताबें सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती, ये तो हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है, क्योंकि ये बहुत ही खास होती है।
0: हाँ बिल्कुल, अगर आपको रोमांच पसंद है तो रोमांचक कहानियों की किताबें हैं, हंसना पसंद है तो मजेदार कॉमिक्स हैं, जानवर, अंतरिक्ष या विज्ञान में रुचि है तो ज्ञान बढ़ाने वाली किताबें भी हैं।
1: और हाँ, कविता और कहानियों की किताबें तो कल्पना की दुनिया में घुमा लाती हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, अकबर बीरबल की कहानी, तेनालीराम की मजेदार कहानियाँ, और बहुत सारे ढेर सारे कॉमिक्स। जानवरों की कहानियाँ भी हैं दीदी, खोज और विज्ञान की किताबें हैं, कितनी सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं बच्चों।
0: और सबसे अच्छी और मजेदार बात तो ये है बच्चों कि हर किताब हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, कभी अच्छाई, कभी समझदारी, कभी हिम्मत और कभी नई सोच।
1: वे हमें नई दुनिया में ले जाती हैं, कभी जंगल की सैर, कभी अंतरिक्ष की यात्रा, तो कभी बहादुर लोगों की प्रेरणादायक कहानियाँ। आप सबको भी तो ये किताबें बहुत पसंद होंगी बच्चों, क्योंकि ये मजेदार भी होती हैं और इनसे सीख भी मिलती है।
0: और बच्चों, किताबें कभी शिकायत भी नहीं करती, कभी नाराज भी नहीं होती। जब मन करे उन्हें खोलो और कुछ नया सीख लो। और इसी कारण कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी मित्र होती हैं।
1: अगर आप रोज थोड़ा समय किताबों के लिए निकालें तो आपको कितनी नई बातें सीखने को मिलेंगी।
0: हाँ, क्योंकि जिनके दोस्त किताबें होती है उनकी हर बात सबसे निराली होती है बच्चों।
1: इसलिए बच्चों, थोड़ा सा समय किताबों के साथ बिताइए और ये दोस्त आपको हंसाएंगे भी, नई बातें सिखाएंगे भी और आपके सपनों को और बड़ा बनाएंगी और आपको आत्मविश्वासी भी बनाएंगी। तो क्यों नहीं इसकी शुरुआत आज से ही की जाए। तो चलिए, जानकारी की बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन अब बच्चों का कुछ मनोरंजन भी करवाना चाहिए दीदी।
0: तो चलिए बच्चों, सुनते हैं ये बाल गीत।
2: सुन मेरे नन्नी, सुन मेरे मुन्नी, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
3: क्या माँ?

जादूगर ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।

0: देख के राजा को आते रानी फूली न समाई, राजमहल के द्वार पे झटपट दौड़ी दौड़ी आई। राजा आया बोला राजकुमार, अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार।
1: तो बच्चों कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? और अब दीदी अब बच्चों की बारी है।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ जो कुछ सुनाना चाहते हैं अपने दोस्तों को,
1: तो चलिए बच्चों से भी सुनते हैं।
3: नमस्कार, मेरा नाम शिवान शिखर है, मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इस दुनिया में सबसे न्यारी धरा हमारी, हमको है प्राणों से प्यारी धरा हमारी। सारे जग को अपने पन का यह देती संदेश, इसलिए तो मान ये गोष्ठ इसका सदा विशेष। पाते सब का आदर भारी धरा हमारी, जाति धर्म भाषाएं बोली अलग है अलग है भाई। इंद्रधनुष निखर रही है अपनी धरती माई, मेल जोल की है फुलवारी धरा हमारी। हंसते हंसते तन मन धन सब धरती माँ पर वारे, जिसने केवल देना सीखा उसका रूप संवारे। अतुलनीय अनुपम उपकारी धरा हमारी।
1: बाह बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता।
4: कोई कार कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है समय। सूरज सदा समय से आता और समय से जाता, चंदा सदा समय से आता और समय से जाता, तारे सदा समय से आते और समय से जाते, सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते है पाबंद समय की, पल भर देर नहीं करते, ठीक समय से सोते हैं ये ठीक समय से जगते। अगर समय की पाबंदी हम इनसे सीख कही जाए, तो फिर हम भी सूरज चार सितारे जैसे बन जाए। धन्यवाद।
1: आपका नाम क्या है, क्या सुनाएंगे?
5: नमस्कार, मेरा नाम श्रेया आद्य है, मैं क्लास 1B में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। यह धरती हम सबका घर है, इसकी चिंता किसे मगर है। बाग बगीचे उपवन कानन गिरी वन घाटी नदियाँ पावन, एक एक कर सभी उछाड़े, मौसम के सुरताल बिगाड़े। हालत अब बच्चे बदतर है, इसकी चिंता किसे मगर है। अन्न जल हवा सुहानी बन जाए न कथा पुरानी, रूक जाए अब यह नादानी, रहे धरा आंचल धानी। पर सहमी सी डगर डगर है, इसकी चिंता किसे मगर है। पर्वत सागर सभी सताए, जुल्म बहु

0: पेड़ों पर दाए ताल तलैया पाट दिए हैं, कितने उल्टे कृत किए हैं मन में, लेकिन जरा ना डर है, इसकी चिंता किसे मगर है।
1: इसकी चिंता मगर किसी है। क्या नाम है आपका?
2: शुभ प्रभात, मैं स्तुति आर्य शुक्ला आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पेड़ों का महत्व। पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को तुम पाल रहे हो। पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को तुम पाल रहे हो। इस जीवन को हे मानव तुम संकट में क्यों डाल रहे हो। इस जीवन को हे मानव तुम संकट में क्यों डाल रहे हो। जो पेड़ हमें जीवन देते तुम उन्हीं का जीवन लेते हो। जो पेड़ हमें जीवन देते तुम उन्हीं का जीवन लेते हो। पेड़ों को तुम काट काट संकट को बुलावा देते हो। पेड़ों को तुम काट काट संकट को बुलावा देते हो। यूं ही पेड़ों को काटोगे तो स्वच्छ पवन को तरसोगे। धरती बंजर बन जाएगी तुम अन्न नीर को तड़पोगे। धरती बंजर बन जाएगी तुम अन्न नीर को तड़पोगे। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से तुम कैसे फिर बच पाओगे। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से तुम कैसे फिर बच पाओगे। हर जगह प्रदूषण पाओगे, बीमारी से मर जाओगे। अब भी मौका है सुन मानव, पेड़ों को काटना बंद करो। सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण का संकल्प करो। सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण का संकल्प करो। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता।
3: वाह, बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई दीदी।
4: बच्चों कहते हैं अच्छी आदतें छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे पेड़ पौधे लगाने की आदत, पानी बचाने की आदत, या कूड़ा सही जगह डालने की आदत। और ये छोटी छोटी बातें हमारी धरती को कितना सुंदर बना सकती हैं, कभी सोचा है?
3: धरती केवल मिट्टी, पेड़ और नदियों का नाम नहीं है बच्चों, बल्कि ये हमारा घर है। एक ऐसा घर जो हमें शुद्ध हवा, मीठा पानी और जीवन का हर रंग देता है। लेकिन सोचिए, यदि यही धरती प्रदूषण, गंदगी और हमारी लापरवाही से अस्वच्छ हो जाए तो क्या होगा बच्चों? हमारा आने वाला कल कैसा होगा?
4: बच्चों पृथ्वी बोल तो नहीं सकती, लेकिन उसके बदलते मौसम, सूखती नदियाँ और कम होते पेड़ बहुत कुछ कह जाते हैं। प्रकृति हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, करती भी है, लेकिन हमारी लापरवाही सहन नहीं कर सकती।
3: हाँ बच्चों, अगर हम आज ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में साफ पानी, शुद्ध हवा, हरियाली, ये सब कम हो सकते हैं। हमारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है।
4: और धरती को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ बड़ों की नहीं, आप सब बच्चों की भी है। क्योंकि छोटे हाथ जब अच्छे काम करते हैं तो बड़ा बदलाव आता है बच्चों। और इसकी शुरुआत आप छोटे छोटे काम करके कर सकते हैं। जैसे
3: कूड़ा कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना, पानी की बर्बादी रोकना, प्लास्टिक का इस्तेमाल न करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनकी देखभाल भी करना।
4: बच्चों हम अक्सर सोचते हैं कि एक कागज या टॉफी का रैपर फेंक देने से क्या होगा, लेकिन ये छोटी छोटी लापरवाही ही बड़ी समस्या बनती है। और स्वच्छता केवल सफाई का नाम नहीं है बच्चों, बल्कि अच्छी सोच और जिम्मेदारी की पहचान है।
3: जब हम अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं तो हम बीमारियों को दूर रखते हैं बच्चों, और प्रकृति का सम्मान भी करते हैं। याद रखिए बच्चों, आज हम पृथ्वी का जैसा ध्यान रखेंगे, कल पृथ्वी वैसा ही हमें भविष्य देगी।
4: अगर हमें सुंदर भविष्य चाहिए तो पृथ्वी को स्वच्छ रखना होगा, क्योंकि स्वच्छ पृथ्वी ही सुंदर भविष्य की पहली सीढ़ी है।
3: और हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और भविष्य को सुंदर बना सकती है बच्चों।
4: बच्चों अभी हमने बातें की अपनी धरती को साफ और सुंदर रखने की, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी ये धरती सिर्फ साफ ही नहीं बल्कि बहुत रंग बिरंगी और जीवंत भी है।
3: हाँ बिल्कुल, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं उड़ते हुए पक्ष, रंग बिरंगी तितलियाँ, कहीं पानी में तैरती मछलियाँ और हम इंसान भी। ऐसा लगता है ना बच्चों, जैसे धरती एक खूबसूरत चित्र हो, रंग बिरंगी दुनिया हो।
4: और धरती की रंग बिरंगी दुनिया का राज है जैव विविधता। हाँ बच्चों, जैव विविधता यानी धरती पर पाए जाने वाले अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े मकौड़े और सूक्ष्म जीवों का संसार।
3: और हर जीव इस धरती पर इस दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है बच्चों। जरा सोचिए, अगर मधुमक्खी न हो तो फूलों का क्या होगा? अगर पेड़ न हो तो हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? और अगर पक्षी न हो तो सुबह में चहचहाहट किसकी सुनेंगे?
4: इसलिए तो कहा जाता है कि हर जीव प्रकृति की एक कड़ी

0: महत्व होता है।
1: और स्वच्छ पृथ्वी तभी सच में सुंदर बनेगी बच्चों, जब उसकी रंग बिरंगी दुनिया भी सुरक्षित रहेगी।
0: तो चलिए बच्चों, आप कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, तो हम आपको सुनाते हैं एक कहानी, मूर्ख बातूनी कछुआ।
1: किसी तालाब में कंबू ग्रीव नामक एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले संकट और विकट नामक हंस से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घरों को चल देते। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वो तालाब भी सूखने लगा।
0: अब हंसों को कछुए की चिंता होने लगी। जब उन्होंने अपनी चिंता कछुए से कही तो कछुए ने उन्हें चिंता न करने को कहा। उसने हंसों को एक युक्ति बताई। उसने उनसे कहा कि सबसे पहले किसी पानी से लबालब तालाब की खोज करें, फिर एक लकड़ी के टुकड़े से लटकाकर उसे उस तालाब में ले चलें।
1: उसकी बात सुनकर हंसों ने कहा कि वो तो ठीक है, पर उड़ान के दौरान उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। कछुए ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलेगा। कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को अपने दांत से पकड़ा और फिर दोनों हंस उसे लेकर उड़ चले। रास्ते में नगर के लोगों ने जब देखा कि एक कछुआ आकाश में उड़ा जा रहा है तो वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे।
0: लोगों को अपनी तरफ चिल्लाते देखकर कछुए से रहा न गया। वो अपना वादा भूल गया और उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, आकाश से नीचे गिर पड़ा। ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण वो चोट झेल नहीं पाया और अपना दम तोड़ दिया।
1: इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमान भी अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाता तो परिणाम बहुत बुरा होता है।
0: बच्चों, कहानी बहुत छोटी थी लेकिन इस कहानी से जो हमें सीख मिली वो बहुत बड़ी सीख है ना बच्चों? तो चलिए अब कुछ और जानकारी की बातें होनी चाहिए। तो हर हफ्ते हम आपको किसी एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज के प्रेरक व्यक्तित्व कौन है दीदी?
1: आज के प्रेरक व्यक्तित्व है स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर, जिनकी जयंती है 28 मई को।
0: बच्चों, भारत की आजादी के लिए अनेक वीरों ने अपना जीवन समर्पित किया। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नाम है विनायक दामोदर सावरकर का। लोग उन्हें प्यार और सम्मान से वीर सावरकर भी कहते हैं। वे बहुत साहसी, बुद्धिमान, देशभक्त और मेहनती व्यक्ति थे। उनका जीवन बच्चों युवाओं के लिए प्रेरणा से भरा हुआ है। 28 मई को, जैसा कि दीदी ने कहा, कि उनकी जयंती ही मनाई जाती है और इस दिन हमें उनके जीवन और विचारों को याद करना चाहिए।
1: बच्चों, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। बचपन से ही वे बहुत होशियार और निडर थे। उन्हें पढ़ाई करना, कविताएं लिखना और देशभक्ति की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था।
0: जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया बच्चों, और उनकी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कठिनाई आने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके बड़े भाई ने उनका पालन पोषण किया और बचपन से ही उनके मन में देश के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा थी।
1: उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ये देखकर सावरकर जी के मन में देश को आजाद कराने की भावना पैदा हुई। स्कूल के दिनों में ही वे अपने दोस्तों के साथ देशभक्ति के गीत गाते थे और सबको एकजुट रहने के लिए प्रेरित करते थे।
0: बच्चों, उन्होंने युवाओं का एक समूह बनाया जिसका नाम था मित्र मेला। बाद में यही संगठन अभिनव भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस संगठन का उद्देश्य युवाओं में देश प्रेम और साहस की भावना को जगाना था।
1: सावरकर जी पढ़ाई में बहुत तेज थे बच्चों। उन्होंने पुणे के कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन वहाँ भी उनका मन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। वे भारत की स्वतंत्रता के बारे में सोचते रहते थे।
0: इंग्लैंड में उन्होंने भारतीय छात्रों को संगठित किया बच्चों और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 1857 की क्रांति पर एक पुस्तक भी लिखी और इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि 1857 केवल सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अंग्रेज सरकार इस पुस्तक से डर गई और उस पर प्रतिबंध लगा दिया।
1: विनायक दामोदर सावरकर बहुत साहसी थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें जहाज से भारत लाया जा रहा था, तब उन्होंने समुद्र में छलांग लगाकर भागने का प्रयास किया। ये घटना उनके अद्भुत

0: अद्भुत साहस को दर्शाती है।
1: हालांकि बाद में उन्हें फिर से पकड़ लिया गया बच्चों, और अंग्रेज सरकार ने उन्हें दो दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अंडमान की सेकुलर जेल भेज दिया। उस जेल को काला पानी भी कहा जाता था।
0: काला पानी की जेल बहुत कठोर थी बच्चों। वहाँ कैदियों को भारी मेहनत करनी पड़ती थी, उन्हें कोल्हू चलाना पड़ता था और बहुत कम खाना दिया जाता था। कैदियों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता था।
1: लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों में भी सावरकर जी का मनोबल नहीं टूटा बच्चों। वो हमेशा मजबूत बने रहे। उन्होंने जेल की दीवारों पर किलों और पत्थरों से कविताएं लिखी।
0: सावरकर जी केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे बच्चों, बल्कि एक महान लेखक और कवि भी थे। उन्होंने देशभक्ति से भरी कई कविताएं और पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाएं लोगों के मन में देश प्रेम और साहस की भावना जगाती थी।
1: बच्चों, वो मानते थे कि शिक्षा और ज्ञान से ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए वे युवाओं को पढ़ने, सीखने और अनुशासन में रहने की प्रेरणा देते थे।
0: सावरकर जी समाज में फैली छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि सभी लोग मिलजुल कर रहें। उन्होंने समाज में समानता और एकता का संदेश दिया।
1: वे मानते थे बच्चों कि एक मजबूत और शिक्षित समाज ही देश को आगे बढ़ा सकता है, इसलिए उन्होंने लोगों को आपसी भेदभाव छोड़ने और एक दूसरे का सम्मान करने की सीख दी।
0: विनायक दामोदर सावरकर का जीवन बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। उनके जीवन से हमें कई अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं।
1: हाँ बच्चों, हमें कभी नहीं डरना चाहिए, कठिन परिस्थितियों का सामना हिम्मत से करना चाहिए।
0: हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और देश की प्रगति के लिए अच्छे कार्य भी करने चाहिए।
1: पढ़ाई और ज्ञान हमें मजबूत बनाते हैं, इसलिए हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए।
0: और जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।
1: अनुशासन और मेहनत से ही सफलता मिलती है।
0: हर साल 28 मई को वीर सावरकर की जयंती मनाई जाती है। ये तो हमने आपको पहले ही बताया है। ये दिन हमें देशभक्ति, साहस और त्याग की भावना सिखाता है।
1: तो बच्चों, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर ईमानदार, मेहनती और अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
0: बिल्कुल।
1: तो दीदी, ये थी जानकारी वीर सावरकर के बारे में। और बच्चों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है। तो चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी वो नूतन प्रसाद की थी। तो अगले हफ्ते बच्चों फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ जानकारियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ, कुछ कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
0: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा, चर्चा थी एक पौधा लगाओ पक्षी बसाओ, किताबें हमारी दोस्त, जानकारी थी स्वच्छ पृथ्वी सुंदर भविष्य, धरती की रंग बिरंगी दुनिया का राज जैव विविधता, प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

4:35 पर आप सुनेंगे सात सरगम, 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार, 5:02 पर यूवाणी प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की, 5:30 पर श्रमिक भाइयों का कार्यक्रम श्रमिक लोक प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की, 6:02 पर खेती बारी प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की, 6:32 पर आप सुनेंगे हमारी दुनिया प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी रांची है। कुछ ही पलों में सुनते हैं फिल्म गीतों का कार्यक्रम सहज सरगम।

प्रस्तुत है कार्यक्रम साज सरगम। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से, जिसे गाया है किशोर कुमार व लता मंगेशकर ने। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, संगीत है शिव हरी का।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म गीतों का कार्यक्रम साज सरगम। अब हम आपको सुनवाएंगे फिल्म दबंग से ये गीत राहत फतेह अली खान के स्वर में। बोल है समीर अंजान के, संगीत है साजिद वाजिद का।

श्रोताओं, हमारा कार्यक्रम आखिरी पड़ाव पर है। आइए सुनते हैं फिल्म सिंघम से ये गीत। श्रेया घोषाल के स्वर में गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, संगीत है अजय गोगावले और अतुल गोगावले के।

0: ये आकाशवाणी रांची है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिमेश रंजन ने आज उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गुमला के पद पर योगदान किया। उन्होंने जिले के संपूर्ण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इधर खूंटी में मोहम्मद जावेद हुसैन ने उपायुक्त के रूप में योगदान किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। गिरिडीह जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए SP डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आज जागरूकता रैली निकाली। SP ने बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए लोगों को गुलाब फूल देकर हेलमेट पहनने का आग्रह किया। गोड्डा में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कॉमनवेल्थ डे के 75वें संस्करण और कॉमनवेल्थ गेम्स थीम पर +2 उच्च विद्यालय से शहीद स्तंभ तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में हॉकी खिलाड़ी और खेल प्रेमी शामिल हुए। रांची के 36 केंद्रों पर आज UPSC की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। यह निषेधाज्ञा शाम 7:30 तक प्रभावी रहेगी। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के करमाटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड क्षेत्र में एक बार

फिर जंगली हाथियों के झुंड से ग्रामीण परेशान हैं। करीब 35 हाथियों का झुंड पिछली रात जाताखुटी पंचायत के दालूगोड़ा गांव में घुसाया। हाथियों ने स्कूल को क्षतिग्रस्त किया और वहां रखे मध्याह्न भोजन का अनाज खा गए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे। तो आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो आज के इस सफ़र में मैं हूं आपके साथ खुशी,
1: और मैं हूं आपका दोस्त रजत,
0: और आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: तो दोस्तों, चलिए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के एक बेहद ही खास दिन से। जी हाँ दोस्तों, आज है कॉमनवेल्थ डे। हर साल 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। यह दिन इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका जन्म 24 मई को 1819 में हुआ था। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे।
0: बिल्कुल, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस 56 स्वतंत्र देशों का एक समूह है। भारत 1947 में आज़ाद होने के बाद 1949 को से राष्ट्रमंडल का सदस्य है।
1: हाँ खुशी, कुल मिलाकर राष्ट्रमंडल में लगभग 2.7 अरब लोग रहते हैं। ये दुनिया की आबादी का लगभग 1/3 है। इसके सदस्य देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं।
0: दोस्तों, राष्ट्रमंडल दिवस मनाने का उद्देश्य है एकता और सहयोग को बढ़ावा देना। यह दिन लोकतंत्र, मानवाधिकार, शांति और विकास जैसे साझा मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
1: आबादी और अर्थव्यवस्था दोनों में भारत राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए ये मंच कूटनीति, व्यापार, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रमंडल दिवस सहयोग और साझा भविष्य का उत्सव है। दोस्तों, राष्ट्रमंडल दिवस के साथ साथ आज अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस भी है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2024 में घोषित यह दिवस जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति मारखोर के संरक्षण और उसके प्राकृतिक आवास की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है।
0: दोस्तों, वैज्ञानिक रूप से कैप्रा फैल्कोनेरी के नाम से जाना जाने वाला मारखोर दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बकरी है, जो अपने राजसी पेंच के आकार के सींगों और घने फर के लिए प्रसिद्ध है।
1: हाँ खुशी, मारखोर मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का मूल निवासी है। यह अफगानिस्तान, भारत के जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में पाया जाता है, और साथ ही साथ मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है।
0: सही कहा रजत, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाने का उद्देश्य गंभीर खतरों जैसे अवैध शिकार, आवास की रक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन पर्यटन और वन्य जीव संरक्षण पहलों में हमारी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का काम करता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां शब्द भी मुस्कुराते हैं, जहां यादें भी गुनगुनाती हैं और जहां हर एहसास किसी न किसी गीत में ढल जाता है। जिंदगी बहुत तेज चलती है ना, सुबह आँख खुलते ही जिम्मेदारियों की दौड़ शुरू हो जाती है। किसी को अपने सपनों की चिंता है, किसी को रिश्तों की, तो कोई बस इस कोशिश में लगा है कि चेहरे की मुस्कान कहीं खो ना जाए।
1: लेकिन इन सब के बीच हम अक्सर खुद को पीछे छोड़ देते हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं, और फिर कभी अचानक कोई पुराना गीत, कोई पुरानी तस्वीर या किसी अपने की आवाज़ हमें वहीं ले जाती है जहां हम सच में खुश थे। तो आज की ये गीतों भरी कहानी उन्हीं एहसासों के नाम, जो दिल में तो रहते हैं लेकिन अक्सर शब्दों में नहीं आ पाते।

0: गाने से तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा दोस्तों कि हम आखिर किस बारे में बात करने जा रहे हैं। यारी, जी हाँ, दोस्ती। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, ये जिंदगी का वो हिस्सा होता है जो हर मुश्किल में हमें संभाल लेता है।
1: दोस्तों, याद है वो दिन जब छोटी छोटी बातों पर घंटों हंसी आती थी, जब बिना पैसे के भी खुशी बहुत ही बड़ी लगती थी, जब दोस्तों के साथ सड़क किनारे बैठकर बातें करना किसी महंगी जगह से ज़्यादा सुकून देता था।
0: पर समय धीरे धीरे बदलता गया, लोग अपने अपने रास्तों में व्यस्त होते गए, लेकिन कुछ यादें आज भी वही ठहरी हुई हैं। कई बार हम जिंदगी में बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल के सबसे करीब रह जाते हैं, चाहे उनसे बात हो या ना हो, लेकिन उनका होना हमारी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन जाता है।
1: और फिर एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान सिर्फ रिश्तों में नहीं, खुद में भी जवाब ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो खुद से दूर हो गया है, तभी ज़िंदगी उसे सफ़र पर ले जाती है।

0: दोस्तों, सफ़र सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं होता। कई बार सफ़र हमें अंदर से बदल देता है। नई राहें, नए लोग, नई बातें, और उन्हीं के बीच हम खुद को थोड़ा और समझने लग जाते हैं।
1: कभी पहाड़ों की ठंडी हवा, कभी बारिश की बूंदें, तो कभी किसी स्टेशन पर रुकती हुई ट्रेन। जिंदगी हर जगह कोई ना कोई कहानी छोड़ जाती है, और शायद इसलिए कुछ लोग घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें रास्ते में सुकून मिलता है।
0: लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सफर बाहर नहीं होता है, खुद को समझने का सफर, अपने डर से बाहर आने का सफर, और ये मान लेने का सफर कि हर किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं होती है।
1: कई बार हम दूसरों को खुश रखने में इतने खो जाते हैं कि खुद की खुशी भूल जाते हैं। हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई आएगा और हमें समझेगा, लेकिन सच तो ये है कि सबसे पहले हमें खुद को समय देना सीखना पड़ता है।
0: जिंदगी हमेशा बड़ी खुशियां नहीं देती दोस्तों, लेकिन वो रोज़ छोटे छोटे पल ज़रूर देती है। सुबह की हल्की सी धूप, माँ की आवाज़, दोस्त का अचानक आया मैसेज, या फिर अकेले बैठकर अपना पसंदीदा गाना सुनना, वही छोटी बातें धीरे धीरे दिल को भर देती हैं।
1: और शायद खुशी का मतलब भी यही है, हर पल को परफेक्ट बनाना नहीं, बल्कि हर पल में कुछ अच्छा ढूंढ लेना। कभी अगर ज़िंदगी आपको थका दे तो थोड़ा रुक जाइए, खुद को वक्त दीजिए, किसी शांत शाम में अपने पसंदीदा गीत सुनिए, और याद रखिए, हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है।
0: क्योंकि ज़िंदगी रुकती नहीं है दोस्तों, वो हर दिन एक नया पन्ना खोलती है।

0: लगता है।
1: अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा।
2: फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ।
0: इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी।
2: अरे यार
0: देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और इस सफर में अगर आपके पास कुछ अच्छे लोग हों, कुछ प्यारी यादें हों और दिल में थोड़ी सी उम्मीद बाकी हो तो यकीन मानिए दोस्तों, जिंदगी अब भी बहुत खूबसूरत है।
5: तो दोस्तों, आज की इस गीतों भरी कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब ने गीतों के साथ हमारी कहानी को एंजॉय किया होगा। दोस्तों, हम युवा हैं और हम युवाओं के लिए टाइम का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। समय का सदुपयोग जीवन में सफलता और मानसिक शांति की कुंजी है। हर पल को सही दिशा में लगाना, लक्ष्य निर्धारित करना और आलस से बचना ही सफल जीवन का मूल मंत्र है।
4: गया वक्त दोस्तों फिर हाथ नहीं आता, यह कहावत समय का सबसे बड़ा सच बताती है। पैसा गया तो कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य गया तो सुधारा जा सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है वही जीवन में सफल होता है।
5: दुनिया के हर इंसान को दिन में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं, किसी को ना ज़्यादा ना किसी को कम, फर्क सिर्फ इसके उपयोग से पड़ता है। समय सबसे बड़ा धन है, हमें इसे खर्च नहीं बल्कि निवेश करना चाहिए। घंटों रील्स देखकर इसे खर्च करने के बजाय पढ़ाई में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्किल्स सीखने में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए हमें।
4: इसके साथ साथ हमें समय को व्यर्थ के कामों में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए बल्कि उसे उपयोग कामों में लगाना चाहिए। पढ़ाई, खेल, परिवार और ज़रूरी कामों के लिए टाइम फिक्स करना चाहिए।
5: जी हाँ दोस्तों, समय का सदुपयोग करने का मतलब है अपने एक एक क्षण को सार्थक बनाना, अपनी प्रायोरिटीज सेट करना और डेली टू डू लिस्ट बनाना और अपने कामों को प्रायोरिटीज देना और उसका अच्छे से उपयोग करना।
4: टाइम मैनेजमेंट हमें दोस्तों स्ट्रेस से भी बचाता है, शरीर और मन को बहुत रिलैक्स करता है। हमें समय की कद्र और सदुपयोग करते हुए लक्ष्य प्रगति की ओर आगे हमेशा निरंतर बढ़ना चाहिए।
5: हाँ खुशी, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हम सभी को अपनी प्राथमिकताएं सेट करनी चाहिए, डेली रूटीन सेट करना चाहिए जिससे कि बहुत सारे हमारे काम आसान हो जाते हैं। अगर हम वीक स्टार्ट होने से पहले ही काम को सेट कर लें, अपना एक टू डू लिस्ट बना लें और अपने प्रायोरिटीज को सेट कर लें तो हमें पूरे वीक काफ़ी आसानी होगी। हमें सेट करना

0: आगे बढ़ पाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा रजत, खाली समय का बहुत ही उपयोग करना चाहिए, जैसे कि यात्रा करते समय या ब्रेक के दौरान हमें किताबें पढ़नी चाहिए, जैसे छोटे उपयोगी काम करें।
0: बिल्कुल, ये बात तो तुमने बहुत ही अच्छी बताई। बहुत टाइम पे हम ट्रैवल करते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम बस इधर उधर रील स्क्रॉल करके या फ़ोन में अपना बहुत ही कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें उस टाइम को यूटिलाइज करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम युवाओं के लिए टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह समय ही है समय के सदुपयोग का, तभी हम लक्ष्य को पा सकेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हमें एक स्पष्ट दिनचर्या बनानी चाहिए ताकि हम अपने काम को प्रायोरिटाइज कर सकें, अपने हर एक काम के लिए निश्चित समय दे पाएं, ताकि हमें आगे जाके इसके लिए परेशानी का सामना बिल्कुल ना करना पड़े, ताकि हम पूरे वीक रिलैक्स हो सकें और अपने यूटिलाइजेशन को टाइम दे पाएं, समय को अच्छे से उपयोग कर पाएं, और इस तरह से हमारी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइम मैनेजमेंट से हम मानसिक शांति को पाते हैं, और जो कि हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने में, हमारे लक्ष्य को पाने में बहुत ही की रोल निभाता है। दोस्तों, आपसे बातें तो और भी करनी थी, पर घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है, वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। हम आपसे फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त रजत
1: और आपकी दोस्त खुशी
0: को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है श्रमिक भाइयों का कार्यक्रम श्रमिक लोक। प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की। आज आपके साथ है जया श्रीवास्तव और आशीष कश्यप।

0: नमस्कार जोहार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम श्रमिक लोग। मैं हूं आपकी दोस्त जया और आज मेरे साथ है आशीष। आशीष आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार जया, और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज कॉमनवेल्थ डे के अवसर पर हम बात करेंगे एक ऐसे वैश्विक मंच की जो दुनिया के अनेक देशों को सहयोग, शांति और विकास के सूत्र में बांधता है, कॉमनवेल्थ।
0: साथियों, हम आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल दुनिया के विभिन्न देशों का एक ऐसा समूह है जहां सदस्य देश आपसी सम्मान और लोकतंत्र, समानता और विकास की भावना के साथ मिलकर कार्य को करते हैं।
1: हाँ साथियों, कॉमनवेल्थ का उद्देश्य केवल राजनीतिक संबंध बनाए रखना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, व्यापार, पर्यावरण और युवा विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना भी है जी।
0: और साथियों, कॉमनवेल्थ की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता में एकता, यानी अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं होने के बावजूद सभी सदस्य देश शांति और प्रगति के साझा लक्ष्य के लिए साथ आते हैं, है ना। ये बहुत अच्छी बात है ना आशीष।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और कॉमनवेल्थ गेम्स भी इस संगठन की पहचान है जी, जहाँ खेलों के माध्यम से मित्रता और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। भारतीय खिलाड़ियों ने भी इन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है।
0: बहुत बड़ी बात है। और साथियों, कॉमनवेल्थ डे हमें यह संदेश देता है कि संवाद, सहयोग और पारस्परिक सम्मान से विश्व को बेहतर बनाया जा सकता है।
1: तो साथियों, आइए हम भी एकता, शांति और मानवता के मूल्यों को अपनाएं और उसका संकल्प लें।

0: और हम सभी को इसमें आगे बढ़ने की भी जरूरत है। और साथियों, अब हम बातें करेंगे हिंदी सिनेमा के उस संगीतकार की जो कुंवारा बाप से काबिल तक हर दौर में खुद को ढालने वाले संगीतकार बने हैं। मालूम है कौन है?
1: जिनके संगीत में कभी मासूमियत की मिठास रही तो कभी आधुनिकता की चमक, जिनकी धुनों ने हर पीढ़ी के दिल को छुआ।
0: जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध संगीतकार राजेश रोशन की, जिनकी जयंती पर प्रस्तुत है यह कार्यक्रम।
1: बिल्कुल सही कहा। और संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के साथ बदलते संगीत के रंगों में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। राजेश रोशन उन्हीं चुनिंदा संगीतकारों में से एक हैं।
0: और आज के दिन यानी कि 24 मई सन 1955 को जन्मे राजेश रोशन महान संगीतकार रोशन के पुत्र हैं। संगीत उन्हें विरासत में मिला, लेकिन अपनी अलग पहचान उन्होंने अपनी मेहनत और प्रयोग धर्मिता से बनाई थी। आशीष,
1: उन्होंने काफी प्रयोग किया था अपने संगीतों में। और साथियों, हम आपको बता दें कि साल 1974 में फिल्म कुंवारा बाप से राजेश रोशन ने संगीत निर्देशन की शुरुआत की। गीत आ रिया जा निंदिया तू ले चल कहीं आज भी श्रोताओं के दिलों में बसा हुआ है।
0: सचमुच सचमुच। और पहली फिल्म से यह स्पष्ट हो गया था कि युवा संगीतकार भावनाओं को सुरों में पिरोना जानते हैं। उनकी संगीत की सबसे बड़ी खासियत रही है सरल धुने, मधुरता और भावनाओं की गहराई।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और समय बदला, संगीत का स्वरूप बदला, लेकिन राजेश रोशन ने खुद को हर दौर के अनुरूप ढाल लिया। 90 के दशक में जहां तेज बीट्स और नए प्रयोगों का दौर आया, वहीं राजेश रोशन ने भी आधुनिक संगीत को अपनाया। फिल्म कहो ना प्यार है का संगीत युवाओं की धड़कन बन गया।
0: सही में उसका जो भी अगर संगीत तुम सुनो ना, सचमुच दिल को छू ही जाता है। और इसके बाद कोई मिल गया, क्रश और काबिल जैसे फिल्मों में उनका संगीत आधुनिकता और संवेदनशीलता का सुंदर मिल बनकर सामने आया। विशेष रूप से काबिल हूँ गीत ने लोगों के दिलों में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास को जगाया है। आशीष,
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और राजेश रोशन का संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं की यात्रा है। उनकी धुनों में प्रेम भी है, संघर्ष भी, सादगी भी और आधुनिकता भी।
0: उन्होंने यह साबित किया कि सच्चा कलाकार कहीं है जो समय के साथ बदलते हुए भी अपनी आत्मा को जीवित रखे।
1: बिल्कुल सही कहा। और राजेश रोशन की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनके संगीत योगदान को याद करते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं उनकी ही संगीत रचना से सजा ये खूबसूरत संगीत।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत हमने अपने श्रोता मित्रों को सुनवाया, और इस गीत की सबसे बड़ी खासियत थी ना कि इस गीत में राजेश रोशन को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं।
1: हाँ, ये तो एक बड़ी उपलब्धि रही होगी, और बड़ा ही अच्छा से वो सामंजस्य बैठाकर वो पुराने जमाने के गीतों को लेकर और नए जमाने के गीतों तक का सफर उन्होंने पूरा किया, ये बहुत बड़ी बात है। और जया, जानते हैं कल मुझे एक व्यक्ति मिले और उन्होंने कहा कि एक क्लिक से उनका बैंक का खाता खाली हो गया।
0: ये मैं हर किसी, मतलब अगर आसपास अगर तुम किसी के साथ बैठोगे ना तो ये चीज़ें अक्सर मैं सुनती हूँ कि आपने कभी साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं या आप हुए हैं। कल मेरी फ्रेंड भी थी जो कुछ दिन पहले की घटना बता रही थी कि वो अचानक घर में बैठे बैठे उन्होंने अपने अकाउंट में कुछ पैसा डाला और रात में उनके अकाउंट से सारे पैसे।
1: ये बड़ा ही मतलब जागरूक होने का विषय है कि अनजाने लिंक पर कभी भी हमारे श्रोता या जो भी हमें सुन रहे हैं, कोई भी अनजाने लिंक पर आप क्लिक ना करें। कोई भी अनजाना फोटो अगर आपको कोई भेजता है तो उसे डाउनलोड ना करें, या किसी को भी फोन करने पर अपना बैंक की जानकारी, ओटीपी की जानकारी या एटीएम पिन की जानकारी किसी को ना दें,
0: और कोई भी प्रलोभन में बिल्कुल ना आए। बहुत सारे लोग प्रलोभन के चक्कर में साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। तो ये है कि बस छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो ये साइबर फ्रॉड से आप बच सकते हैं, यानी कि हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। आशीष, तो आशीष क्यों ना हम अपने श्रमिक साथियों को एक वार्ता सुनाते हैं, और ये वार्ता है साइबर फ्रॉड से हम कैसे बचे, और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रही है स्निग्धा कुमारी।
2: साइबर फ्रॉड से अभी के दौर में लगभग सभी लोग परेशान हैं। आज सभी लोग मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, और इन सभी उपकरणों का फ्यूल है इंटरनेट। आज के दौर का एक अहम हिस्सा बन चुका है यह इंटरनेट। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसका प्रयोग करते हैं, फिर चाहे वो गेम खेलने के लिए हो, पढ़ाई करने के लिए हो, व्यवसाय, ऑनलाइन शॉपिंग, मनोरंजन या अन्य किसी कार्य के लिए हो। जिस प्रकार हम मनुष्य हर दिन भोजन का सेवन करते हैं, ठीक उसी प्रकार इंटरनेट का भी इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के हर दिन करते हैं। इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। कुछ भी नया सीखने या जानने में इंटरनेट हमारी मदद करता है और हमें कम समय में ज्यादा चीजें बता देता है। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और तकनीकी विकास ने हमारे जीवन को सुविधाजनक और गतिमान बना दिया है। परंतु जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इंटरनेट का भी दूसरा और भयावह पहलू है। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही साइबर फ्रॉड की घटनाओं में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। साइबर फ्रॉड एक गंभीर गुनाह है। किसी की व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी को चुरा कर उसका दुरुपयोग किया जाता है। आसान शब्दों में समझें तो साइबर अपराध एक सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों से किसी अन्य सेट का उपयोग करके की जाने वाली आपराधिक गतिविधियों का वर्णन करता है। 18 से 25 वर्ष की आयु में लगभग 86% युवा मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा प्रयोग होगा उतनी ही साइबर ठगी की आशंका भी बढ़ेगी। किसी भी चीज के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसके बारे में पूरी तरह जानकारी रखना। तो इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि साइबर हमले किन किन प्रकार के होते हैं। पहला है मैलवेयर। मैलवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, डाटा चुराने या उपयोगकर्ता की जानकारी को बिना सिस्टम के नियंत्रण के लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके प्रमुख प्रकार हैं वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर। अगला आता है फिशिंग। यह एक साइबर हमला है जिसमें धोखाधड़ी पूर्वक ईमेल संदेश या वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को हैक कर लिया जाता है। इसमें अक्सर आधिकारिक संस्थाओं की नकली प्रतियां बनाई जाती हैं ताकि उपयोगकर्ता उन पर भरोसा कर सकें। अगला है रैंसमवेयर। यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है। यह उपयोगकर्ता से फिरौती मांगता है ताकि फाइलों को अनलॉक किया जा सके। इससे डेटा खोने का जोखिम होता है और साइबर सुरक्षा का खतरा भी होता है। इन दिनों एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है जहां हैकर्स की नज़र लोगों की कारों पर होता है। आजकल अधिकतर कारों में स्मार्ट गैजेट्स और स्मार्ट सिस्टम मौजूद है। स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम चालक को अनुमानित ट्रैफिक जाम की जानकारी देने, कार पार्क करने में मदद करता है और इसके साथ साथ मोबाइल की तरह एप्स और कॉलिंग जैसे एंड्रॉयड फीचर भी देता है। क्योंकि कार के स्मार्ट गैजेट्स और सिस्टम मोबाइल से जुड़े होते हैं, इसलिए साइबर हैकर्स के लिए सिस्टम को हैक करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। इसमें ज्यादातर मैन इन द मिडिल नामक अटैक का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक वाहन वाईफाई, ब्लूटूथ, सेल्युलर संचार, एनएफसी जैसे कई वायरलेस इंटरफेस से लैस रहते हैं, जिससे हैकर्स को अटैक करने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए, हैकर्स वाहनों में गलत बेस स्टेशन या आईएमसी कैचर को स्थापित करके कार के मॉडेम को कनेक्ट करते हैं और सेल्युलर संचार और डाटा को बाधित करते हैं। यह हमला कर सिस्टम में कई प्रकार के नुकसान पैदा किए जा सकते हैं, जैसे कि मोबाइल को कार से कनेक्ट करने पर व्यक्तिगत जानकारी की चोरी होना, आपातकालीन

ब्रेकिंग सिस्टम या कार को नियंत्रित करने का जोखिम आदि। इसके अलावा स्मार्ट टीवी, स्मार्ट स्पीकर, वाईफाई राउटर्स, डोर ओपनर, स्मार्ट घड़ी और स्मार्ट कैमरा, यह कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जिन्हें हैक किया जा सकता है। यह वह गैजेट्स हैं जो मोबाइल से जुड़े होते हैं। मोबाइल की मदद से हैकर्स इन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इससे बचने के लिए युवा अनेक प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कार पूलिंग और रेंटेड कारों में फोन को सिंक करने से बच सकते हैं, स्मार्टफोन को कार के सिस्टम से जोड़ने के पहले अधिक सतर्कता बरतें और सिस्टम को नियमित अपडेट करते रहें। कार के स्मार्ट सिस्टम में अज्ञात सूत्रों से डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर या ऐप से बचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐप्स केवल सुरक्षित और विश्वसनीय स्रोत से ही डाउनलोड करने चाहिए। इसके पश्चात युवा सभी अन्य प्रकार के साइबर ठगी से भी बचने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले सुरक्षित और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे नियमित अंतराल में बदलना चाहिए। अक्सर युवा या अन्य लोग भी जन्मदिन या ऐसे ही कुछ खास दिनों की तारीख को अपना पासवर्ड बनाकर रखते हैं, जो कि साइबर ठगों के लिए डिकोड करना आसान हो जाता है और वह मौका लगने पर उपयोगकर्ता को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। दूसरा तरीका यह है कि युवा अपने डिवाइस को नियमित अपडेट करते रहें और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। हेल्पलाइन सेंटर ठगी से बचने के लिए युवाओं को कभी भी किसी अज्ञात नंबर पर कॉल बैक नहीं करना चाहिए और हमेशा आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार इंटरनेट पर भी कस्टमर केयर के फ्रॉड नंबर दे रखे होते हैं, जिससे आसानी से युवाओं को अपनी चपेट में लाया जा सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि दिया गया नंबर ऑथराइज्ड है या नहीं। साइबर अपराधियों ने एक और नया तरीका अपनाया है, जिसमें अफसरों के डीपी वाले विदेशी फोन नंबर से ठगी के कॉल आते हैं। यदि युवाओं ने बिना सोच विचार के फोन रिसीव कर लिया तो फोन करने वाले ठग को मौका मिल जाता है और अलग अलग धमकियां देकर वे पैसों की मांग करने लगते हैं। क्योंकि युवा उतने परिपक्व नहीं होते हैं, इसलिए वो इनके झांसे में आसानी से आ जाते हैं और अपना इम्पोर्टेंट डेटा उन्हें दे देते हैं। बीते कुछ समय में हजारों कॉल, अनेकों शिकायतें और लाखों रुपयों की ठगी की जा चुकी है। ऐसे में न केवल युवाओं को परंतु अन्य लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी अनजान फोन नंबर से आए कॉल को उठाने से बचना चाहिए और अगर गलती से फोन उठा लें तो सामने वाले की धमकियों से बिना डरे युवाओं को अपने अभिभावक को और अभिभावकों को पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी देनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि केवल आपसे बात करने के दौरान ही आपके फोन को हैक कर लिया जा सकता है। सामने वाला व्यक्ति जानबूझकर आपसे इधर उधर की बातें करके कॉल टाइम को बढ़ाने की कोशिश करेगा और आपके फोन का सारा सेंसिटिव डेटा ले आपको धमकाएगा। इसलिए इस तरह की किसी भी कॉल पर ज्यादा देर बात नहीं करनी चाहिए। नंबर स्कैम से बचने के लिए कभी भी अज्ञात नंबर से आने वाले कॉल्स को इग्नोर करना चाहिए और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार स्कैमर्स ओटीपी मांगते हैं, जो किसी भी तरह यदि उन्हें मिल जाए तो आपके सिस्टम का डेटा, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट के पैसे भी निकाले जा सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने ओटीपी को किसी से शेयर न करें, खासकर अगर किसी अज्ञात कॉल या ईमेल से आपको ओटीपी मांगने की कोशिश की जा रही हो। बहुत बार लॉटरी निकलने या बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने के फ्रॉड मैसेजेस भी आते हैं और नीचे एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। ऐसा करना आपको अत्यंत दुविधा में डाल सकता है, इसलिए उत्साहित होकर किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक बिल्कुल न करें। आज के समय में कई जगह QR कोड स्कैनर होता है, परंतु किसी भी QR कोड को स्कैन करने से पहले उसकी प्रमाणिकता को सत्यापित करना बहुत जरूरी है। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि QR कोड सिर्फ विश्वसनीय सोर्सेस से ही स्कैन करें। साइबर ठगी से बचने के लिए सुरक्षित ब्राउजिंग हैबिट्स भी अच्छी होती हैं, जैसे विश्वसनीय वेबसाइट का उपयोग करना और अज्ञात वेबसाइट से दूर रहना। न केवल खुद हैकर्स की इन टेक्निक से बचना चाहिए, परंतु आसपास के अन्य लोगों को भी सचेत करना चाहिए। युवाओं में यह खूबी होती है कि वह किसी भी बात को तर्क सहित दूसरों को समझा सकते हैं, जिससे वह अपने साथ साथ दूसरों का भी बचाव कर सकते हैं। याद रखें, आपकी सुरक्षा स्वयं आपके हाथों में है। फोन का सदुपयोग करें, लालच में न पड़ें, अपने व्यक्तिगत डाटा को किसी से साझा न करें तथा इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी भी अनजान QR कोड को स्कैन
ना करें।

0: बहुत ही अच्छी जानकारी दी सुमना कुमारी ने, और हम लोग जान रहे थे कि साइबर फ्रॉड से हम लोग कैसे बच सकते हैं।
1: तो अगर हमें इनकी बातों पर अगर सभी लोग अमल करेंगे तो साइबर फ्रॉड से जाहिर सी बात है बच सकते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और आशीष, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले विषय पर, जो है असंगठित श्रमिकों की नई संहिता में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है।
0: हाँ, और देश के निर्माण में असंगठित श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेतों से लेकर निर्माण कार्य तक, घरों से लेकर छोटे उद्योगों तक, हर जगह उनका योगदान दिखाई देता है। लेकिन लंबे समय तक ये श्रमिक सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहे।
1: और अब है ना, जो नई जो श्रम संहिताओं के माध्यम से सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के नए आयाम खोलने का प्रयास किया है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और साथियों, हम आपको बताएंगे कि नई संहिता असंगठित श्रमिकों के जीवन में क्या बदलाव ला सकती है। भारत में करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले, खेतिहर मजदूर और गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर शामिल हैं। और ये गिग वर्कर ज्यादा पता है क्या है?
1: नहीं।
0: ये नई संहिता में है, जो हम 5 मिनट में डिलीवरी कुछ मंगवा लेते हैं।
1: हाँ।
0: जो आप ब्लिंकिट अभी आप देख लो, या जोमेटो से हम लोग खाना बुला लेने, ये लोग को गिग वर्कर कहा गया है।
1: अच्छा।
0: और इनको भी सामाजिक सुरक्षा दी गई है, जो आगे हम लोग बताएंगे।
1: और इन श्रमिकों की सबसे बड़ी चुनौती रही है निश्चित आय और स्वास्थ्य सुरक्षा और वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा का अभाव। और इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नई सामाजिक सुरक्षा संहिता लाई गई है, जिसके तहत बीमा सुरक्षा, पेंशन, मातृत्व लाभ, स्वास्थ्य सुविधाएं और दुर्घटना सहायता, इसके लिए श्रमिकों को पंजीकरण कराना बेहद जरूरी होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और साथियों, नई संहिता की एक बड़ी विशेषता है ई श्रम पोर्टल। इस पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को एक पहचान संख्या मिलती है, जिससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: और साथियों, असंगठित श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना केवल सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। आशीष,
0: और जया दी, अब ये मुझे लग रहा है कि राजेश रोशन का जयंती है, एक ही गाना सुनाए तो अच्छा ही लग रहा है।
1: तो तुम चाह रहे हो कि एक और हम उनके द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ गीत अपने श्रमिक साथियों को सुना दे? तो भाई देर न करते और सुनाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनवाया। और साथियों, हमारे देश की मिट्टी में कला बसती है, हाथों में हुनर और दिलों में मेहनत।
1: और कभी लकड़ी पर नक्काशी, कभी मिट्टी में सुंदर बर्तन, तो कभी कपड़ों पर कढ़ाई। भारत के कारीगर अपनी कला से देश की पहचान दुनिया तक पहुंचाते। आशीष,
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और हर कारीगर की उंगलियों में एक कहानी होती है, लेकिन कई बार यही कलाकार पहचान और अवसर के अभाव में पीछे रह जाते हैं।
1: बिल्कुल। और आज सरकार की ओर से कई संस्थाएं हैं जो कारीगरों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, ऋण, प्रदर्शनी और ऑनलाइन बाजार जैसी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध करा रही। आशीष,
0: यही तो बदलाव है। जब हुनर को मंच मिलता है तो कारीगर आत्मनिर्भर बनता है और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है।
1: और साथियों, कारीगर केवल वस्तुएं नहीं बनाते, वे हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं। उनके हाथों की मेहनत में देश की आत्मा बसती है ना?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमारे देश की बड़ा ही एक अच्छी पहचान है कि आपको हर गली में, हर जगह आपको एक हुनरमंद कारीगर मिल ही जाते हैं। तो आइए हम संकल्प लें, स्थानीय उत्पाद अपनाएं, कारीगरों का सम्मान करें और उनके हुनर को नई पहचान दिलाएं।
1: और इसी संदेश के साथ हमें दीजिए, यानी जया को दीजिए इजाजत
0: और आशीष को भी दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नए विषय के साथ मिलेंगे। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। गढ़वा मूड़ी सेमर राष्ट्रीय राजमार्ग पर महदैया पेट्रोल पंप के पास पिछली रात एक तेज रफ्तार बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इससे बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। गिरिडीह जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए SP डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आज जागरूकता रैली निकाली। SP ने बिना हेलमेट पहने और बिना सीट बेल्ट लगाए लोगों को गुलाब फूल देकर हेलमेट पहनने का आग्रह किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिमेश रंजन ने आज उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गुमला के पद पर योगदान किया। इधर खूंटी में नए उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन ने भी आज योगदान किया। गोड्डा में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कॉमनवेल्थ डे के 75वें संस्करण और कॉमनवेल्थ गेम्स थीम पर +2 उच्च विद्यालय से शहीद स्तंभ तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में हॉकी खिलाड़ी और खेल प्रेमी शामिल हुए। रांची के 36 केंद्रों पर आज UPSC की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा शाम 7:30 तक प्रभावी रहेगी। सभी केंद्रों में दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के कर्माटाड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड क्षेत्र में करीब 35 हाथियों का झुंड पिछली रात जाताखुटी पंचायत के दालूगोड़ा गाँव में घुस आया। हाथियों ने स्कूल को क्षतिग्रस्त किया और वहां रखे मध्याह्न भोजन का अनाज खा गए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य

0: खेती बारी सुनु या सब भाई बहन मन के झलेश्वरी बहन बटले जोहार और पायल दीदी और केहो जोहार
1: जोहार जोहार और कहो का हाल चाल है
0: सब नगदे नगद है दीदी रो रे बताओ
1: बहुत नगद देखते ही मौसम का हाल का
0: खान है गरम
1: हाल से बेहाल
0: हाल से बेहाल ते रोज से कथे ते गरम छटे लागल कि ना कहू घर से तो निकले के मन नहीं करे लेकिन नहीं निकलब तो कैसे रह से बैठा तक देखो
1: हाँ आज संगे संगे हमरे मन के अपन किसान भाई मन से भी तो मिले है
0: काम तो करे है सब कर से मिलजुल के रहे है करे है
1: देखो अगर हमरे मन किसान है
0: हाँ
1: हमरे मन अगर नींद निक सब तो कैसे खेती बाड़ी हुई
0: कैसे हुई
1: एखन देखो न बाजार में कते रंग रंग के तियन है
0: तियन तरकारी भरल है कहो न
1: हाँ हाँ
0: तो ई सब हमर मेहनते करतो है
1: हाँ आ संगे संगे हमार माटी कर भी है
0: हाँ नगद कहा थी दीदी तो भुलाइए जाती कि माटी के कैसे हमरे मन बढ़िया बना से
1: हाँ माटी कर जे भी गुण हाँ माइंड है गोबर है खाद है उखरे संगे संगे केचुआ खाद भी है
0: हाँ
1: तो केचुआ खाद तो बड़ा नगद हो बिना मेहनत कर
0: हाँ। जे भी घर में रहेला हाँ। कचरा के जे हमरे मन हिने हुने फेंक दिल तो वो कतवार के अगर हमरे मन एक ठन जमा करब
1: तो बल्ला नगद
0: हाँ
1: हाँ फूल फुलवारी में दो खेती बाड़ी में दो दोन डाले मने जहाँ भी तब के उपयोग करे है वहाँ हमरे मन कर सकेला और बल्ला ही बढ़िया है
0: और पालतू जानवर मना है हाल तो उकर
1: हाँ
0: गोबर कहू चाहे
1: हाँ
0: उकर पेशाब कहू सब तो महीने कर काम आवेल नहीं
1: हाँ दवाई कर माइंड कर
0: हाँ
1: सब
0: हाँ
1: आ देखो अगर हमरे मन मने अपन घर कर बनावल खाद से साग सब्जी उगा थी तो नगद होला
0: हाँ हमरे मन को नतियन तरकारी मन बना थी जे जो काम मन है सब के तो हिने हुने फेंक दिल तो हमरे मन के उके नहीं फेंके चाहिए एक जगह
1: नहीं
0: जमा करब
1: हाँ
0: तो माइंड तो बनबे करेला
1: सही बात है और कितना उपयोग भी आवेला
0: आवेला हाँ हाँ
1: तब हमरे मन और गोट करब तब का कहिला
0: का कहिल ढेर दिन भेटे ही तो गुठिया के मन तो करत है
1: तब एगो गीत सुन

0: जानकारी के करे है।
1: हाँ जानकारी मन हो करे चाहिए। देखो रिझ रंग कर संगे जानकारी हम हो गए तो बढ़िया है कहो तो।
0: सही बात है।
1: एगो किसान है दीदी
0: हाँ हाँ
1: राजकुमार महतो जे
0: हाँ
1: बताबे ड्रपी और मल्चिंग कर बारे में,
0: अच्छा
1: और उनकर से बातचीत कर रहे हैं अरविंद कुमार मिश्रा।
0: चल
2: कार्यक्रम सुनू या सब भाई बहन मन के हमार बटले बहुत बहुत जोहार। भाई बहन मन देखो हम एखन रांची से निकल के एदे लोधमा बटे आ जा ही और ये गांव का नाम कहे ना हाका जाम। तो भाई एखन जे हम खेत में आए ही नहीं, ये खेत बहुत बढ़िया है, मतलब बढ़िया सेटअप एक ठो किसान भाई कह रहे हैं अपन खेत में कि बागवानी भी है संगे संगे बीच बीच में ही खेती भी करत है। एखन गर्मी कर दिन है, गर्मा खेती इनकर खेत में लागल है और कुछ तैयारी हालत में भी है। तो चलो इनकर से हमरे मन भेंट करीला और जानीला इनकर खेती बाड़ी कर तौर तरीका के। भाई जोहार, नाम का होलक भैया रोड?
3: हमारा नाम होलक राजकुमार महतो, हम ग्राम हकाजांग से ही।
2: अच्छा, तो देखत ही बड़ा नौजवान किसान हीरो रे, पढ़ल लिखल ही कितना तक पढ़ाई लिखाई कर रही?
3: पढ़ाई लिखाई हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है।
2: बहुत बढ़िया राजकुमार भाई, एक छोटी चीज देखो कि कोई भी छुआ मन एखन पढ़ाई लिखाई कर जाता है नहीं, तो सबसे पहले उन कर ध्यान रहे ला कि कोनो नौकरी मिल जात लग और बढ़िया से कमातली और घर दूरा चलातली। रोड की कैसे ऐसा मिजाज आला कि भाई हम खेती करूँ?
3: बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही कहली, लेकिन अगर सब नौकरियां करवाए तो भाई किसान भी के बची और खेती बाड़ी भी के करी। अगर सब नौकरी लाइन में चल जावाए तो नौकरी वाला के भी खाना पीना के खिलाई, कहाँ से सब्जी मिली उके, ये भी एगो सोचे कर बात है। तो बात ऐसा है कि भाई सबके सब लाइन में बैठ जाना चाहिए और नौकरी भी करें लोग, नहीं तो कैसे चली देश दुनिया, चलो मिलाई जुलाई के सभी के चले के
2: खेतियों करे है, नौकरी
3: करे है। आप एक घर में मांग के चलू की 10 आदमी है तो भाई 10 का तो नौकरी नहीं होगी, बाकी जो है से खेती बाड़ी करत है।
2: एकदम बहुत बढ़िया
3: है।
2: तो कितना ठाव है रोड?
3: हमार 2 एकड़ आसपास में है।
2: 2 एकड़ में हाँ। सब्जी कर भी खेती के रही, बागवानी भी?
3: हाँ, सब्जी कर भी खेती लगा ही और बागवानी भी है।
2: देखो बहुत चर्चल रोड है, उकर में देखा थी कि रोड खेत एकदम पूरा हरियर है, का बरनी सन?
3: देखो एक भाई मेहनत तो हम रात दिन करेला और एक में ड्रिप का सिस्टम लगाए रही।
2: अच्छा,
3: ड्रिप का सिस्टम है तो भाई एक में थोड़ा सा पानी कर हम इनके मतलब कम पड़ेला खर्चा, बचत होला पानी कर। और देखो एक बट्टे फूल कोबी लगाए दही, एक बटे देखो बहुत सुंदर दिखते है एकदम पत्ता गोभी लगाए दही। और एखन बारी बाकी एरिया में प्लानिंग चला थे टमाटर वगैरह का ट्रिप बना।
2: बहुत बढ़िया, तो मल्चिंग विधि भी है?
3: हाँ,
2: मल्चिंग में डाल दी है नहीं?
3: हाँ।
2: तो इका से ड्रिप से जैसे पानी कर बचत हो जाते, तो मल्चिंग से रोड मन का फायदा देखिला?
3: देखो एक में फसल कर बहुत सुंदर उपजाव है, ठीक है ना। पहला बात है कि फसल मतलब जो भी फसल डालीला से बहुत सुंदर निकलेला, क्वालिटी अच्छा रहेला और दवाई बीरो कर एक में थोड़ा सा कम भी छिड़काव हुआ थे तो चलेला, क्योंकि भाई एक में देखिला कि एकदम फसल दुगुना उपजाव होला।
2: अच्छा,
3: जैसे अगर मिर्चा लग गेलक, टमाटर लग गेलक, तो ये सब मतलब ज्यादा मात्रा में फल फूल आ जाए एकदम।
2: चलो लिचका के देखिले रोड हम जे मल्चिंग कर ही चेकर में हम देखते कि अच्छा इकर में सबसे बड़ा फायदा है क्या है कि जे खर पतवार मन होएला।
3: हाँ,
2: से नहीं होएला नहीं?
3: हाँ, से नहीं होएला।
2: हाँ, और निकवन सब... में जे खर्चा पानी है सेकर से बचाए बचत।
3: हाँ,
2: होएला।
3: हाँ, हाँ, हाँ,
2: हाँ, तो बढ़िया है मल्चिंग कर दे। हाँ,
3: सेकर से बचत हो जाएला।
2: हाँ हाँ, और ये देखते फूल गोभी एखन तैयार हुआ थे?
3: हाँ, एखन तैयार हुआ थे,
2: फूल धैर नखे?
3: फूल धैर नखे, हल्का कहीं कहीं आ है तो उके बड़ बड़ हो जाएला तो उके निकला देवेला।
2: अच्छा,
3: निकलाते जाती थी कर में कुछ एखन फिर फसल डाला टमाटर मिर्चा।
2: ये सब हाइब्रिड है के?
3: हाँ,
2: तो लगभग कितना दिन में तैयार हो जाए फसल?
3: ये 3 महीना कर फसल है, 3 महीना में सभी समाप्त हो जाए कैट पेट के, और ये हार्डली 1 महीना कर ही कर कहानी है।
2: तो इकर में कितना मेहनत है, कैसी के लगाए खोए?
3: देखो मेहनत तो खैर बहुत ही है, पहले सबसे पहले अगर मल्चिंग करे है तो इकर में खाद डाले है, खाद डाल के दोनों बर से मिट्टी जमा करके एक नाली बनाए के ऊपर बाद में फिर जो प्लास्टिक आवे से डाले है, साथ में इकर में एक पाइप है अंदर में डाला जेकर द्वारा पानी ही टिपक सिंचाई का है ना, उके सही हिसाब से पानी गिरेला तो भाई उकरे से हम इकर फसल बढ़िया हो जाए एकदम उपजाऊ रहेला।
2: और इकर में कीटनाशक वगैरह कुछ?
3: हाँ, कीटनाशक तो थोड़ा देवे के पड़ेला, उकर बिना तो फिर खेती असंभव है, लेकिन हल्का मात्रा में चलेला।
2: और खाद रोड़ी कैसे यूज करेला? मतलब
3: एकदम हम एकदम प्योर खाद यूज करेला, ये राउर गोबर खाद है। और देखो होंदे एकदम जे के कहे ना राउर मशरूम उगाए ना, मशरूम वाला है एकदम।
2: अच्छा,
3: तो ज्यादा हम इन
2: जैविक वाला खाद यूज,
3: जैविक खाद यूज करेला, ज्यादा रासायनिक कर ये नहीं करेला।
2: तो कितना फर्क देखिला जैविक खाद खाद अगर यूज करत ही और फिर रासायनिक खाद के इस्तेमाल करत ही तो दुयो में कितना अंतर उड़े देखी
3: ला रासायनिक खाद है के जे रावरे कही लगा है ना ने कि एखन डॉक्टर माने एगो इंजेक्शन लगा है दले तो भाई तुरंत ले काम कर गेलक तो उसने रासायनिक है कि भाई तुरंत में तो काम कर ले लेकिन वो खेत के बिगड़ाई भी देवेला बंजर कर देवेला अरे का है कि भाई इकर में है कि लंबा टाइम तक अगर बढ़िया एकर में खाद उद अगर ई लग जाए तो मिट्टी के खराब नहीं करेला बल्कि मिट्टी के अपन अंदर में आकर्षित करके एकदम अपन जैसा रूप दे देवेला और अच्छा पैदावार होवेला
2: ठीक है बाहर से मंगाही खाद
3: हाँ इके तो हम इन मंगवा ही हिंदे राउर हिंदे घुनसुली घासी बारी बटे यहाँ मशरूम फैक्ट्री है नी
2: अच्छा अच्छा
3: तो हमें से मंगवाई ला
2: ओहो ठीक है से फसल मने बढ़िया हो
3: बहुत सुंदर हो रहा फसल
2: अच्छा खेती बारी करके रोरे सालाना कितना कमाई लो इला राजकुमार भाई
3: कम से कम 5 लाख 6 लाख रुपया आ जाए ला
2: वाह मतलब बचत हो
3: हाँ, बचत हो
2: बहुत बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया और जैसे कि अगर हम बात करूँ फूलगोभी तो बता दिली रोरे पत्ता गोभी में कैसे तैयारी करे खोल मतलब उकर ले कुछ खास तैयारी होला कि फूलगोभी और पत्ता गोभी एक टाइप कर है फसल
3: देखो लगभग एक टाइप कर है इकर में कहा है कि सबसे पहले एक गाछी होवेला जो कि मिश्रा कहे है ना पहले गाछी करे के पड़ेला उकर बाद में फिर का छोटा छोटा गड्ढा तैयार करके उकर में खाद डाले के पड़ेला खाद डालल बाद में फिर के मतलब जमीन में लगाए देवे पड़ेला उकर बाद का उपाय है कि भाई वो जग गेलक उकर बाद में धीरे धीरे कोड़ा उड़ा करते अपन इकर में खाद वगैरह डालते अगर ऐसा ज्यादा कमजोर है तो यूरिया हल्का चलेला नहीं तो फिर कोई ऐसा जरूरत नहीं है
2: अच्छा
3: ठीक है ओकर बाद में फिर देखो फसल तो अभी ठीक है
2: एकदम तैयार है फसल एकदम और देखते एकदम बंधा को भी बढ़िया एकदम है ये हाइब्रिड वाला है के
3: हाँ ये हाइब्रिड है के लेकिन वो बड़ साइज करने है के मीडियम साइज वाला
2: खाए में ठीक लगे
3: एकदम बहुत सुंदर इकर में ज्यादा हमें रासायनिक कर यूज नहीं किए
2: तो रासायनिक अगर नहीं रहलक तो फिर तो खाए में बढ़िया लागबे करी
3: हाँ
2: एकदम सही कहा थी भाई और फसल की अगर बढ़िया लेना है तो जैविक खेती हमारे मन के करना जरूरी है एक बटे फिर हम देखते कि छोटे छोटे खीरा मन भी है क्या
3: बहुत सुंदर है बीच बीच में खीरा डाल दे खीरा भी देखो फल आ जाए एकदम
2: बढ़िया है तो मतलब गर्मा खेती कर ले हम के लगे लगी फायदा है फसल में अगर बढ़िया हो गेलक तो आमदनी भी बढ़िया
3: है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: है नहीं एकदम सही है
3: देखो हिंदे ओल के डाल दे
2: अच्छा ये ओल है के
3: हां एकर ओल लागल है
2: हां ती भी हाइब्रिड है के
3: हाँ
2: मद्रासी वो की का है ना
3: मद्रासी का है ना थोड़ा सा देखो मुनाफा हो जाएगा ज्यादा सेल भाई आदमी ध्यान देवे ना कि
2: तो इकी कितना दिन पहले रोई पर
3: ये बस 10 दिन पहले लगल है
2: तो ये ओल तो लंबा समय खींचेला
3: ये कम से कम के 4 महीना 5 मंथ चाहिए ही जाए
2: हाँ हाँ और एक एक ठो ओल कितना कितना हो जाएगा
3: कम से कम 4 kg 5 kg एक ठो
2: तो देहाती ओल से तो हमके लागे ले डबल होए
3: हां डबल होए
2: हां ओके देहाती ओल तो 1 किलो ज्यादा से ज्यादा होए
3: ज्यादा से ज्यादा होए
2: हां और डिमांड किसन है ओल का
3: बहुत बढ़िया डिमांड है ये तो हर सीजन में भी चलेला बहुत बढ़िया डिमांड है
2: हां तो जैसे कि रोरे बता ली कि रोरे पढ़ाई लिखाई कर ली और फिर रोर दिमाग आला कि भाई खेती बाड़ी करे के चाहिए देश दुनिया के आखिर किसाने मन चलाए ना तो रोरे आपन जे आवे वाला पीढ़ी है शादी ब्याह रोरे कही थी कि
3: नहीं
2: तो उमन के खेती बाड़ी से एक विचार है कि उमन के पढ़ाई का क्षेत्र में नौकरी का क्षेत्र
3: देखो एखन तो सबसे पहले आदमी सोचा है ना कि पहला प्राथमिकता रहेला कि भाई बाल बच्चा पढ़े तो किसान लाइन में नहीं जाए लेकिन आज के डेट में किसान लाइन में भी ऐसा कोई बात ना के बढ़िया सुविधा है और सब मिलजुल के कमाले सब लखे बढ़िया से चलेला लेकिन एखन के डेट में कहा है कि सभी चाहे ना कि अपन बच्चा मने नौकरी करते लें तो अच्छा है तो पहला दे तो भाई हम इन्हों पढ़ात लिखाती तो सोची ला कि कम से कम लास्ट ऑप्शन तो है कि
2: किसान है
3: अपन खेत है लेकिन ऊपर से पहले चाहबे कि भाई तैयारी कर कम से कम नहीं तो बिजनेस उजनेस भी कर ले पढ़ल लिखल रही तो हर काम कर सके
2: एकदम एकदम
3: नौकरी करना ही जरूरी नखे अपन भी कोई एगो पर्सनल बिजनेस अपनाए सके ना
2: एकदम बहुत बढ़िया रोर विचार है और पढ़ाई लिखाई तो खैर हर क्षेत्र लिए बहुत जरूरी है चाहे खेती बाड़ी हो कि नौकरी चाकरी हो हर क्षेत्र लिए बहुत जरूरी है तो राजकुमार भाई बहुत बढ़िया लागलक रोर से बतिया के और देख के बहुत अच्छा लागत है कि एक तो नौजवान कर सोच इतना अच्छा है कि इतना बढ़िया जे अपन जे खेत है से रोड़े हरियरी में बदल दे हम आसरा करेला कि हमारे मन कर बातचीत के जे भी किसान भाई बहन मन सुनत है उमन के जरूर से जरूर फायदा होवे और रोड से मन प्रेरणा लेबे रोड अपन समय के दिली राजकुमार भाई कर ले बहुत बहुत धन्यवाद लगे तब जोहार
3: जोहार जोहार से
0: इखान हमरे मन एगो नमा के सान से बतिया रही राजकुमार महतो का बहन
1: हाँ दीदी बहुत बढ़िया जानकारी दे लें हाँ पढ़ लिख के खेती बाड़ी कर ले कते फायदा है
0: हाँ कते अच्छा आमदनी
1: कितना कमाई सकेल
0: सही बात है, ऐसे जल्दी हमरे मन के खेती के बढ़ावा देवे के है।
1: हाँ हाँ,
0: तब और का है जानकारी?
1: और जानकारी करे के है? अच्छा चलो, तो और एक जानकारी कर ले ला। तो मोट अनाज और प्रसंस्करण कर बारे में और कर उपयोगी मशीन कर बारे में बता रहे हैं डॉक्टर निशा तिवारी और उनकर से बातचीत कर रहे हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
4: किसान साथियों नमस्कार, आज पूरा विश्व मोटे अनाज यानी श्री अन्न की ताकत को पहचान रहा है। रागी, बाजरा, कोदो और कुटकी जैसे अनाज न केवल हमारी सेहत के लिए वरदान हैं, बल्कि खेती के लिहाज से भी ये कम पानी और कम लागत में तैयार हो जाते हैं। लेकिन अक्सर हमारे किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है इनका प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग। कैसे इन अनाजों को साफ किया जाए, इनका छिलका उतारा जाए और इन्हें बाजार के लायक बनाया जाए, तो इसी विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर निशा तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र गुमला। डॉक्टर निशा, आपको नमस्कार है।
5: जी नमस्कार।
4: आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि मोटे अनाज क्या है?
5: मोटे अनाज सबसे पुराने अनाज हैं सर, जो छोटे बीज वाले घास कुल के पौधों के समूह में से हैं। इनकी खेती प्रतिकूल मौसम में भी की जा सकती है, जिसमें कम उर्वरक एवं कम कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। मोटे अनाज को उनके आकार के आधार पर प्रमुख मोटे अनाज एवं लघु मोटे अनाज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ को प्रमुख मोटे अनाज, जबकि काकुन, चीनी, कोदो, सांवा, कुटकी को लघु मोटे अनाज के रूप वर्गीकृत किया गया है सर।
4: जी, तो भारत में मोटे अनाज की स्थिति क्या है?
5: भारत में मोटे अनाज लगभग 13.80 मिलियन हेक्टेयर भूमि में 17.30 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के साथ में उगाए जाते हैं, जो एशिया के उत्पादन में 80% और विश्व उत्पादन में 20% और देश के खाद्यान्न उत्पादन में 10% का योगदान देता है।
4: मोटे अनाज के पोषण संबंधी क्या लाभ है?
5: मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर, सूक्ष्म पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ मोटे अनाज में लगभग 7-12% प्रोटीन, 2-5% वसा, 65-75% कार्बोहाइड्रेट, 15-20% फाइबर होते हैं।
4: इनमें स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या लाभ है मोटे अनाज?
5: मोटा अनाज लस युक्त मुक्त होता है, मतलब उसमें ग्लूटेन नहीं होता है और नॉन एलर्जिक होता है। इसके खाने से जल्दी से कोई एलर्जी नहीं होती है। इसमें कई पोषण, न्यूट्रासेरिकल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला गुण भी होते हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि मोटे अनाज हृदय रोग के जोखिम को कम करता है, मधुमेह से बचाता है, पाचन तंत्र में सुधार करता है, कैंसर के खतरे को कम करता है, शरीर को डिटॉक्सिफाइड करता है, श्वसन स्वास्थ्य में प्रतिरक्षा बढ़ाता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, मांसपेशियों तथा तंत्रिका तंत्र में सुधार करता है और सुरक्षात्मक होता है सर।
4: जी, तो अब ये बताएं कि जैसे वर्तमान समय में मिलेट्स यानी जैसे रागी है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, कुटकी है, सांवा है, ये सब जो श्री अन्न आते हैं, इनकी पहचान इसी रूप में होती है। तो ये अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, है ना, तथा किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इनके बेहतर उपयोग एवं मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि प्रसंस्करण है क्या?
5: भारत में 9 प्रकार के मिलेट उगाए जाते हैं। ज्वार, बाजरा, फिंगर मिलेट जैसा कि रागी या फिर उसको मड़ुआ भी कह सकते हैं, के अंतर्गत आते हैं। ये नग्न मोटे अनाज होते हैं, जबकि बाकी मिलेट जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट है, लिटिल मिलेट है, बर्नयार्ड बाजरा है, प्रोसो मिलेट है, कोदो है, ब्राउन टॉप मिलेट भूसी के अंतर्गत आते हैं और इन अनाजों को खपत के लिए छीलने की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद अनाज को साफ करना, छिलका हटाना, पीसना, पैकिंग करना तथा विभिन्न खाद्य उत्पाद बनाना ही प्रसंस्करण कहलाता है।
4: तो ये लघु मिलेट प्रसंस्करण में चुनौतियां कौन कौन से हैं?
5: मिलेट के दानों में रेत के कण, छोटे पत्थर, मिट्टी के गोले और अन्य अक्रिय अशुद्धियां की उपस्थिति प्रसंस्करण की अवधि को बढ़ाती है, मशीनों के जीवन को कम करती है, घटिया गुणवत्ता वाले मिलेट उत्पाद से बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है। दानों में कीट के प्रकोप से मिलेट की लाइफ कम हो जाती है। अनाज में अधिक नमी की उपस्थिति से उन्हें प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है और मिलेट की रिकवरी नीचे चली जाती है। एक प्राथमिक मिलेट प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए सफाई

0: डंडों तिनकों आदि से अलग करता है।
1: जी जी।
0: दूसरा है सर डिस्टोनर मशीन है। यह मशीन अनाज में मिले छोटे पत्थर एवं भारी कंकड़ों को अलग करती है। डिस्टोनर निरंतर कंपन और वायु प्रभार के तहत पृथक्करण के लिए विभिन्न अंशों अशुद्धियों अनाज और मिलेट और टूटी हुई गुठली जैसे छिलके वाले अंशों के बीच घनत्व में अंतर का उपयोग करता है जिससे कि उसकी सफाई हो जाती है। मिलेट डीहलर या डिकॉटिकेटर भी कहते हैं। मिलेट डीहलर जो है कोदो कुटकी और बाजरा जैसे मिलेट का बाहरी कठोर छिलका हटाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। मुख्यतः भूसी को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है
1: जी।
0: मिलेट पॉलिशर है। डीहलिंग के बाद अनाज को चमकदार आकर्षक बनाने के लिए पॉलिशर मशीन का भी उपयोग किया जाता है। ड्रायर मशीन है। अगर अनाज में नमी पाई जाती है तो उसे ड्रायर मशीन के द्वारा सुखाकर उसका भंडारण क्षमता को बढ़ाता है। फिर द्वितीय प्रसंस्करण मशीनें क्या क्या होती हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। द्वितीय प्रसंस्करण में फ्लोर मिल या आटा चक्की होती है जिसको पल्वराइजर के भी नाम देते हैं, जिसमें रागी बाजरा एवं ज्वार का पौष्टिक आटा इसी से तैयार किया जाता है। मतलब मोटे अनाज का आटा तैयार करने के लिए हम आटा चक्की पल्वराइजर के नाम से मशीन का नाम है उसमें किया जाता है। फिर उसे पल्वराइजर मशीन मतलब जो मोटे अनाज है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उनका पाउडर तैयार करता है। रोस्टर मशीन है। मिलेट को भूनने के लिए रोस्टर मशीन का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि लार्ज स्केल में अगर मिलेट का कुछ उत्पाद तैयार करना है, लड्डू ही तैयार करना है, तो हाथ से रोस्टिंग करने से मशीन में डाल देंगे तो अच्छे से वो उसकी रोस्टिंग हो जाएगी, मतलब उसकी भुनाई हो जाएगी। फिर है एक्सट्रूडर मशीन। जैसे बाजार में आजकल स्नैक्स नूडल्स पास्ता रेडी टू ईट उत्पाद बनाए जाते हैं तो ये इस मशीन से आसानी से बनाए जा सकते हैं। मिक्सर एवं ब्लेंडर मशीन है। विभिन्न प्रकार के जैसे आटे को मिलाना है, मल्टीग्रेन आटा तैयार करना है तो उसके हेतु हम मिक्सर एवं ब्लेंडर मशीन का उपयोग करते हैं। तृतीय प्रसंस्करण मशीनें में पैकेजिंग मशीन का नाम आता है। तृतीय प्रसंस्करण मशीनें जैसे कि पैकेजिंग संरक्षण विपणन में इसका उपयोग किया जाता है और इनमें से है पैकेजिंग मशीन। आटा कुकीज नमकीन एवं अन्य उत्पादों को आकर्षक पैकिंग बनाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। फिर सीलिंग मशीन है। पैकेट को एयर टाइट बंद करने के लिए सीलिंग मशीन आवश्यक है। इससे उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अगर हम सही से सीलिंग और पैकिंग नहीं करते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट होंगे उत्पाद होंगे वो खराब होने के चांसेस होते हैं, तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है
1: जी।
0: फिर लेबलिंग मशीन है। उत्पाद पर ब्रांड नाम निर्माण तिथि एवं पोषण जानकारी अंकित करने के लिए लेबलिंग मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम पैकेजिंग मशीन है। उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ाने हेतु वैक्यूम पैकिंग की जाती है। बेकरी एवं फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स भी आजकल आ गए हैं, जैसे ओवन कई प्रकार के आ गए हैं, डीजल ओवन है, गैस ओवन है। तो आप अगर बेकरी के बात करते हैं तो उसके लिए हमें एक डीजल ओवन की, अगर बड़ा लार्ज स्केल पे आप यूनिट खोल रहे हैं तो डीजल ओवन की आवश्यकता होती है या फिर गैस ओवन की, जो कि 18 ट्रे का एक ओवन होता है, एक बार में 18 ट्रे बिस्किट आप तैयार कर सकते हैं। तो मिलेट बिस्किट है, कुकीज है, केक है, रेडी टू कुक उत्पाद बनाने हेतु विभिन्न मशीनों का उपयोग किया जाता है जिसमें से एक बेकरी एवं फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स भी हैं
1: जी। तो किसान भाइयों, आज निशा तिवारी जी ने हमें बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि कैसे हम आधुनिक मशीनों का उपयोग करके मोटे अनाज की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर हम केवल अनाज न बेचकर उसे प्रोसेसिंग करके आटा सूजी या अन्य उत्पाद बनाकर बेचें तो निश्चित रूप से हमारी आमदनी दोगुनी हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निशा तिवारी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को मोटे अनाज की फूड प्रोसेसिंग मशीनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी। नमस्कार, धन्यवाद सर।
2: तो एखन हमरे मन जानकारी करत रही मोट अनाज कर प्रसंस्करण और उकर उपयोगी मशीन कर बारे में जानकारी देवत रहे डॉक्टर निशा तिवारी और उनकर से बातचीत कर रहे कृष्ण जीवन पौराणिक। तो दीदी, अब इकरे संगे तो खेती बाड़ी कर बेरासी रात है।
3: अब हमरे मन और करब हमारी दुनिया कर।
2: हाँ हाँ,
3: तब बोलू घर का साफ सफाई मन हो लाग है, काले कि एखन 8 दिन पहले तो ऐसा आंधी तूफान धूरा गर्दा से घर भर गल का।
2: हाँ हाँ, ना कहूँ कि आंधी तूफान आवेल से तो जितना के कतवार तो कह एकदम कुदाई दे
3: कतनो साफ करले एकदम आंगना हो बारी हो खेत सब बटे धूरा गर्दा पते पतुर गिरल है।
2: हाँ, ये तो है दीदी, हमरे मन के साफ सफाई तो इन ही कि अपन गतरे कर फिर देखे सगरे साफ सफाई तो करे है। घर में जैसा करी ला वही लेखे बाहरे हो करे चाहिए।
3: एकदम एकदम, और ऐसा नहीं

0: कि कहीं घूमे फिरे गेली तो हुआ खा के कोनो फेंक देली बिक देली, ऐसा भी नहीं होए चाहिए।
1: हाँ
0: हमरे मन के हर जगह देखो सफाई में ही सब कुछ है।
1: हाँ ये साफ सफाई जो है तो ये और नागरिक जिम्मेदारी एगो सिक्का कर दुई गो पहलू है दीदी,
0: हाँ हाँ
1: जे कि देखो व्यक्तिगत स्वच्छता से ले के सार्वजनिक ठाव कर साफ रखे सब नागरिक कर नैतिक कर्तव्य है। तो हमरे मन के साफ सफाई करे है और साफ सफाई से रहे है।
0: एकदम। देखो अगर हमरे मन सफाई से रहब तो हमरे मन बड़ बीमारी भी नहीं होगी।
1: हाँ
0: आ देखो संगे संगे एखन बहुत धूप के बेरा है तो हमरे मन के अपन मवेशी के भी सफाई में रखे के, अच्छा से पानी परुआ देवे के, उनके भी नहा के धोए के।
1: हाँ और कहिल के प्लास्टिक कर उपयोग नहीं हमरे मन के काम करे के चाहिए
0: एकदम एकदम नहीं
1: कहे।
0: करे के
1: हाँ
0: चाहिए।
1: नहीं करे के चाहिए कहे कि
0: का
1: उपाय
0: लेके
1: है नहीं।
0: देखो हमरे हमरे मन जब अपन आजा से बैठी ला, बड़ी मन से बैठी ला, तो
1: हाँ
0: उ मन के समय में प्लास्टिक नहीं रहे तो काम तो चलत रहे।
1: चलबे करत रहे वो तो रही चाहे नहीं रही काम तो
0: हाँ
1: चलबे करी।
0: सही बात है। तो हमरे मन के भी घर से निकले के पहले एगो थैला के धरे के,
1: हाँ
0: तबे हमरे मन के जाए के।
1: हाँ हो और देखो हमरे मन जे गंदगी फैलेला जैसे कि पानी ठाव मने हो जैसे के फेंक दिल तो उसन्नी फेंके के चाहिए। एखन पानी कर तो गर्मी में कतई
0: सही
1: जरूरी
0: बात
1: है।
0: है
1: तो
0: एकदम।
1: देखो तालाब कहो कि नदी कहो कि कुआं कहो कोनवे ले जैसे के फेंक देला तो उसन नहीं करे के चाहिए ताकि सब साफा रही।
0: हाँ ये हमें मन की जिम्मेदारी बनेला कि हमारे मन के सब जगह सफाई करके रखे के,
1: हाँ
0: खाली नहीं कि ये नहीं करला को नहीं करला इके नहीं
1: नहीं
0: करेगा।
1: कहे के चाहिए।
0: हाँ
1: हाँ तो खुद नियम कर पालन करे के चाहिए और दूसरों के प्रेरित करे के
0: हाँ
1: चाहिए।
0: एकदम
1: और कोनो कहत रही का
0: एकदम गोठियाब और कहब अब रफ के हम देखे लाएगी।
1: हाँ
0: हाँ
1: अच्छा और गुठिया तो तनिक रिच रंग मन हो चाहिए।
0: एकदम एकदम होय चाहिए।
1: चलो तब एगो नागपुरी लोकगीत सुनीला जेके गई है केतकी देवी और संगीवन।

0: भाकपा माओवादी के भाई और बहनों, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है। अतः आपसे आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौट आइए। भयमुक्त जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। साथियों, समय रहते विचार कीजिए और मुख्यधारा में लौट आइए। साथियों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जल, जंगल, जमीन की रक्षा मात्र हिंसा से ही हो सकती है? इतने सालों की प्रयास के बाद क्या हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित हो पाया? आज सैकड़ों पूर्व माओवादी साथी हिंसा को पीछे छोड़कर समाज के बीच एक अत्यंत गरिमापूर्ण और कुशल जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा और गोपनीयता की 100% गारंटी देता है। हिंसा और कठिनाइयों का जीवन छोड़े और अपनों के पास लौट आए। मुख्यधारा में आने के उपरांत आपको पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको जेल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आपकी सहायता की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के लिए भी आपको उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास हेतु कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9863475217। नंबर एक बार फिर नोट करें 9863475217।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: तब चलो वो खोटा में हमरे मन वार्ता करेला ग्रामीण विकास हेतु सरकारी योजना मन का है के बताते हैं निरंजन कुमार।
3: ग्रामीण विकास कर पैमाना कर संबंध एगो जटिल विषय लागे। भारत एगो गांवों कर देश लागे, जकर में लगभग 70% लोग गांव में निवास करहत। ग्रामीण विकास के दरकिनार करके देश कर विकास की सपना पूरा नाय हेवे पार्तक। गांव में भारतीय सभ्यता और संस्कृति कर जन्म स्थल पावल जाहे। ग्रामीण विकास के एगो छोट रूप मानले अपन गोड़ में कुल्हाड़ी मारल नियर बुझा है। काते गांव, गांव के दरकिनार करके विकसित देश नाय बनवल जाय पारा है। ग्राम विकास कर सबसे पहला सीढ़ी हके, जेकर खातिर एकरा बचाए के राखे पड़ा है। दोसर नियर कहब तो विकास में पुरखा कर आत्मा के निवास मिला है। ग्रामीण विकास के एगो सूत्र में बांध के नाय राखल जाए पारा है। काहे कि भारत विविधता कर देश हके और गांव अपन आचरा में कैगो विविधता के सोमेट के राखले है। ग्रामीण विकास खातिर सकारात्मक रवैया अपनावे चाही। सरकार एगो योजना चला के ग्रामीण विकास में आत्मविश्वास राख के काम करे चाह है। ग्रामीण विकास के योजना के मुख्य रूप से दूगो में भाग में बांट के देखल जाहे, सरकारी योजना और गैर सरकारी योजना। सरकारी योजना में वैसन सब योजना के शामिल करल जा है जकर देख रेख सरकारी संस्था कर माध्यम से करल जा है। एकर हिसाब पत्र सरकारी कार्यालय में रखल जा है और एकर खर्च पूरा सरकार उठावे काम करा है। सरकारी योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दुयो कर योजना शामिल करल जा है। गैर सरकारी योजना में ऐसन योजना के मसावल जाहे जकर देख रेख एनजीओ कर माध्यम से करल जाहे। गैर सरकारी योजना में अप्रत्यक्ष रूप से सरकार कर नियंत्रण पावल जाहे। ग्रामीण विकास योजनाओं में सरकारी संस्थान आर एनजीओ दुयो कर महत्वपूर्ण स्थान पावल जाहे। दुयो एक दूसरे कर पूरक है के कोई एगो भाग के अलग करल बादे विकास कर सपना नाय देखल जाय पारतक। ग्रामीण विकास कर सरकारी योजना सरकार द्वारा कई गो चलावल गेल है। एकर में जे मुख्य रूप से योजना ग्राम विकास के चलते खरा उतरल है एकर में शामिल कई गो योजना तकर नाम ऐसन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, आम आदमी बीमा योजना, ट्राइसम योजना, कुटीर ज्योति कार्यक्रम योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण विकास के सरकारी योजना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर महत्वपूर्ण स्थान है। यह योजना सन 2005 ईस्वी में शुरू करल गेल रहे। एकर में एक साल में 100 दिन रोजगार कर गारंटी देल जाहे। एकर में महिला और पुरुष कर अनुपात 50-50% राखल गेल है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कर ग्रामीण विकास में विशेष महत्व पावल जाहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक योजना कर शुरुआत करल गेल है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू करल गेल रहे। एकर तहत एक सांसद तीन गांव के गोद लिए निर्णय करल गेल है। एकर से गांव कर संपूर्ण विकास भई सके है। गांव के विकास के मूलभूत सुविधा उपलब्ध करावे एकर में विचार करल गेल है। अंत्योदय अन्न योजना ग्रामीण विकास के सरकारी योजना में महत्वपूर्ण स्थान पावल जा है। एकर शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में करल गेल रहे। योजना में बीपीएल परिवार के 2 करोड़ परिवारों के रियायती दर पर खाद्यान्न दिए निर्णय लेल गेल रहे। अंत्योदय योजना से ग्रामीण असमानता और भूखमरी जैसन कोर बीमारी से निजात पावे विचार बनवल गेल रहे। ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कर महत्वपूर्ण स्थान है। इस योजना कर शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में करल गेल रहे। इस योजना कर संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार द्वारा करल जा है। इस योजना कर संबंध वैसन सोब गांव जकर आबादी 500 से अधिक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू हुए है। 500 से अधिक आबादी वाले गांव में सड़क मार्ग से जोड़ल जा है। योजना कर क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय से करल जा है। ग्रामीण विकास में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कर शुरुआत 12 अप्रैल 2005 में करल गेल रहे। यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से शुरू करल गेल है। एकर उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बीमारी से निजात पावे खातिर करल गेल है। आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभावा है। यह योजना 2 अक्टूबर 2007 में शुरू कर गेल रहे। योजना के तहत 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच बीमा करल जाए। यह ग्रामीण परिवारों के लिए एगो सामाजिक सुरक्षा योजना लागे। ट्राइसम योजना रोजगार खातिर स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण दिल जाए। यह योजना 15 अगस्त 1979 ईस्वी में करल गेल है। एकर मुख्य लक्ष्य 18 से 35 वर्ष के गरीबी रेखा से नीचे कर युवाओं के तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण दिल जाए। एकर से रोजगार कर अवसर बढ़े है और रोजगार में गांव के वृद्धि हुए। कुटीर ज्योति कार्यक्रम ग्रामीण विकास में विशेष महत्व पावल जा है। यह कार्यक्रम सन 1988-89 में शुरू करल गेल रहे। एकर मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर युवाओं में जीवन स्तर सुधार के राखे खातिर करल गेल रहे। जो कुटीर ज्योति कार्यक्रम से जनजातीय क्षेत्रों में विकास कर ज्योति देखल जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास की सरकारी योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का विशेष महत्व है। यह योजना 2011 ईस्वी में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कर पुनर्गठन करके बनवन गेल है। एकर तहत सरकार 7% ब्याज दर में 3 लाख रुपया ऋण कर व्यवस्था करल रहे। सही समय में भुगतान कर ले ब्याज दर घट के 4% है जाए। राष्ट्रीय ग्राम

0: आजीविका मिशन से ग्राम कर विकास में एगो सकारात्मक पहलू मिलल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश कर किसान भाइयों कर लाभकारी गुणकारी और हितकारी योजना लागे। एकर शुरुआत केंद्र सरकार के कैबिनेट 13 जनवरी 2016 में मजदूरी देल रहे।
1: तो एखन हमरे मन जानकारी करत रही खोरठा में गांव कर विकास हेतु सरकारी योजना उनकर बारे में बतात रहे निरंजन कुमार। तो पायल दीदी
2: हाँ
1: गुठिया कहत रही लेकिन बेरा तो कहत है उतरे
2: तो सही बात
1: जाते
2: है।
1: जाते बताई दो अथी कि कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल।
2: तब चलो फिर भेंदा जोहार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री,
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हो गया इंतजाम।
8: किसका?
7: गुड्डी की फीस का।
8: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
9: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
11: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
10: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
11: तो फिर सही नंबर?
10: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
11: आपने तो बचा लिया दीदी।
10: काम से नहीं।
9: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
12: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
13: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कल से 11 जून तक राज्य में विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर करेंगे विभागवार समीक्षा। विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने धर्म और संस्कृति मुद्दे पर कांग्रेस को दिया जवाब, कहा सरना सनातन और हिंदू एक ही संस्कृति और परंपरा का हिस्सा। CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में जारी की नोटिस, कहा विद्यार्थियों की अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी। राज्य भर में जारी भीषण गर्मी के प्रकोप से आम जनजीवन प्रभावित, गढ़वा पलामू और चतरा में लू का अलर्ट। और रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे दिन कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर कल से 11 जून तक विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
14: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास कार्यों को गति देने के लिए कल से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। अलग अलग दिनों में होने वाली बैठकों के लिए अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र जारी किया है। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों के सचिवों को निर्धारित तिथि पर अपनी पूरी तैयारी के साथ उपस्थित होने को कहा है। माना जा रहा है कि बैठकों के जरिए सरकार सभी विभागों की जवाबदेही तय करेगी और जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। पहले दिन जल संसाधन और पेयजल विभाग के साथ वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
13: विपक्षी दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने धर्म और संस्कृति मुद्दे पर कांग्रेस को जवाब देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रांची में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरना सनातन और हिंदू एक ही संस्कृति परंपरा के हिस्से हैं, इसलिए समाज को बांटने की राजनीति बंद होनी चाहिए।
15: चूंकि हर कोई जानता है सरना सनातन कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार से समाज में विभेद पैदा करते हैं। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वास्तव में सरना समाज की हितेशी है तो आप याद करिए, भारत की पार्लियामेंट ने 1996 में पेशा एक्ट लागू किया। अभी उन्होंने नियमावली बनाया, उस नियमावली में कानून में क्या है मूल, जब उस कानून को देखेंगे, धार्मिक जो प्रथा है परंपरा को मानने वाले उसको ही उन्होंने हटा दिया है।
13: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिमेश रंजन ने आज उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद गुमला के पद पर योगदान किया। उन्होंने जिले के संपूर्ण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इधर खूंटी में मोहम्मद जावेद हुसैन ने

0: उपायुक्त के रूप में योगदान किया। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। उधर देवघर में सौरभ कुमार भुवानिया नए उपायुक्त होंगे। हजारीबाग के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय दो दिवसीय प्रशिक्षण अभियान का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद समेत पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण की शुरुआत की। मौके पर भाजपा के प्रदेश मंत्री अमरदीप यादव ने कहा कि जनसंघ से शुरू हुई यह यात्रा त्याग और संघर्षों की गाथा है।
1: भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर के चलती है और अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करती है कि हम कैसे अपने देश के लिए काम करें और कैसे सब हम लोग को जो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सिद्धांत है उसमें कैसे चल के हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, उसी के लिए आज 12 विषयों पर हम लोग का चर्चा होना है।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। यह समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्वांटम AI नाम की एक निवेश योजना को बढ़ावा दे रही हैं, जिसमें नागरिकों को 22,000 रुपये के शुरुआती निवेश के बदले प्रति महीने 3,00,000 रुपये की आमदनी का वादा किया गया है। सरकार ने कहा है कि यह दावा पूरी तरह से झूठा है और वायरल वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तैयार किया गया है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि यह सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने या एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने आज जिले के नारायणपुर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपराध पंजियों का संधारण, क्षेत्र के फरार चल रहे अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, मामलों का त्वरित निष्पादन सहित विभिन्न समस्याओं का अवलोकन कर आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिए।
2: निरीक्षण पुलिस अधीक्षक के द्वारा वर्ष में एक बार किए जाने का प्रोग्राम, मुख्य रूप से इसमें थाने के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको देखा जाता है। इसके अलावा जो वर्तमान समस्या है या अपराध कर्मी है उनके बारे में थाना के अफसर से क्या कार्रवाई हो रही है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो नहीं हो रही है, उस संबंध में एक निरीक्षण होता है।
0: दुमका जिले में पर्यावरण संकट और लगातार घटते वन क्षेत्र को देखते हुए काठीकुंड प्रखंड की बीछी पहाड़ी पंचायत में वन विभाग की ओर से जंगल बचाओ अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान निझौर गांव की किशोरियों ने पेड़ों पर राखी बांधते हुए संकल्प लिया कि वे जंगल और पेड़ों की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेंगी। कार्यक्रम का नेतृत्व लोक कल्याण सेवा केंद्र ने किया। बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा बाबा नगरी देवघर पहुंचे। बाबा मंदिर में उन्होंने पूजा की और राज्यवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। धनबाद के झरिया में 12 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने डिगवाडी बिजली स्टेशन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर झरिया विधायक रागिनी सिंह

0: मौके पर पहुंची और विभागीय अधिकारियों को जल्द बिजली बहाल करने का निर्देश दिया। राज्य में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 49.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने 25 और 26 मई को गढ़वा, पलामू और चतरा जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है तथा लोगों से सतर्क रहने और धूप से बचने की अपील की है। रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित हो रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आज तीसरा दिन था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेली जा रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। विभिन्न ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में कई नए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई, जबकि अनुभवी एथलीटों ने भी दमदार प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाई। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में हरियाणा की रवीना ने स्वर्ण पदक जीतते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क भी हासिल किया। महिला 100 मीटर हर्डल्स और पुरुष 110 मीटर हर्डल्स स्पर्धा में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसमें कई धावकों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पुरुष 110 मीटर हर्डल्स में तेजस अशोक शिरसे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं महिला और पुरुष 800 मीटर दौड़ की हीट्स में भी खिलाड़ियों ने प्रभावशाली प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में भाग ले रहे कई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने में जुटे हैं। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन को राज्य के लिए गौरव की बात बताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री कल से 11 जून तक राज्य में विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर करेंगे विभागवार समीक्षा। विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी ने धर्म और संस्कृति मुद्दे पर कांग्रेस को दिया जवाब, कहा सरना सनातन और हिंदू एक ही संस्कृति और परंपरा का हिस्सा। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में जारी की नोटिस, कहा विद्यार्थियों की अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी। राज्य भर में जारी भीषण गर्मी के प्रकोप से आम जनजीवन प्रभावित, गढ़वा, पलामू और चतरा में लू का अलर्ट। और रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे दिन कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दीका।
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: दीदी नौकरी लग गई।
7: अरे वाह बधाई हो तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
7: अरे रुको शहजादे सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
7: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
7: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
7: अच्छा
8: आरबीआई कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी
11: एक ट्रेड में सिक्सर
12: ए अक्का
13: प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर
14: मतलब नुकसान की हर ट्रेड। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं ऑथराइज लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है
15: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
16: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
17: तो है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर चतरा जिले को रेल सेवा से जोड़ने के लिए रेलवे मंत्रालय ने विशेष अधिसूचना जारी की है। बिहार के गया जी के परैया स्टेशन से चतरा तक 75 किलोमीटर की नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि
2: विशेष अधिसूचना के तहत चतरा गया रेल लाइन के स्पेशल उसके स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस के अनुसार 531 करोड़ जो अलॉटेड हुआ है उसमें से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो जाए। जितने भी अड़चने हो, फॉरेस्ट का एनओसी का हो या जमीन का फॉरेस्ट को पैसा देना हो, जितनी भी चीजें हो उनसे तुरंत प्रक्रिया जितनी भी अड़चन का हो दूर हो जाए और समस्या की ओर जो समाधान करते हो आगे के कार्य की प्रगति करे, इसलिए स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया है।
1: चतरा के उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKKY के अंतर्गत DMFT निधि से योजनाओं का चयन करने के लिए जिले के 154 पंचायतों में 21 से 23 मई तक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आधारभूत संरचना के चयन को प्राथमिकता दी गई। इधर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना चतरा जिले के किसानों को खेती और सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक साबित हो रही है। चतरा के सिमरिया अनुमंडल के किसान महेंद्र कुमार और गिद्धौर प्रखंड के प्रगतिशील किसान मुकेश दांगी ने पीएम कुसुम योजना के लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि
3: पीएम कुसुम योजना से हमें बहुत लाभ मिला है और हम किसानों को प्रेरित करना चाहूँगा कि पीएम कुसुम योजना का लाभ लें। और मेरा जो भी कांटेक्ट में है उन लोग को तो हम फॉर्म भरवा रहे हैं और दिला भी रहे हैं और हम अपना टीवी लगा रहे हैं और इधर पॉली हाउस भी मेरा है।
4: मेरा नाम मुकेश कुमार दांगी हुआ। मुझे पीएम कुसुम के द्वारा सोलर पंप मिला जिससे मैं 5 एकड़ आम बागवानी लगाए हैं, इसका आम का पटवन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार द्वारा जो मिला है इससे बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है।
1: पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने में चतरा जिले के किसान सबसे आगे रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी गौतम कुमार ने कहा कि चतरा जिले ने केवल लक्ष्य ही हासिल नहीं किया है बल्कि हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को योजना के जरिए बढ़ावा भी दिया जा रहा है।
5: हमारे चतरा जिला के किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के इच्छुक हैं और कृषि विभाग से समय समय पर इन्हें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की जानकारी BTM और कृषक पाठशाला के माध्यम से दी जा रही है और पीएम कुसुम योजना अंतर्गत हमारे चतरा के किसानों ने बढ़ चढ़ कर रुचि दिखाई है, जिससे ये प्रतीत होता है कि हमारे चतरा जिला के किसान पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत हैं एवं हरित सौर ऊर्जा अपनाने के इच्छुक हैं।
1: राज्य के अधिकांश जिलों की तरह चतरा में भी भीषण गर्मी और लू के कारण जनजीवन प्रभावित है। पिछले 2 दिनों में जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
0: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आपने सुना जिले में आजकल, ये आकाशवाणी नाची है, प्रस्तुत है शतदल, जिसमें आप सुनेंगे कविताएं सरोज झा की, कहानी अनामिका प्रिया की, प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की, प्रस्तुत स्वर है प्रणव कुमार का।

0: शतदल के आज के इस आयोजन में झारखंड के दो साहित्यकार सरोज झा झारखंडी और अनामिका प्रिया को हम सुनेंगे। सरोज झा झारखंडी जहां गीत गजल के माध्यम से समाज की विकृतियों पर प्रहार करेंगे, वहीं अनामिका प्रिया कहानी के माध्यम से परिवार, समाज और संबंधों की मूल्यहीनता को सामने रखेंगी। मित्रों, कवि की खोज सिर्फ कविता की नहीं होती, वह उस दुनिया की खोज करता है जो उसके आसपास की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। उस दुनिया को पाने के लिए, उसमें रम जाने के लिए ही कविता लिखता है। इसलिए इस दुनिया के लोग अगर उसे पागल की संज्ञा से विभूषित करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हालांकि कवियों का अपना तर्क है। किसी कवि ने कहा भी है, इन्हीं उलझे हुए दिमागों में खुशियों के लच्छे हैं, मुझे पागल ही रहने दो, पागल ही अच्छे हैं। कवि सरोज झा झारखंडी भी ऐसी ही दुनिया की तलाश में काव्य सृजन करते हैं। सामाजिक विषमता, परिवेश की विद्रूपता, आपसी वैमनस्यता, बाजारू स्वप्न, गांव शहर का अंतर द्वंद इनकी रचनाओं में मुखरता से संप्रेषित होते हैं। ये कहते भी हैं, बहुत कीमती है दिलों के छाले, बड़े जतन से हैं हमने संभाले। वो मेरा नहीं है, मुझे ये यकीन है, किसी को तो अपना मगर वो बना ले। जब इस दुनिया की निष्ठुरता और बेरुखी से ऊब जाते हैं तो उन्हें यह कहने में देर नहीं लगती कि कदम कदम पे धोखा साजिश, झूठी दुनिया, झूठी ख्वाहिश। जमीर जख्मी परा यहाँ पर जिस्मों की है बस फरमाइश। कैसे खुद को हम बचाएं, दुनिया है एक दलदल, बताओ कहाँ जाए पागल। तो आइए सुनते हैं सरोज झा झारखंडी की आवाज में ही उनकी कुछ रचनाएं।
1: मैं अपनी गजलों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं चार असार पहले अपने हवाले करता हूँ कि मैं अदब का सिपाही हूँ, सबका एहतराम चाहता हूँ। मैं अदब का सिपाही हूँ, सबका एहतराम चाहता हूँ। मैं सबकी खैरियत और सबका सलाम चाहता हूँ। जज्बातों की जमीन पे रिश्तों की बुनियाद रखता हूँ। जज्बातों की जमीन पे रिश्तों की बुनियाद रखता हूँ। मैं सबकी खैरियत की खातिर खुदा से फरियाद रखता हूँ। जज्बातों की जमीन पे रिश्तों की बुनियाद रखता हूँ। मैं सबकी खैरियत की खातिर खुदा से फरियाद रखता हूँ। ये नफ़रतों की दौलत हो बादशाहों को मुबारक, ये नफ़रतों की दौलत हो बादशाहों को मुबारक। मैं मोहब्बत का शायर हूँ, मोहब्बत याद रखता हूँ। मेरी पहली गज़ल जो तहत में आपके सामने प्रस्तुत है कि तेरे वादों का असर कहीं दिखता नहीं है, तेरे वादों का असर कहीं दिखता नहीं है, और कमाल है तुम्हारे खिलाफ कोई लिखता नहीं है। तेरे वादों का असर कहीं दिखता नहीं है, और कमाल है तेरे खिलाफ कोई लिखता नहीं है। ये कैसा दौर है, ये कौन सी तहजीब है, ये कैसा दौर है, ये कौन सी तहजीब है। उस्तादों से शागिर्द कुछ सीखता नहीं है, और कमाल है तुम्हारे खिलाफ कोई लिखता नहीं है। कहाँ कहाँ तो तय था, कहाँ तो तय था सूरज चांद की रोशनी, कहाँ तो तय था सूरज चांद की रोशनी, यहाँ तो कहीं जुगनू भी दिखता नहीं है। कमाल है तेरे खिलाफ कोई लिखता नहीं है। ये कैसा खौफ का मंजर है तेरे शहर का मसीहा, ये कैसा खौफ का मंजर है तेरे शहर का मसीहा। दहशत में रहकर भी कोई चीखता नहीं है, और कमाल है तेरे खिलाफ कोई लिखता नहीं है। ना जाने कौन सी मिट्टी का बना हुआ शख्स है जो बाजारों के दौर में भी बिकता नहीं है, और कमाल है तेरे खिलाफ कोई लिखता नहीं है। अगली गजल आपके हवाले करता हूं, तरन्नुम में है। कितना पागल है वो खुद में गुमान करता है, कितना पागल है वो खुद में गुमान करता है, कितना पागल है वो खुद में गुमान करता है, मुस्कुरा कर

मन करता है, उन्हें तो बस इफ्तारी से मतलब है, उन्हें तो बस इफ्तारी से मतलब है, उन्हें तो बस इफ्तारी से मतलब है, परेशान वो है जो रोजा रमजान करता है, परेशान वो है जो रोजा रमजान करता है। ये हिंदुस्तान बना है यारो हम सबसे, ये हिंदुस्तान बना है यारो हम सबसे, ये हिंदुस्तान बना है यारो हम सबसे, वो कौन है जो हिंदू मुसलमान करता है। तुम तरक्की पे कर लो लाख तकरीरें, तुम तरक्की पे कर लो लाख तकरीरें, तुम तरक्की पे कर लो लाख तकरीरें, रोटी पैदा तो वही किसान करता है, रोटी पैदा तो वही किसान करता है।

करता है, वो एहसान से ज्यादा ऐलान करता है। हम कठपुतली से ज्यादा यहाँ कुछ भी नहीं, हम कठपुतली से ज्यादा यहाँ कुछ भी नहीं, हम कठ

0: करता है।
1: अगली गजल आपके हवाले करता हूं। बहुत कीमती है दिलों के ये छाले,

बहुत कीमती है, शहर रोशनी से भरा हुआ है, शहर रोशनी से, शहर रोशनी से भर

जो करते हैं दावा जहर काटने का, जो करते हैं दावा, जो करते हैं दावा जहर काटने का, जी देखा है हमने उन्हें सांप पाले,

न कोई शिकायत, खुदा के हैं बंदे, खुदा के हवाले।

0: पागल। सच कहता हूँ, सच लिखता हूँ, सच की खातिर सब सहता हूँ, सच की खातिर सब सहता हूँ। सच को माना अपना सब कुछ, सच के साथ सदा दिखता हूँ, सच के साथ सदा दिखता हूँ। पर ये मेरा सच भी देखो, पर ये मेरा सच भी देखो, आज हुआ निष्फल, बताओ कहाँ जाए पागल, बताओ कहाँ जाए पागल।
1: साथियों, जीवन एक अनवरत संघर्ष है, और ये संघर्ष कभी अपनों से तो कभी अपने आप से चलता रहता है। इस दुनिया की व्यवस्थाओं में जिन विकृतियों का समावेश है, वह हमारी अंतिम सांस तक पीछा करती है, चाहे हम जिस तरह से जिएं। वृहत मानवीय संबंधों पर संवेदना और प्रेम की जगह ईर्ष्या, जलन, प्रतिस्पर्धा, निष्ठुरता, स्वार्थपरता, विवेकहीनता, अवसरवादिता इस तरह से हावी हैं कि वे अब मनुष्य के अस्तित्व को ही निगलते चले जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि कभी कोरोना जैसी महामारी हमारी अस्थूल काया को निगलने आ जाती है, तो कभी कई अपरिभाषित बीमारियां हमारे सूक्ष्म संतुलन को बिगाड़ कर रख देती हैं, फिर भी हम सचेत नहीं होते। अनामिका प्रिया की कहानी हमें उस सचेतन बिंदु पर लाकर खड़ा करना चाहती है, जहां हम प्रकृति और मनुष्य से अपने नैसर्गिक संबंधों के तार को इस तरह से कसें कि उससे संगीत पैदा हो, जीवन ऊर्जा प्रभावित हो सके। कोई भी सुख सुविधा उन संबंधों के सानी नहीं हो सकते जो आपके अस्तित्व को अर्थ प्रदान करते हों। एक स्त्री का जीवन इसी अर्थवत्ता के इर्द गिर्द घूमता है, फिर भी परिस्थितियां विपरीत होते ही लोगों की सशंकित निगाह उसे निचोड़ लेना चाहती है। नारी विमर्श के इन पहलुओं को भी जिस तरह से अनामिका प्रिया सामने लाती हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है। हमारे संबंध, सरोकार, परिवार और समाज की ठूठ होती मानसिकता को जिस सूक्ष्मता से ये अभिव्यक्त करती हैं, उसमें आपको अपना ही भोगा हुआ यथार्थ नजर आएगा। तो आइए सुनते हैं अनामिका प्रिया की आवाज में ही उनकी एक कहानी, थॉमस के जाने के बाद।
2: उस सपने से एकाएक सिल्विया की नींद उछट गई। तेज धड़कनों को संभालते हुए उसने घड़ी पर नजर डाली। 3:20 हुए थे। चेहरे का पसीना पोछते पोछते उसने एक ग्लास पानी तेजी से खत्म कर लिया। अगर वाकई थॉमस का ऑक्सीजन लेवल 40 तक पहुंच गया तो वह तेजी से बाथरूम की तरफ भागी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। थोड़ी देर तक पानी से चेहरा धोती रही। थोड़ा धैर्य रखने की कोशिश के बाद उसने ड्राइवर को फोन लगाया था, जल्दी आ जाओ, तुरंत हॉस्पिटल निकलना है। लगभग 20 के बाद ड्राइवर ने कॉल कर बताया कि वह आकर नीचे खड़ा है। उसने खुद को सिर से पांव तक कपड़ों से कवर किया और चेहरे पर डबल मास्क लगाकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। वह कोरोना

पॉजिटिव है तो उसके ज़रूरी एहतियात बरती और सामने ड्राइवर भी अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी एहतियात बरत रहा था। ठीक 5 बजे वह अस्पताल के बाहर खड़ी थी। वहाँ पीली रोशनी में बदहाश परिजन मौजूद थे। सिल्विया सोचने लगी, थॉमस की इम्यूनिटी इतनी वीक क्यों है? क्या वह नॉनवेज नहीं खाता इसलिए? क्या वह मन से हार गया है? वह भाई के मित्र डॉक्टर अश्विन के कमरे के बाहर पहुंच गई थी। थॉमस ठीक है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने शांति के साथ पर स्पष्ट कहा था, आपको मन मजबूत कर लेना चाहिए। उस समय इस वाक्य का अर्थ सिल्विया नहीं समझ पाई थी। उसने सिर हिलाया और थॉमस के कमरे की ओर बढ़ी थी। बेड पर पड़ा थॉमस स्थिर सा लगा, कुछ थका और कमज़ोर भी। सुबह सुबह सिल्विया के आने पर कुछ अचंभित भी हुआ था वह। सिल्विया बोली, सुबह सुबह डरावना सपना देखा कि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल 40 तक पहुंच गया है। सिल्विया की बात सुनकर थॉमस थोड़ी देर के लिए गुम हो गया, पर सिल्विया के हाथों में अपना लैपटॉप देकर वह कुछ उत्साहित हुआ। 10-12 मिनट तक वह लैपटॉप और फ़ोन में व्यस्त कुछ करता रहा। शायद वह थक गया इसलिए आँखें बंद कर लेट गया था। सिल्विया अचरज से पूछने लगी, क्या कर रहे थे थॉमस? थॉमस ने उत्तर दिया, फ़ोन और लैपटॉप से पासवर्ड हटा लिया है। सिल्विया ने एक बार पूछा, क्यों, किस लिए? थॉमस ने बताया कि उसने शेयर में कुछ पैसा लगाया था, लगभग 10 लाख, क्लेम के लिए प्रोसेस कर दिया है। वह आगे बोलता गया, LIC में नॉमिनी के रूप में पापा का नाम है, तुम्हारा चेंज करके डालना ज़रूरी था पर अभी वह कर नहीं पाया। क्या किया जाए, जीवन में सब इतना मनचाहा नहीं होता ना। कहते हुए थॉमस की सांस उखड़ने लगी थी। नर्स ने ऑक्सीजन मास्क लगाया और सिल्विया को बाहर भेज दिया। बाहर शीशे से वह चुपचाप देखती रही कि थॉमस की नाक और मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, तौलिए से नर्स साफ कर रही है। वह और थॉमस पिछले हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव हैं। उसके मुकाबले थॉमस परेशान ज़्यादा था। सांस लेने में दिक्कत होने पर भी अस्पताल में एडमिट होने को वह राज़ी भी नहीं था। शायद दोनों का ख्याल था कि जो भी अस्पताल जा रहा है इन दिनों, वह फिर रिकवर होकर घर नहीं लौट रहा। तब सिल्विया ने अपने कोलकाता वाले छोटे भाई को फ़ोन कर कहा था। भाई ने भी यही कहा, बहुत भीड़ होने की वजह से अस्पताल में प्रॉपर केयर नहीं हो पा रहा, अभी घर ही सही जगह है। अर्निना की स्थिति से जूझते हुए मिशनरी के छोटे से नर्सिंग होम में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई। वहाँ थॉमस को एडमिट किया गया। यहाँ भीड़ कम होने से लापरवाही की आशंका थोड़ी कम थी। सिल्विया उम्मीद की झीनी परत के साथ हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर के बुलाने से उसका ध्यान बटा। वह बोला, आप समझ रही हैं ना, कोई सुधार नहीं दिख रहा, फेफड़ा पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। वह थॉमस की तरफ मुड़ी, उसका खाना खत्म हो चुका था। थॉमस ने मध्यम आवाज में प्रार्थना करने की इच्छा जताई। दोनों साथ में प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना के बाद थॉमस ने क्रॉस का चिन्ह बनाया और कहने लगा, तुम ठीक से रहना और हमारे बाबू का पूरा ख्याल रखना। सिल्विया ने अचानक देखा ऑक्सीजन का स्तर 80 से 60, फिर 60 से 40 हुआ। थॉमस के मुंह से ढेर सारा झाग निकला और अचानक ऑक्सीजन 40 से 0 पर पहुंचकर रुक गया था। नर्स बोली, नॉट रिस्पॉन्डिंग। शरीर ऑक्सीजन की रेंज से बाहर आ गया था। इस अप्रत्याशित आघात से सिल्विया संज्ञा शून्य सी हो गई। सुबह सपने में जो देखा वह कैसे इस तरह वास्तविकता में घटित हो गया, वह अचरज में थी। सिल्विया के दोनों भाई आ गए थे, शायद डॉक्टर ने उनको खबर की होगी। अगले कई दिन कैसे निकल गए यह बताना सिल्विया के लिए भी बहुत मुश्किल रहा। दोनों भाइयों ने ताबूत का इंतजाम किया और कई परिजनों की उपस्थिति में थॉमस को मिट्टी दी गई। वह तो यंत्र चालित पुतली सी सबके कहे मुताबिक करती रही। दोनों भाई लौट गए। थॉमस के परिजन भी अपने ठिकाने पहुंच गए थे। वह अपने फ्लैट में डूबी अकेली रह गई, अपने भीतर के एकांत में गुम। मित्र और सहकर्मी टिवानी सिल्विया से मिलने आई तो उसका हाल देखकर कहा था, तुम खुद समझदार हो, दुख के समंदर में डूबने उतराने से कोई रास्ता निकलना नहीं है, ऑफिस जाओ कुछ अच्छा लगेगा। कैसे समझाती सिल्विया कि उसे अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा।
ऑफिस से बार बार फोन

आने लगे तो जैसे तैसे सिल्विया ने मन को कड़ा किया। थॉमस को विदा करने के बाद वह कब तक फ्लैट में सिमट कर दुख मनाती रहेगी। ऑफिस पहुंची तो उसे सबकी संवेदना मिली। 2 दिनों बाद बॉस ने अपने केबिन में बुलाया और कहा, जो हुआ वह बहुत शॉकिंग था सिल्विया, लेकिन दुनिया से कदम ताल करते हुए चलना पड़ेगा। अभी तुम्हें फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए ऑफिस जाना होगा। अगर थॉमस की कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसके क्लेम के लिए भी डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफिस से 2 वीक की छुट्टी लो और इस काम में लग जाओ। सिल्विया समझ रही थी कि आगे मुश्किलों का लंबा रास्ता है, कई मोर्चों पर उसे लड़ना होगा। ऑफिस ने मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा था पेंशन और बीमा के पैसों के लिए। विडंबना थी कि बीमा पॉलिसी में नॉमिनी के रूप में ससुर का अब तक नाम रह गया था, जो अब खुद दिवंगत थे। सास ऑफिस और बीमा के कागजात देने को तैयार नहीं हुई। दो टूक कह दिया उन्होंने, बेटा हमारा था, ये 4-5 साल पहले आई लड़की को क्यों फायदा लेने दें। अब क्या करेगी ये औरत, इतना बड़ा घर बनवाकर। इससे मिलती जुलती कई टिप्पणी वह सुन चुकी थी। सच है कि उसके सिमटे मन को इतने बड़े घर की जरूरत कहाँ थी। पर घर कोई छोटा सामान नहीं था जिसे वह अपनी लाल साड़ी की तरह किसी अलमारी के अंधेरे कोने का हिस्सा बना देती। न उसे अपने दुख संग किसी बक्से में ठेलकर बंद करने का उपाय सिल्विया के पास था। घर इतना मूर्त और दृश्य था कि सबकी आंखों में पड़ता रहा, घूमता रहा और चुभता रहा। सिल्विया का पहनावा पहनना सब प्रश्नों के घेरे में थे। पति न हो तो इतने ऐशो आराम की क्या जरूरत है। पति को खो चुकी स्त्री मनुष्य के तौर पर कुछ कमतर हो जाती है क्या। कई सवालों के साथ नए मकान में सिल्विया की गृहस्थी ने पग धरा था। गृह प्रवेश की जगह प्रार्थना कार्यक्रम रखा जाना बड़ी उदास करने वाली बात थी। कार्यक्रम में शामिल होकर दुख बांटने पहली बार ससुराल का पूरा कुनबा आया हुआ था। घर तरह तरह के संभाषण से भर गया था। बहू राजरानी है, आलीशान घर, ड्राइवर, घरेलू सहायिका, कितने खून पसीने से बनाया है थॉमस ने, पर सुख भोगेगी सिल्विया। यहाँ की सुख सुविधाओं से आहत और हैरान रिश्तेदार सिल्विया को अचरज में डाल रहे थे। क्या किसी को यह ध्यान नहीं कि अब इसके ईएमआई की जवाबदेही अकेले सिल्विया पर है। कितनी नजरों से नापी गई थी सिल्विया। देखो खाना पहनना सब कितना मस्त चल रहा है, दुखी क्या लगेगी, अच्छे से एडजस्ट कर गई है। उनमें से किसी ने सुझाव दिया था, थॉमस के बेटे के नाम से घर का म्यूटेशन करा देना चाहिए। सिल्विया अभी प्रतिप्रश्न की स्थिति में नहीं थी, न मानसिक तौर पर और न सामाजिक तौर पर। एक युवा की मौत पर उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कार्यक्रम है और सबके सब अपने फायदे नुकसान की टोह ले रहे। रिश्ते का एक देवर अपने ऑफिस का अनुभव साझा कर रहा था। पिछले साल मेरे बैंक सहकर्मी का देहांत हुआ था। हम लोग उनके घर मिलने गए, उनकी पत्नी तब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर बाद में उन्होंने बैंक ज्वाइन की, तब भी बड़ी महीनों डरी सहमी रही। साल गुजरा कि देखते देखते वह पूरी बदल गई, बाल कट गए, ड्रेस नए फैशन के, घूमना फिरना शॉपिंग सब शुरू हो गया। नौकरी आ गई, पैसा आ गया, कहीं कोई रोक टोक नहीं। 4-5 महिला पुरुषों की सामूहिक सी ठिठोली गूंजी थी। सिल्विया हतप्रभ थी। यह समाज सहज औरत को स्वीकार कहाँ कर पाता है। यह कैसी संवेदना है कि जिंदगी किससे संगत बैठाती स्त्री को पांच से बाहर बिठाकर सुकून पाते हो। यहाँ कैसे लोग इकट्ठा हैं जो उसकी आधी अधूरी जिंदगी पर फिदा हैं, चुस्की ले रहे हैं। उफ, आज भले स्त्री को पति की चिता पर न लिटाओ, पर उसे जिंदा देखने में परेशानी है। सिल्विया की आधी अधूरी जिंदगी, उसका मकान, नौकर, ड्राइवर, सबको कितना आकर्षक लग रहा। अब तक वह बहू, पत्नी, माँ रही है। उसका कामकाजी होना भी इन तीनों भूमिकाओं को पूरा करने में सहायक बन रहा। एकाएक रिश्तों की लिपि को पढ़ने के चिन्ह धूल से गए थे। रिश्तों की पहचान के सारे उड़े रंग के साथ वह स्तब्ध थी। क्या अपनापा भी एक रस्म अदायगी भर है। प्रार्थना कार्यक्रम से पहले सिल्विया को एक काम जरूरी लगा। उसने सबको गपशप में मशगूल छोड़ 4 वर्षीय बेटे को लिया और कब्रिस्तान चली आई।
थॉमस की कब्र पर जाकर उसने बेटे को

0: समझाया कि उसके पिता का असली घर यही है, इसी घर में उन्हें रहना है, वे उस नए घर में नहीं आएंगे। उसके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज हम नए घर में उनके लिए प्रार्थना करेंगे।
1: इसी के साथ साप्ताहिक कार्यक्रम शतदल का आज का यह आयोजन संपन्न होता है। आपको आज का यह आयोजन कैसा लगा हमें ईमेल के जरिए जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है bolorachi@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार पुनः नोट कर लें, bolorachi@gmail.com। इस कार्यक्रम का संचालन किया प्रणव कुमार ने और प्रस्तुति प्रशांत गौरव की।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं संताली समाचार पत्रिका।

अभी आपने सुना संताली समाचार पत्रिका, ये आकाशवाणी रांची है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म डियर जिंदगी के इस गीत से, जिसे गाया है जसलीन रॉयल ने।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा

0: आपका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आकाशवाणी की रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीकांता। अगला गीत है फिल्म मैंने प्यार किया से, लता मंगेशकर के स्वर में। संगीत है राम लक्ष्मण का, बोल हैं देव कोहली के।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश से फिल्म हम आपके हैं कौन सी, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। गीत को लिखा है देव कोहली ने, संगीत है राम लक्ष्मण का।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम रजनी गंधा। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख लें, ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 11001। और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं राखी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं आगे की पड़ाव की ओर, जिसका शीर्षक है अंधेरे से उजाले की ओर।

0: दोस्तों, नशा एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान के शरीर से पहले उसके सपनों को मार देता है। नशा केवल एक इंसान को नहीं पूरे परिवार को सजा देता है। घर की हंसी कब रोने में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। आज की ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने नशे के अंधेरे में अपनों को खोया और फिर उसी अंधेरे को हरा कर उजाले का रास्ता चुना। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जो आपके आसपास, आपके पड़ोस, शायद आप ही के घर में घट रही हो, जो इंसान से उसका विवेक और परिवार से उसकी मुस्कान छीन लेता है। नशे की आवाज घर की शांति को चीर देती है। सुबह की शुरुआत भी चिंता के साथ होती है जब घर में खुशियों से ज्यादा समस्याएं बोलती हैं।
1: मोहन, फिर शराब पीकर आ गए हो? बच्चों की फीस बाकी है, घर पे राशन नहीं है।
2: बस बस, मुझे मत सिखाओ, मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं।
1: राधा, आज सब्जी मत बनाना, नमक रोटी ही से काम चला लेंगे।
3: दीदी, कब तक ऐसे जिएंगे हम? हर दिन समझौता, हर रात डर।
1: मजबूरी है राधा, जब घर का मुखिया ही रास्ता भटक जाए तो?
3: दीदी, हर दिन यही होता है, ये नशा हमें खत्म कर देगा। कभी कभी लगता है दीदी, हम भी उसी नशे में डूब रहे हैं बिना पिए।
1: राधा, आज फिर चावल कम पड़ गए।
3: दीदी, महीने भर का बजट बिगड़ गया है।
2: खाना मिलेगा या नहीं?
1: मोहन, बच्चों के सामने तो मत चिल्लाओ।
2: अरे, आज खाना ठंडा है क्या?
1: रोज शराब, गर्म रहती है मोहन, घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है।
2: ताना मत मारो, मैं बार मर मर के कमाता हूँ।
3: जीजा जी, कमाई से ज्यादा तो शराब की बोतल दिखती है।
2: मेरी जिंदगी है, तुम लोग कौन होते हो रोकने वाले?
1: हम तुम्हारे अपने हैं मोहन, और अपने ही सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं।

0: नमस्ते बहन जी, आज गांव में नशा मुक्ति अभियान की बैठक है। गांव में नशा मुक्ति शिविर लगने वाला है। सरकार मुफ्त इलाज और काउंसलिंग दे रही है।
1: मुफ्त? हमें तो लगा ये सब बड़े शहरों के लिए होता है। सच? क्या कोई रास्ता है इस अंधेरे से बाहर निकलने का?
0: दीदी, जिला नशा मुक्ति केंद्र में दवा, काउंसलिंग सब फ्री है। और हाँ दीदी, अगर चाह हो तो आज नहीं रुकें, कल तो बहुत देर हो जाएगी।
2: और अगर कमाई रुक जाए तो?
0: मनरेगा योजना है ना, रोजगार मिलेगा, बच्चों के लिए सरकारी छात्रवृत्ति भी।
1: मतलब सरकार भी हमारे साथ खड़ी है?
0: हाँ दीदी बिल्कुल, बस पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा।
3: काउंसलिंग के बाद मोहन बदला हुआ दिखता है।
4: सब मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं? क्या सच में मेरी गलती है? मैं क्या बन गया हूँ? मेरे कारण मेरे अपने मुझसे डरते हैं? क्या यही मर्दानगी है? मैं कहाँ गलत हो गया? अगर आज भी नहीं सुधरा तो कल मुझे माफ करने वाला भी कोई नहीं होगा।
3: जब इंसान खुद से बात करने लगे तो समझो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।
4: मैं बदलना चाहता हूँ।
1: ये मेरी सबसे बड़ी जीत है।
3: काउंसलिंग के बाद मोहन।
4: सीमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नशे में अपना वर्तमान भी खोया और भविष्य भी।
1: गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है मोहन।
2: आज मेरा भाई फिर से जिंदा हो गया।

0: आज फिर मन कर रहा है।
1: एक घूंट ने आपको यहाँ तक पहुँचाया था, अब एक फैसला आपको बचा सकता है जीजा जी। अगर मन डगमगाए तो याद कर लेना।
2: मोहन, आज अगर रुके तो हमारे बच्चे एक नई सुबह को देखेंगे।
0: हर दिन एक युद्ध है राधा, लेकिन आज हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अब नहीं।
2: हम तुम्हारे साथ हैं मोहन, इस बार सच में।

0: सप्ताह बाद मोहन काम पर जाने को तैयार, आशा पढ़ाई में व्यस्त।
1: आज मैंने समाज सेवा का कोर्स ज्वाइन किया है, मैं दूसरों को भी नशे से बचाऊंगी।
2: अगर मेरी कहानी किसी को बचा सके तो मेरा संघर्ष सफल हो जाएगा।
1: मैं समाज सेवा में जाना चाहती हूँ
2: ताकि कोई और मेरी तरह ना गिरे।
3: मोहन, आज मनरेगा का काम कैसा रहा?
2: मेहनत की कमाई है सीमा, और सुकून भी।
4: बच्चों की छात्रवृत्ति का फॉर्म भी भर दिया गया है।
1: और दीदी, आज आंगनवाड़ी मीटिंग में नशा विरोधी अभियान की तारीख तय हुई है।
2: अगर सहारा ना मिलता तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता।
0: श्रोताओ, नशा कोई स्टाइल नहीं, ये एक धीमी मौत है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो हर अंधेरा रोशनी में बदला जा सकता है। आज नहीं तो कभी नहीं, नशे को ना कहें, जीवन को हाँ कहें। हर अंधेरे में एक दिया होता है, बस जरूरत है उसे जलाने की। रेडियो पर ना सुनाई देने वाला संघर्ष असल जिंदगी में बहुत शोर मचाता है। जब परिवार साथ खड़ा हो तो सबसे बड़ी लत भी हार जाती है। श्रोतो, जिला नशा मुक्ति केंद्र और मनरेगा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। जिला नशा मुक्ति केंद्र, आप सभी जानना चाहेंगे कि ये क्या है। ये भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र हैं, जो जिले स्तर पर होते हैं। यहाँ पर मुफ्त इलाज, डॉक्टर द्वारा जांच, काउंसलिंग, जिसे आप लोग मानसिक सलाह के रूप में जानते हैं, जहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ वे परिवार को मुफ्त सलाह भी दी जाती है। कुछ जगहों पर कुछ दिन रहने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अब सवाल आता है कि वहाँ कैसे जाएं? इसके लिए आप अपने जिले के सरकारी अस्पताल जाएं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र कहाँ है। वहाँ आप अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र साथ ले जाएं। डॉक्टर या काउंसलर से मिलकर वहाँ पर इलाज आपका शुरू किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिसे 1446 के नाम से जानते हैं। ये सरकारी टोल फ्री नंबर है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 1446, जिसे हमारी भाषा में हम बोल सकते हैं 1446। यहाँ से आपको आपके जिले के नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी मिलती है, जहाँ इलाज, दवा और सलाह सब कुछ मुफ्त मिलता है। दूसरा, आपने मनरेगा योजना के बारे में सुना होगा। अब आप जानना चाहेंगे कि ये क्या है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी दे देती हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से इसे जाना जाता है, जिसमें ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का काम मिलने की गारंटी दी जाती है। और इसमें किसे काम मिलता है वो भी मैं बता देती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला वयस्क व्यक्ति, जिसमें पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं, नशा छोड़ने के बाद काम पाने का बेहतरीन साधन है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि काम कैसे मिलेगा। इसमें पहला स्टेप होता है, आपका एक कार्ड बनवाया जाएगा, जो ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से बनता है। उसके बाद वह सचिव के पास जाता है, जिसमें आपका आधार कार्ड और आपकी एक फोटो होती है। जब मनरेगा कार्ड बनता है, उसके बाद काम की मांग कर सकते हैं। आप पंचायत में जाके बोलिए कि मुझे मनरेगा में काम चाहिए। 15 दिन के अंदर काम देना अनिवार्य होता है। किस प्रकार के काम इसमें होते हैं, जैसे सड़क का निर्माण, तालाब की खुदाई, नाली या मिट्टी भराई, वृक्षारोपण, आपके आसपास के स्कूल या आंगनबाड़ी से जुड़े काम। मजदूरी का भुगतान सीधा आपके बैंक से खाते में आता है। श्रोतो, ये सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, जो हम जानते हुए भी जिनका लाभ हम नहीं उठा पाते। तो श्रोता, मैं आशा करती हूँ आज की इस कहानी ने आपको जरूर जागरूक किया होगा। दोस्तों, इस विषय से जुड़े हुए आप अपने अनुभव हमसे जरूर साझा कीजिए। तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, विकास दर्शन रेडियो प्रसारण की प्रस्तुति। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार प्रसारित किया जाता है, संध्या 7:45 पर हर बुधवार और रविवार। जी हाँ, संध्या 7:45 पर हर बुधवार और रविवार। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे 545.45 मीटर बैंड पर। जी हाँ, 545.45 मीटर बैंड पर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

0: कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
1: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
0: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
1: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और 1 जुलाई से इस अधिनियम का कार्यान्वयन होने जा रहा है। यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि इस गारंटी फ्रेमवर्क जो होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें पहले एमजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हमारे श्रमिक भाई बहनों को मिलता था जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अब वह गारंटी जो है वह 100 से बढ़कर जो है 125 होने जा रही है। सो 125 दिन का रोजगार हर एक वित्तीय वर्ष में इन ग्रामीण परिवारों को देने की गारंटी जो है, यह एक वैधानिक गारंटी है जो इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरे प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम कहते हैं कि गारंटी है, गारंटी का मतलब ही यह होता है कि अगर गारंटी फुलफिल नहीं होती तो कुछ दिया जाता है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर किसी श्रमिक को काम मांगने पर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। अगर कोई श्रमिक भाई हमारा या बहन काम करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके बैंक के खाते में सीधे मजदूरी पहुंच जाएगी और यह वेजेस का जो रेट होगा, मतलब मजदूरी दर जो होगा, वह भी पहले एमजी नरेगा के अंदर जितनी मजदूरी मिलती थी उससे ज्यादा होने की संभावना है। कुछ ही दिनों में भारत सरकार मजदूरी दर भी नोटिफाई करने वाली है, तो बेहतर मजदूरी मिलेगी और बेहतर गारंटी मिलेगी। अब मैं आती हूँ दूसरे प्रावधान की ओर, जो कि लोगों के श्रम को एक सम्मान देगा और गांवों के विकास को जो है चालना देगा। आपको पता है कि एक्ट के नाम में ही विकसित भारत है, तो काम ऐसे होंगे जिससे कि पंचायतों का विकास हो। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स की बात इस एक्ट में कही गई है। कोई भी ऐसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिए जाएंगे, ऐसे काम लिए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण एरिया का विकास हो और ऐसे काम लिए जाएंगे जिसमें आजीविका के भी कई अवसर उससे पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाँव में कोई फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लिया जाता है तो उससे और भी हमारे किसान भाई बहनों को आगे जाके आजीविका के अवसर उसे उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, लखपति दीदियां बन रही है, उसमें से करोड़ों दीदियां, तो उनको भी आजीविका के कई साधन बनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी के अंदर जो है वह काम लिए जा सकेंगे। 4 प्रकार के काम है मेनली। सबसे पहला, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं जल है तो कल है, वाटर सिक्योरिटी के काम जो है हमारे गाँव में बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारा किसान भाई भी वहीं पर बसता है, तो जल सुरक्षा के काम हमारा का पहला क्षेत्र है। दूसरे काम जो होंगे वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे गाँव में अगर बुनियादी ढांचा रहेगा, बुनियादी अवसंरचना रहेगी, तभी हमारे किसान भाइयों को या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकोनॉमी को भी चालना मिल सकती है, इसलिए कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यह एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। लाइवलीहुड रिलेटेड, जिसकी मैंने हल्की से अभी बात की, कि आजीविका मूलक गतिविधियां कई सारी करने के लिए विकसित भारत जी राम जी के एक्ट में प्रावधान है। और चौथा जो है, आपने देखा होगा सोनू जी, कई बार ये हो रहा है, आजकल ज्यादा हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं फ्रिक्वेंटली जो है फेस करना पड़ रहा है देश को, तो एक्सट्रीम वेदर से निपटने के लिए भी जो काम जरूरी है वह काम भी इसमें जो है लिए जाएंगे। तो एक तरीके से से मैं अगर इसे समअप करना चाहूंगी तो विकसित भारत जी राम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है और उससे विकास की भी जो है एक इन्विसाज किया गया है। तो ऑल इन ऑल भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए विकसित भारत जी राम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विकसित भारत बनने की ओर जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ।
0: जी बिल्कुल, ही आउटकम ओरिएंटेड है ये स्कीम और ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा बता रही है 4 प्रायोरिटी एरिया।

0: में इससे विकसित होगा। एक और चीज जो है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल्स, और उसमें उन्होंने पब्लिक फीडबैक मांगा है 30 जून तक कि कोई भी सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो ये भी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है सरकार का जिसमें वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें बॉटम अप मतलब गांव के लोगों को क्या चाहिए यह गांव के लोगों से हमें पता चलना चाहिए, इसलिए जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स भी बनेंगे वो भी ग्राम सभा ही बनाएगी। तो जो आपने नियमों के बारे में पूछा कि अभी हमने 22 तारीख को 8 ऐसे नियम जो बने हैं विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत, उन नियमों को हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, वाइडर कंसल्टेशन के लिए जो है पब्लिक डोमेन में डाला है और हमारे भारत देश के ई गैजेट में भी वो पब्लिक हो चुके हैं। इसके माध्यम से हम फीडबैक मांगना चाह रहे हैं लोगों से, प्रैक्टिशनर से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं उन भाई बहनों से, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक जो है जो कि यह योजना चलाने वाले हैं उनसे। तो ये एक वाइडर या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे एकेडमिशियंस हो, या फिर जितना भी वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन इसमें हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है टू इंश्योर कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए ताकि हमें अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुधार इसमें मिल जाएं। तो 30 दिन तक यह रूल्स जो है पब्लिक डोमेन में रहेंगे और हम आपके इस कार्यक्रम के द्वारा मैं सभी से अपील करूंगी कि इन रूल्स के ऊपर आपके जो भी सुझाव होंगे वो हमने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है और कई सारे बाकी मोड्स भी है जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते हैं और आपके सुझाव हमें दे सकते हैं, ताकि यह जो विकसित भारत जी राम जी है वो अपने एक होलिस्टिक रूप में लोगों के लिए बेहतर बने, यही हमारी इस अपेक्षा है।
0: बेहतर व्यवस्था की ओर सुचारू रूप से बदलाव हो और सभी जो मौजूदा कार्य चल रहे हैं वो विधिवत पूरे हो, रोजगार सृजन ट्रांजिशन पीरियड जो है खासकर जून में वो निरंतर बना रहे, इस पर भी बल दिया जा रहा है। किस तरह की वित्तीय व्यवस्था या अन्य व्यवस्था की गई है?
1: सोनू जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है जिसे रिफॉर्म हम कहते हैं और यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, तो इस बदलाव के टाइम, इस रिफॉर्म के टाइम यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हितधारक है जो कि हमारे श्रमिक भाई बहन है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब ये ट्रांजिशन होता है, एमजी नरेगा यह स्कीम चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से, तो इन 20 साल का यह जो एक चल रहा है उसको जब हम एक नए तंत्र में ट्रांजिशन करते हैं तो यह भारत सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की छोटे से जिसे फ्रिक्शन पॉइंट कहते हैं ये बिल्कुल भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को उनका सामना ना करना पड़े। इसीलिए एक सुचारू और एक निर्बाध तरीके का एक ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है जिससे कि हमें इंश्योर कर रहे हैं कि जो श्रमिक आज, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी कि 30 जून तक एमजी नरेगा रहेगा, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूंगी कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और वह कार्य अपूर्ण है, वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी जब विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा तब भी बिना किसी दिक्कत के एमजी नरेगा का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी उसके पास है उसी का सत्यापन हमने और रखा है, तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जी राम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। यह हमने केवल इसीलिए किया है, पीपल सेंट्रिक जो अप्रोच है प्रधानमंत्री जी का भी, सिटीजन सेंट्रिक, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जबकि ये ट्रांजिशन आए अंडर विकसित भारत जी राम जी। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का ट्रांजिशन जो है वो भी स्मूथली मैनेज करने की कोशिश है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रमिक भाई को इस ट्रांजिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए यह अपूर्ण काम भी जो है वो नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करके हम उसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को जो है बिल्कुल सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, रोजगार कंटिन्यूअसली मिलता रहे
0: और जो लंबित देनदारियां हैं उनका भी निपटारा सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए।
1: बिल्कुल सही बात कही, यह भी एक ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंट पहलू है कि एमजी नरेगा में राज्यों की कुछ देनदारियां होती है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, या ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले दशक में 10-12 साल में जो है 8 से 10 लाख करोड़ का खर्चा जो है एमजी नरेगा पर किया है और कोविड में भी 1,11,000 करोड़ से ऊपर की बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने राज्यों को और श्रमिकों के खाते में पहुंचाई है। तो यह कमिटमेंट भारत सरकार की इसमें भी बनी रहेगी कि एमजी नरेगा में जितनी देनदारियां हैं उनका भी सुचारू रूप से जो है सेटलमेंट किया जाएगा। और इस वर्ष विकसित भारत जी राम जी में अगर आप देखें सोनू जी, तो 95,000 2692 करोड़ का एक बड़ा वित्तीय प्रावधान जो है विकसित भारत जी राम जी के लिए भारत सरकार ने किया है। तो इस 95,692 करोड़ दैट इज द बजट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड, तो इस धनराशि का उपयोग भी जो है लोगों को 125 दिन की एनहांस गारंटी देने के लिए भी किया जाएगा।
0: जैसा आप कह रही थी कि किसानों को रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है। एक जो पीक एग्रीकल्चर सीजन जो 60 दिन विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत काम नहीं होगा, इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बता सकती हैं?
1: सोनू जी, जब मैंने कहा कि हमारे किसान भाई ग्रामीण एरिया में ही बसते हैं और वहाँ वहीं के श्रमिकों को हम ये रोजगार 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, तब यह देखना बहुत जरूरी था कि क्या इस एनहांस गारंटी की वजह से हमारे जो किसान भाई हैं, ऑलमोस्ट 86% जो हमारे किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान है जिन्हें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है, उनकी लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी होती है। कई सारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स ने भी जो अध्ययन किए थे उसमें यह पता चला था कि कई बार ऐसी योजनाओं की वजह से कई बार किसान भाइयों को पीक एग्रीकल्चर सीजन जो बुआई कटाई का सीजन होता है उसमें कई बार एग्रीकल्चर के लिए जो है श्रमिक की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं यह बैलेंस करना बहुत जरूरी था कि एग्रीकल्चर को भी एडिक्वेट लेबर मिलता रहे और एट द सेम टाइम 125 दिन की गारंटी भी लोगों को दी जाए। इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए एक तरीके से यह 60 डेज का एक कैलिब्रेटेड पॉज जो है वह विकसित भारत जी राम जी में लाया गया है। यह 60 दिन जो है वह कंटिन्यूस 60 दिन नहीं है और ये राज्यों ने तय करना है कि उनके राज्य में कौन से समय पर बुआई कटाई एग्रीकल्चर का पीक सीजन होता है। इसमें भारत सरकार का बिल्कुल ये नहीं है, राज्य ही खुद तय करेंगे कौन से 60 दिन होंगे जबकि उनके किसानों को श्रमिकों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए ड्यूरिंग दो 60 डेज नॉट कंटिन्यूअस यह कार्य कुछ देर तक जो है पॉज किए जाएंगे और उसके बाद जो है लोग फिर से उस पर एम्प्लॉयमेंट अवेल कर सकते हैं। तो एक तरीके से यह एक बैलेंसिंग है बिटवीन हमारे किसानों का कल्याण और श्रमिकों का कल्याण।
0: So, रोहिणी जी, आप कहेंगी कि इस योजना के अंतर्गत जो अभी बदले हुए समय की मांग है उसके अनुसार बहुत कोऑर्डिनेशन है सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स और जो विलेज लेवल बॉडीज है ग्राम सभा जैसे आप कह रही थी उनके सभी स्तरों पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि ऑप्टिमम बेनिफिट मिले जो भी खर्च हो रहा है इस योजना पर उससे।
1: जी आपने बिल्कुल सही कहा सोनू जी, जब विकसित ग्राम पंचायत होंगे तो यह एक बहुत डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है कि हमारे पंचायतें जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट कड़ी है वो है पंचायत, तो पंचायत ही इसका प्लान बनाएंगी। परंतु पंचायत ने प्लान बनाने के बाद यह प्लान जो है ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे एग्रीगेट हो जाएगा और पीएम गति शक्ति जैसे बहुत अच्छे टूल्स के माध्यम से जब यह एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक प्लान बनेगा और नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के माध्यम से अगर हम और सभी स्टेट और सारे हितधारक अगर ये देख पाएंगे कि ऑन अ पर्टिकुलर डे एक दिन अगर हम ओपन करके हमारा डैशबोर्ड देखते हैं तो उसमें अगर पता चलेगा कि हर एक पंचायत में किस प्रकार के काम कौन से कैटेगरी के कहां तक आए हैं और उस पंचायत का विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो है वह कितने परसेंट तक एग्जीक्यूट हो गया है, तो इससे जो है फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ही सुचारू रूप से हम पंचायतों को एक विकसित पंचायत की ओर बढ़ाने में सफल हो जाएंगे rather than doing some ad hoc works, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव उसमें बहुत आ जाएगा, प्लान तरीके से हम कर पाएंगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है जैसे एसेट डुप्लीकेशन होता है कई बार एक ही काम को अलग अलग योजनाओं में दिखाकर उसमें प्लैरिटीज आ सकती हैं। तो हमने यह व्यवस्था की है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंश्योर करे कि कार्य बिल्कुल प्लान पद्धति से हो और किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो है मिसयूज ना हो।
0: रोहिणी जी बहुत बहुत धन्यवाद, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के मजबूत संस्थागत प्रशासनिक तकनीकी और वित्तीय ढांचे के बारे में हमें बताने के लिए और ये बताने के लिए किस तरह से हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये सहायक होगा। बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद सोनू जी।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आज का सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी अंग्रेजी और उर्दू में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
5: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
4: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
5: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, कि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
4: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
6: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोक।
4: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।
4: सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
8: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के में राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।

शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4

0: ये आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन

में विद्यार्थियों और लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों आईआईटी के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच सीतारामन से मुलाकात की और सीबीएसई परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान में एक ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शेराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9.

0: खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमदोर। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने सीबीएसई के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खान शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूदात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकत दारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत, तवानाई, नखलो हमल, नेज इलाकाई सलामती समेत तआवुन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्द की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द एक तजारती माहदे की तकमील को की जरूरत को उजागर किया। तवानाई की तिजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ किस्म की तवानाई सप्लाई भारत में तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। ईरान के साथ तनाजे के बारे में जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत और अक़्वामे मुत्तहिदा को इस बात को यकीनी बनाने में काफी दिलचस्पी है कि तवानाई की आलमी कीमतें कम रहें। उन्होंने मुज़ाकरात, सिफारती कोशिशों, महफूज और बिला रुकावट समंदरी तिजारत के हक में भारत के मौकिफ को भी एक बार फिर दोहराया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसके ताल्लुकात अमरीका, इसराइल, ईरान नेज दिगर खलीजी मुल्कों के साथ मजबूत हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम, बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी की फलाह और तवानाई की कीमतों में कमी चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को उजागर किया और कहा कि कानूनी तौर पर की जाने वाली आमदोरफ्त पर कोई मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शराकत दारी के दिफाई पहलुओं की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने भारत को दुनिया में अमरीका के सबसे अहम शराकत दारों में से एक करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमरीका उन सभी अहम मामलों पर दिफाई तौर पर मुत्तफिक हैं जिनसे नई सदी की वजाहत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के नतायज बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने यह बात भी जोर देकर कही कि अमरीका ने दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात भारत के साथ उसके दिफाई इत्तेहाद की कीमत पर नहीं किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए कल भारत के 4 रोजा दौरे पर आए हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को होगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में दिफा, सलामती और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन पर तवज्जो मरकूज की गई जिनमें ट्रस्ट पहल भी शामिल है। वजारत ने मजीद बताया कि कौमी सलामती के दोनों मुशीरों ने दो तरफा जामे आलमी दिफाई शराकत दारी के मुताबिक आला तरजीहात का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने मकामी और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिव्यांशु पांडा ने फाल्टा असेंबली सीट के लिए दोबारा हुई पोलिंग में जबरदस्त वोटों से जीत दर्ज की है। यह सीट तृणमूल कांग्रेस का अहम गढ़ तसव्वुर की जाती है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान 21 मई को दोबारा पोलिंग कराई गई। फाल्टा सीट जीतने के बाद 294 नशिस्तों वाली असेंबली में बीजेपी के अराकीन की तादाद 208 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तृणमूल कांग्रेस के मुबैना डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए बीजेपी ने आज फाल्टा असेंबली सीट पर दोबारा कराई गई पोलिंग में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने अपने करीबी हरीफ सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से ज्यादा वोटों के भारी फर्क से हराकर ये सीट जीत ली। शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले, जबकि दिवांशु पांडा को

0: लाख 49,666 वोट हासिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान 7,783 वोट पाकर चौथे मकाम पर रहे। उनकी जमानत जब्त हो गई जबकि कांग्रेस तीसरे मकाम पर रही। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो उन मुशतबा गैर कानूनी गैर मुल्कियों नेज गैर मुल्की कैदियों के लिए हिरासती मरकज कायम करें जिन्हें वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत वापस भेजा जाना है। दाखिली और पहाड़ी उमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी ऐलामिया के मुताबिक जिलों से कहा गया है कि वह उन अफराद को उन मरकजों में भेजने के लिए ज़रूरी इकदाम करें जिनकी शनाख्त मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की हैसियत से की गई है और उन्हें जिला वतन किया जाना है। हिदायतनामे में हुकाम से कहा गया है कि वह उन बांग्लादेशी शहरियों भेजने के लिए वजारत दाखिला के तरीके कार के मुताबिक कार्रवाई करें जो भारत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर्स और तकनीकी माहरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। यह फैसला CBSE के नतायज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालिदैन की तरफ से जाहिर की गई तश्वीश के पेश नज़र किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा है कि IITs के माहिरीन की ये टीम निज़ाम में तकनीकी बेहतरी लाने नेज खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारकर्दगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के नतायज और दोबारा जांच के अमल के दौरान तलबा के सामने पेश आने वाले तकनीकी और अदायगी से मुतल्लिक मसाइल पर मालियात और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से आज बातचीत की। वजारत तालीम ने कहा कि बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा केनरा बैंक और इंडियन बैंक अदायगी के बुनियादी ढांचे और इम्तिहान के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के साथ जरूरी इंजमाम में CBSE की मदद करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गर्मी की शिद्दत ने वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के बड़े हिस्से में मामूलात जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। कई इलाके खुश्क हवाओं और शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं जिससे लोग हो गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली भी शदीद गर्मी की जद में है। आज कौमी राजधानी खित्ते के बेशतर इलाकों में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने कल उत्तर प्रदेश मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की पेशगोई की है जबकि अरुणाचल प्रदेश सिक्किम बंगाल के हिमालयी इलाके आसाम और मेघालय में कल शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की लपेट में है। पूरी रियासत में गर्म हवाएं चल रही हैं और कई शहरों में दर्जा हरारत 43 डिग्री से तजावज कर गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश को इस वक्त शदीद सेल्सियस टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना और सतना के लिए शदीद गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। ततैया नेवाड़ा और सागर समेत 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि ग्वालियर जबलपुर और उज्जैन समेत 22 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह रियासत के 37 अजला गर्मी की शिद्दत से जूझ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम अगले 4 रोज तक शदीद गर्मी से राहत का कोई इम्कान नहीं है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें, बहुत ज्यादा पानी पिए, नीज बच्चों और बुजुर्गों को खसूसी निगहदाश्त में रखा जाए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: महाराष्ट्र में अमरावती वर्धा और चंद्रपुर जिलों में शदीद गर्मी के पेश नजर मंगल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस मुद्दत के दौरान अकोला नागपुर और गढ़चिरौली जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के एक कुनबे के 8 अफराद जिनमें 7 खवातीन थीं आज उत्तर कन्नड़ा जिले के थट्टे हक्कालू दरिया में डूब गए। ये लोग ताजा पानी की सीपियां चुन रहे थे कि तेज हवा की वजह से बहकर दरिया में चले गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नायब सदर CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में डूबने से हुए जाने नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। وزیر اعظم نے اس حادثے میں مرنے والوں کے کنبوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا ہے اور متاثرین کی جلد صحت یابی کے لیے دعا

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।

0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमरीका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
1: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार
2: किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आप
3: शंकर भट्टाचार्य स्टेपिंग इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक विद इनिशियल ट्रेनिंग अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ हिज फादर श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य। फर्दर ही आल्सो रिसीव्ड ट्रेनिंग फ्रॉम श्री मुरलीदास ठाकुर ऑफ द बिश्नुपुर घराना। Present sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. Born in a distinguished musical family of accomplished musicians, where his grandfather, the renowned sitarya, Sri Lal Mohan Bhattacharya, is said to have laid the foundation of this rich legacy, and Pandit Harishankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father, Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Muralidas Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Harishankar Bhattacharya moved to Bombay, present-day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top-grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Harishankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Jafarkhani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Harishankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Harishankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
2: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य सितार वादन की इस प्रस्तुति का आरंभ राग दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
3: पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी। बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़, द कंपोजिशन ऑफ द राग is set to gat in vilambit teen tal followed by madhyalaya teen tal।

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हर शंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग दरबारी ऑन द सितार बाई पंडित हर शंकर भट्टाचार्य। He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।
2: और शुभकामनाएं।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका।

0: सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री

0: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified